सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 जून 2026 प्रातः के 5:58 हो चुके हैं। अब हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइल्स थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भोर की इस पावन बेला में उगते हुए सूर्य भगवान की रश्मियों में धीरे धीरे ये सारा जग जाग रहा है। अब जबकि निद्रा से जगत ने आंखें खोल ही ली हैं, तो ऐसे पलों में क्यों ना हम सभी अपने सभी अपराधों के लिए क्षमायाचक बन प्रभु की वंदना करें।

श्रोताओं अभी आपने ये शनि देव स्तुति सुनी अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज में। और आइए एक और भक्ति रचना सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में। प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और बड़ा उलझा भी। अगर बुद्धि से चलते हैं तो रास्ता बहुत उलझा है, लेकिन अगर भक्ति और विश्वास से चलते हैं तो ये रास्ता बड़ा ही सीधा होता है। अगर हम विचारों से चलें तो बहुत दूर लगता है, लेकिन अपने मन में श्रद्धा और भाव को रख कर चलें तो बहुत पास लगता है। अगर हम नज़रों से देखते हैं तो कण कण में, लेकिन अंतर मन से देखते हैं तो जन जन में हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। भाई गोपाल सिंह रागी के स्वर में आइए सुनते हैं एक शब्द। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं, तेरे आसपास। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ।

श्रोताओं, इफ्तिकार अहमद और साथियों के स्वर में ये नात आपने सुना, और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में एक और भजन।

श्रोताओं, मन्नाडे की आवाज़ में अभी आपने ये भजन सुना और इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

अनुज लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ पर्णकुटी में निवास करते हुए श्रीराम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राजगुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राजगुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिनहिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हाँका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

0: अभी आपने श्री रामचरितमानस गान सुना, स्वर भूपेंद्र सिंह का था और संगीत सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है चिंतन।
1: ये विश्व अनंत है, इसका अनंत रूप परमात्मा या ब्रह्म है और दूसरा रूप जीव आत्मा या मनुष्य है। अनंत होने के कारण परमात्मा या ब्रह्म अजर और अमर है। उसका न कोई आदि है न कोई अंत। शास्त्रों में इसे नेति नेति कहा गया है, जो ऐसा भी नहीं पर वैसा भी नहीं। वो गुणातीत सभी में व्याप्त है और मनुष्य सीमाओं में बंधा होने के कारण जीवात्मा यानी जन्म मरण के बंधन में फंसा हुआ है। अतः कहा जा सकता है, संकीर्णता को दूर करने और स्वार्थ को छोड़ने से जीव आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। सब स्वार्थमयी कामनाओं को दूर करने में शिक्षा व ज्ञान की सहायता बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कामनाओं की समाप्ति विद्या और ज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकती है। जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्ममय हो जाता है, या यूं कहें कि वो ब्रह्म ही हो जाता है। वो यहीं इसी लोक में मुक्ति पा लेता है। अतः यहीं इसी जन्म में सत्य को जानना बहुत जरूरी है, परंतु इसे केवल बौद्धिक दृष्टि से सिद्धांत रूप में जानना काफी नहीं है। तप और सदाचार के द्वारा इसका साक्षात्कार करना आवश्यक है। तप, क्षमा, दान, किसी की हानि न करना, सदा सत्य बोलना जीवन रूपी यज्ञ की दक्षिणा है। जीवन का हम महाव्रत ये है कि मनुष्य उदार विचार रखे, किसी के साथ अशिष्ट व्यवहार न करे, लोक मंगल की भावना की उपेक्षा न करे और किसी का भी अनादर न करे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कर्म। जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। बिना कर्म के जीवन की गाड़ी चल नहीं सकती है। कर्म करने वाला व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि कर्म वो ही श्रेष्ठ है जिसमें ज्ञान और बुद्धि का सन्निवेश हो। इस प्रकार के कर्म से श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति होती है और यही आत्मा का लक्ष्य है। जगत और जीवन आनंद के समुद्र है। आनंद की तरंगों के बिखरे हुए कण प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी का जीवन आनंद, आशा और उत्साह का पुंज है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहने की कामना रखता है। परंतु जो ज्ञानी है वो जानता है, कोई वस्तु न तो हमेशा रहती है और न पूर्णतः नष्ट होती है, न किसी का अचानक एकदम से आविर्भाव होता है। अतः मृत्यु भी जीवन का अंत नहीं है, ये एक परिवर्तन मात्र है। इसके बाद जीवन के विभिन्न तत्व नए रूप में प्रकट होते हैं, किंतु इस प्रक्रिया के दो रूप हैं, भौतिक और मानसिक। भौतिक रूप में तो जीवन के तत्वों के संगठन और विघटन की प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है और इसे कभी रोका नहीं जा सकता, किंतु मानसिक रूप में जब हम समझ लेते हैं कि समस्त विश्व एक इकाई है और इसके भेद केवल व्यवहारिक हैं, तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया कोई विशेष चिंता उत्पन्न नहीं करती।
0: अभी आपने चिंतन सुना। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा और आज इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए गोविंद प्रसाद रस्तोगी का काव्य पाठ।
2: गीत निवेदन है, शीर्षक है गीत से गीत तक। तुम प्रतीक्षाए नयन में आंजते हो, राख में लिपटी अगर

धड़कनों की मौन भाषा जानते हो, छू दिया संवेदनाओं को हृदय की।

सुरताल सरगम प्रेम से भावुक मनों को गीत देता है सारा। गीत में आध्यात्म संचित, गीत वेदों की ऋचाएं, गीत मंत्रों से भरा है, गीत है जातक कथाएं, गीत में सद्ज्ञान है, संन्यास है, आराधना है, गीत उसके नाम का जप, गीत जीवन साधना है, गीत इस भव सिंधु का है, दिव्यतम दूजा किनारा, गीत है संसार सारा। एक और कविता, निर्जन द्वीप। मैं एक निर्जन द्वीप हूँ जो जलद के वक्ष पर उभरा हुआ है, जो कि जग की दृष्टि से ओझल हुआ है, जो कि भौगोलिक विशेषज्ञों विशेषज्ञ ज्ञान के विज्ञान के कृत्रिम प्रयोगों से बचा है, क्योंकि मैं अज्ञात ही हूँ। हर असंभव संभवों की यज्ञशाला का बने अंगार, यह संभव नहीं है। मैं युगों से देखता हूँ नील जल की सरल लहरें, सरलता मुझको सिखाती और धो देती मुझे मेरे अहम को, मुझे गौहर सा बनाती। कूल पर अनगिन पड़े हैं सीप मूंगे, किंतु मैं भी एक विस्तृत सीप हूँ, मैं एक निर्जन द्वीप हूँ।

ज्योतित, मैं रजत का दीप हूँ, जो जलद के वक्ष पर ज्योतित रहेगा, जो किचक की दृष्टि से ओझल रहेगा, चिर समय तक, चिर समय तक, चिर समय तक। रूप की छोटी उम्र है, मूर्छनाओं का प्रहर है, चांदनी केवल मुखर है,

अक्ष पर यह कांपते युग मुई पुझल मिल चारु चितवन से चपलता हारते ये चेतना पल प्यास का कुल सफर है और लहरों पर लहर है।

प्यास का कुल सफर है। पुण्य की संज्ञा धरा पर पाप के कारण हुई है, और आदिम कर्म युचिय

अरे है आज इन जागे पलों में स्वप्न हर साकार होने दो। सृष्टि में सौंदर्य की सत्ता समर्पण के लिए है, पंच तत्वों का समन्वय एक अर्पण के लिए है। देह रस स्वर्गंध रूपम राग जीवन के लिए है, पंच भोगों का निमंत्रण आज इस क्षण के लिए है। आज हर इच्छा प्रखर है, होश तो न बस नाम भर है, आज भूल करके भूल शुद्धि श्रृंगार होने दो। तृप्ति की सीमा न बांधो आज घट रस धार।

0: श्रोताओं, अभी आपने गोविंद प्रसाद रस्तोगी के स्वर में उनका काव्य पाठ सुना और इसके साथ ही काव्यधारा कार्यक्रम संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:55 हुए हैं, अब आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगयोः प्रवासे भविष्यति। ओडिशायाः मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः 68वें जन्म दिवसोत्सवे प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्यति। तदनन्तरं तौ नेतारौ ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासनस्य वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः, यत्र हि 47,000 कोटितोप्यधिक रूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारंभो भविष्यति। पश्चिम बंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति, यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति, येन देशस्य 9.44 कोटि कृषकेभ्यः 80+8,18,000 रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोशेषु स्थानान्तरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रिय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी 20-26 पुनः परीक्षा

0: गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा और आज इस कार्यक्रम में जानकारी दी जा रही है योग और हमारा स्वास्थ्य विषय पर।

0: मानव जीवन की सुरक्षा तथा आरोग्य प्राप्ति के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने शास्त्रों में अनेक उपाय बताए हैं। उनमें योग और प्राणायाम की साधना को निर्दिष्ट किया गया है। शरीर की शुद्धि, आरोग्य की प्राप्ति और दीर्घ जीवन के लिए इसकी उपयोगिता और महत्व को दर्शाया गया है। इसका वर्णन उपनिषदों, चिकित्सा ग्रंथों तथा समस्त पुराणों में है। योग का प्रयोजन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। योगासनों से न केवल शरीर सौष्ठव, स्फूर्ति आदि प्राप्त होती है, बल्कि श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है, मन की स्थिरता प्राप्त होती है, सम्यक ध्यान लगता है, शरीर में रक्त संचार उचित रीति से होता है, शरीर की मांसपेशियों में प्रसार एवं संकुचन की प्रक्रिया तीव्र होती है। मानव शरीर में विद्यमान तीन दोष, जिन्हें हम कफ, वात और पित्त के रूप में जानते हैं, उनका भी संतुलन बना रहता है, साथ ही रोगों के निवारण में सहायता मिलती है। आचार्य चरक का कहना है कि योगासनों के अभ्यास तथा सम्यक व्यायाम से शरीर में हल्कापन, कार्य करने की शक्ति, शरीर में स्थिरता आदि भी प्राप्त होती है। तन और मन दोनों को साधने में योग का कोई सानी नहीं है। इससे तनाव दूर होता है, मन शांत तथा सक्रिय होता है। कुछ देर नियमित योग करना रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। लोगों में एक आम धारणा है कि योग में समय अधिक लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार योग आसनों का चुनाव कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं कि योग सुबह ही किया जाए, आप शाम को भी इसे कर सकते हैं। कोशिश सिर्फ ये करें कि रोजाना एक नियत समय पर ही इसे करें। इससे आप एक अनुशासित तरीके से अपनी आदत बना पाएंगे। योग एक प्रकार का ध्यान है, जिसमें शांत वातावरण की जरूरत होती है। ऐसा स्थान चुनें जहां शोर शराबा ना हो। कुछ ऐसे आसन हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, श्वसन संबंधी क्रियाएं, कपालभाति, ऐसे आसन जो शरीर के हर हिस्से को स्ट्रेच करें। लेकिन इन सब बातों से ज्यादा जरूरी है कि किसी कुशल प्रशिक्षक से इन्हें भलीभांति सीख अवश्य लें। तनाव में रहने पर, मन ठीक न होने पर तरह तरह के रसायन शरीर के भीतर बनते हैं। मन के शोभ को दूर करने के लिए भी योग जरूरी है। मन में आशा निराशा के भाव, अनिद्रा, नींद ठीक से न आने पर भी शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं। शरीर को मन से अलग नहीं माना गया है। शारीरिक ऊर्जा की लय बिगड़ जाने से बीमारियां शरीर को घेरती हैं। मन को ऊर्जा से भरना बहुत जरूरी है। योग एक नई खोज नहीं है, अपितु ये हमारे प्राचीन भारतीय ऋषियों की धरोहर है। प्रकृति के नियमों के साथ जो चलेगा वो आजीवन शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। जिस प्रकार मानव जीवन सांसों पर जिंदा है, सांस खत्म तो सब खत्म। सांसों में नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। कहने का मतलब, सांसों के द्वारा अपने शरीर के अंदर अच्छी इच्छा, अच्छी भावना, अच्छाइयों का समावेश हो, और सांस निकालने में ये सोचना है कि हमारे शरीर से बुरी इच्छा, बुरी भावना बाहर निकल रही है। उचित आहार विहार, नियम संयम का पालन करने से हम स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं।
1: योग और हमारा स्वास्थ्य, अभी आपने इस विषय पर जानकारी सुनी और इसके साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें और इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय है हरी खाद की फसलों से लाभ।
2: किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती करते हैं और खेती से लाभ भी कमाते हैं, और लाभ लेने के लिए अगर हमारे किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे और खेती में नए नए प्रयोग करेंगे तो उन्हें और अधिक लाभ

0: होगा। तो आज इसी के संबंध में एक जानकारी हम लेकर आए हैं। जानकारी का विषय है हरी खाद की फसलों से लाभ। किसान भाइयों, हरी खाद ऐसी फसल होती है जिन्हें उनकी हरी अवस्था में ही खेत में पलटकर मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार किया जाता है। सामान्यतः जैसे ढेचा है, सनई है, मूंग, उड़द, लोबिया, इन फसलों का उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। ये फसलें कम समय में अधिक जैविक पदार्थ उत्पन्न करती हैं और भूमि की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। किसान भाइयों, वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उत्पादक क्षमता प्रभावित हो रही है, ऐसे में हरी खाद का महत्व और भी बढ़ जाता है। किसान भाइयों, हरी खाद का सबसे बड़ा लाभ है कि ये मिट्टी में जैविक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को बढ़ाती है। जब हरी खाद की फसल को खेत में पलटा जाता है तो उसके विघटन से ह्यूमस का निर्माण होता है और ह्यूमस मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और उससे मिट्टी भुरभुरी बनती है और इससे जड़ों का विकास भी अच्छा होता है और पौधों को पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। किसान भाइयों, दलहनी हरी खाद की फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। इनके जड़ों में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी में उपलब्ध कराते हैं। इससे अगली फसल को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त होती है और रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता भी कम हो जाती है। जैसे सामान्यतः ढेचा और सनई की फसल 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन मिट्टी में स्थिरीकरण कर लेती है। हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। जैविक पदार्थ मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, जिससे सूखे की स्थिति में भी फसल को लाभ मिलता है। हल्की और रेतीली मिट्टी में यह विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होती है, वहीं भारी मिट्टी में जल निकास की समस्या को भी कम करती है। किसान भाइयों, हरी खाद मिट्टी की भौतिक दशा में सुधार करती है। इससे मिट्टी के कणों के बीच उचित स्थान बनता है, जिससे वायु का संचार बेहतर होता है। पौधे की जड़ें गहराई तक फैलती हैं और पोषक तत्वों का अधिक अवशोषण कर पाती हैं। किसान भाइयों, हरी खाद के उपयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या और सक्रियता दोनों बढ़ती हैं और ये लाभकारी सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में सहायता करते हैं और पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। किसान भाइयों, जैविक गतिविधियों में वृद्धि होने से मिट्टी अधिक जीवांत और उपजाऊ बनी रहती है। किसान भाइयों, हरी खाद का प्रयोग मिट्टी अपरदन को कम करने में भी सहायक होता है। जब खेत में हरी खाद की फसल उगाई जाती है तो उसकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, जिससे वर्षा या हवा के कारण मिट्टी का कटाव कम होता है और यह विशेष रूप से ढालू वाले क्षेत्रों के लिए बहुत लाभदायक साबित होती है। किसान भाइयों, हरी खाद से खरपतवारों की वृद्धि भी नियंत्रित होती है। हरी खाद की फसलें तेजी से बढ़कर भूमि को ढक लेती हैं, जिससे खरपतवारों को पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश और स्थान नहीं मिल पाता, जिससे खरपतवारों का दबाव कम हो जाता है और उनके नियंत्रण पर होने वाला खर्चा भी घट जाता है। किसान भाइयों, इसके अतिरिक्त हरी खाद मिट्टी में उपस्थित कुछ हानिकारक रोग जनकों और कीटों की संख्या को कम करने में भी सहायक होती है। स्वस्थ मिट्टी में उगाई गई फसलें रोगों के प्रति अधिक सहनशील होती हैं। इससे रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग में भी कमी लाई जा सकती है। किसान भाइयों, हरी खाद का उपयोग पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होने से मिट्टी और जल स्रोतों का प्रदूषण घटता है और यह टिकाऊ कृषि प्रणाली को भी बढ़ावा देती है और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी योगदान देती है। किसान भाइयों, आर्थिक दृष्टि से भी हरी खाद किसानों के लिए लाभकारी है। हरी खाद की फसलें अपेक्षाकृत कम लागत में तैयार हो जाती हैं और महंगे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करती है। इससे खेती की लागत घटती है और शुद्ध लाभ में वृद्धि होती है और लंबे समय तक हरी खाद का प्रयोग करने से भूमि की उत्पादकता भी बनी रहती है और अच्छी पैदावार हमें प्राप्त होती है। किसान भाइयों, धान जैसी फसलों में हरी खाद का विशेष महत्व है। धान की रोपाई से लगभग 45 से 50 दिन पहले ढेंचा या सनई की बुवाई करके उसे फूल आने की अवस्था में खेत में पलट दिया जाता है। इससे धान की फसल को पर्याप्त पोषण मिलता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, कुल मिलाकर बात ये निकल के आती है कि हरी खाद एक सस्ती, सरल और पर्यावरण अनुकूल तकनीक है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, उत्पादन लागत घटाने और कृषि को टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान समय में संतुलित पोषण प्रबंधन के अंतर्गत हरी खाद को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसान भाई नियमित रूप से हरी खाद का उपयोग करें तो बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के साथ साथ अपनी भूमि की सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक किसान भाई को अपनी फसल प्रणाली में हरी खाद को उचित स्थान देना चाहिए और लाभ कमाना चाहिए। तो किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। कल एक और नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: हरी खाद की फसलों से लाभ, अभी आपने इस विषय पर जानकारी सुनी और इसके साथ ही खेती की बातें कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। श्रोताओं, हम आपको आज हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। दिल्ली केंद्र से ही संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले किया जाएगा 10:00 बजे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 3:55 से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से की गई बातचीत का प्रसारण रिले किया जाएगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 8:00 बजे। 7:32 पर प्रसारित की जाएगी एक रेडियो रिपोर्ट जो मिर्जा हॉस्पिटल किरतपुर में आयोजित गोल्डन जुबली ऑफ केयर कार्यक्रम पर आधारित है। समय याद रखिएगा 7:32 पर। विविध कार्यक्रम में 6:45 पर आप सुनेंगे एक वार्ता, मानव मन की अभिव्यक्ति का अद्भुत माध्यम कविता। वार्ताकार हैं डॉक्टर शंकर लाल शर्मा। हमारी इसी सभा में 9:25 पर धरती गाती है कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रामकुमार राठौड़ का आला गायन। जिंदगी लाइव कार्यक्रम में 12:05 पर आज का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। महिलाओं के लिए आवश्यक है योग, इस विषय पर सोनू जोशी अरोड़ा से की गई बातचीत हमारी बहनें सुनेंगी महिला जगत कार्यक्रम में 1:15 पर। 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में सुनिएगा राजस्थानी लोकगीत, कलाकार हैं भूंगर खान और साथी। युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा 5:15 पर, जिसमें क्रम होगा गीत आपके नाम और कहानी के उस पार। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे लोकगीतों व रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। सुगम संगीत में 7:47 पर रामेश्वर प्रसाद शर्मा के स्वर में भजन सुनवाए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:18 हो चुके हैं, कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर।
3: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
4: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
3: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
4: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
3: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
5: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत

0: 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण कर रही है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच में सामने आ जाएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और आगामी 3 दिनों तक और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि ये योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती है।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
2: जो उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है, अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
0: मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है। एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
2: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
0: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवी पाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की बैठक की और प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4,901.65 करोड़ रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोहरीघाट ओडियार ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
3: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
0: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा कल वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
4: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों के कुछ जिलों में आज गरज चमक के साथ हल्की वर्षा को तो कहीं पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और पूरे प्रदेश में मौसम इसी तरह शुष्क बना रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच सेतु का निर्माण कर रही है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा एसआईटी की जांच में सामने आ जाएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल की 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और आगामी 3 दिनों तक और गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
6: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
5: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
7: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सूरज के साथ साथ कार्यक्रम में श्रोताओं को हमारा नमस्कार और हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में आपको मालूम है कि हम बहुत सारी जानकारियां लाते हैं और साथ ही आपके मनोरंजन का भी पूरा प्रबंध होता है इस कार्यक्रम में गीत संगीत के माध्यम से। तो आइए पहले बात करते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले हम कौन सी जानकारी आपके लिए लाए हैं, और वो है विश्व शरणार्थी दिवस। श्रोताओं, विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में कुछ बात करने से पहले आइए जान लेते हैं कि शरणार्थी कौन होते हैं। जी हाँ, शरणार्थी वे लोग होते हैं जो अपने देश में उत्पीड़न, युद्ध, जातीय हिंसा, धार्मिक भेदभाव, राजनीतिक अस्थिरता या अन्य गंभीर खतरों के कारण अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में शरण लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शरणार्थियों की कठिनाइयों को समझना, उनके प्रति सहानुभूति विकसित करना और उनके पुनर्वास के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। यह दिवस उन लाखों लोगों के साहस, संघर्ष और धैर्य को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जिन्हें युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न, मानव अधिकारों के उल्लंघन या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना घर और देश छोड़ना पड़ता है। यह दिन दुनिया को शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति जागरूक करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का संदेश देता है। विश्व शरणार्थी दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और पहली बार यह दिवस मनाया गया 20 जून 2001 में। श्रोताओं, एक बहुत ही खास बात है कि 2001 बहुत ही विशेष वर्ष था यह दिवस की शुरुआत के लिए, क्योंकि उसी वर्ष

यानी 2001 में शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 के सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ भी थी। साथियों, आज दुनिया के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और संघर्ष के कारण शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और खासतौर से हमारा देश भारत प्राचीन काल से ही अतिथि देवो भवः की भावना को मानने वाला देश रहा है। भारत ने समय समय पर विभिन्न देशों से आए शरणार्थियों को आश्रय प्रदान किया है। साथियों, प्रतिवर्ष जो भी कोई खास दिवस मनाया जाता है उसकी अपनी कोई थीम निश्चित की जाती है और इस वर्ष शरणार्थी दिवस की थीम है एकजुटता और समावेश, जो शरणार्थियों को समाज में शामिल करने और उन्हें नए अवसर देने पर जोर देती है। एक संवेदनशील और जिम्मेदार वैश्विक समाज के रूप में हम सब का कर्तव्य है कि हम शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। विश्व शरणार्थी दिवस साथियों हमें यही संदेश देता है कि मानवता की कोई सीमा नहीं होती और संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना ही सच्ची मानवता है। तो साथियों, ये तो हमने बात की विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा था कि हमें मनोरंजन का भी अपने साथियों का पूरा ध्यान रहता है, तो इसी क्रम में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और अब बात करते हैं इंटरनेशनल निस्टेग्मस डे के बारे में। श्रोताओं, निस्टेग्मस एक नेत्र संबंधी विकार है जिसमें आंखों की गति व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं होती। आंखें लगातार और अनियंत्रित रूप से हिलती रहती हैं, जिससे स्पष्ट रूप से देखने में समस्या होती है। इस स्थिति को सामान्य भाषा में डांसिंग आईज या वॉबलिंग आईज भी कहा जाता है। निस्टेग्मस नामक नेत्र विकार के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय निस्टेग्मस दिवस मनाया जाता है। साथियों, यह कोई संक्रामक रोग नहीं है, बल्कि इस कारण व्यक्ति की दृष्टि प्रभावित होती है और उसे दैनिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह विकार जन्मजात भी हो सकता है और व्यक्ति के जीवन में बाद में भी विकसित हो सकता है। श्रोताओं, निस्टेग्मस केवल दृष्टि संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ लगातार दृष्टि संबंधी कठिनाइयों के कारण आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं कमी आने लगती है। इस विकार से प्रभावित लोगों को केवल चिकित्सा सहायता ही नहीं, बल्कि सामाजिक सहयोग की भी बहुत आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक और चिकित्सक निस्टेग्मस के बेहतर उपचार और प्रबंधन के लिए लगातार अनुसंधान कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक, जीन अनुसंधान और उन्नत चिकित्सा पद्धतियों से भविष्य में अधिक प्रभावी उपचार उपलब्ध होने की उम्मीद की जा रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सहायक उपकरण भी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय निस्टेग्मस दिवस केवल एक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के साहस, संघर्ष और उपलब्धियों को सम्मान देने का अवसर भी है जो निस्टेग्मस के साथ जीवन जी रही हैं। इस दिवस का मुख्य संदेश है कि सही जानकारी, समय पर निदान, उचित उपचार और सामाजिक सहयोग के माध्यम से निस्टेग्मस से प्रभावित व्यक्ति भी एक सफल, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
6: तो इंतजार किस बात का,
5: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
6: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
6: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
5: और हमारा ईमेल आईडी है
6: akashwaninajibabad@gmail.com।
5: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
6: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
7: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
8: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत करते हुए एक नजर डालते हैं 20 जून का दिन भारतीय और विश्व पटल पर किन महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी है। 20 जून 1966 में ब्रिटिश पायलट शीला स्कॉट अकेले विमान उड़ाकर दुनिया का चक्कर लगाने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने 18 मई 1966 को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और 34,000 मील की यात्रा पूरी कर लौटने के दौरान उन्होंने 100 से अधिक विमानन रिकॉर्ड स्थापित कर इतिहास रचा। 1877 में आज यानी 20 जून को कनाडा के हैमिल्टन शहर में पहली व्यावसायिक टेलीफोन सेवा शुरू हुई थी। 1837 में 20 जून को महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी बनी थी। 20 जून 1952 में भारतीय अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक विक्रम सेठ का जन्म हुआ था। कविता, उपन्यास, यात्रा वृतांत और संस्मरण जैसी विधाओं में लेखन करने वाले विक्रम सेठ को फ्रॉम हेवन लैक, द गोल्डन गेट और असुटेबल बॉय उपन्यास से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। और अब श्रोताओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ खास जानकारियों पर नजर डालते हैं। ग्रामीण भारत की गलियों का बनेगा डिजिटल मैप और मिलेगा यूनिक कोड। केंद्र सरकार गांव की हर सड़क और गली को अलग पहचान देने के लिए कोडिंग सिस्टम लाने जा रही है। रास्तों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में होगा। आज 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के ऐतिहासिक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। फीफा विश्व कप 2026 में बृहस्पतिवार को डेविड जोनाथन की हैट्रिक से कनाडा ने कतर को 6-0 से हराकर फुटबॉल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मैचों की वनडे क्रिकेट श्रृंखला में 2-0 से आगे है। आज शनिवार को श्रृंखला का तीसरा और अंतिम वनडे मैच 1:30 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। चिकनगुनिया वायरस के विरुद्ध गौमूत्र अर्क में एंटीवायरल यौगिकों की पहचान की गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने चिकनगुनिया वायरस के विरुद्ध आयुर्वेदिक गौमूत्र अर्क में एंटीवायरल यौगिकों की पहचान की है, जो प्राचीन आयुर्वेदिक उपचार व आधुनिक विषाणु विज्ञान का संगम है। तो श्रोताओं, इस तरह से इस जानकारी के बाद एक बार फिर रुख करते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और अब बात कर लेते हैं वैश्विक वातावरण एवं जैव विविधता के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी हॉर्स शू क्रैप के बारे में। साथियों, पृथ्वी पर जीवन की विविधता जिसे हम जैव विविधता कहते हैं और पर्यावरणीय संतुलन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक जीव, चाहे वह कितना भी छोटा या साधारण क्यों न दिखाई दे, पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे ही एक अद्भुत और प्राचीन जीव का नाम है हॉर्स शू क्रैब। इसे सामान्यतः अश्वनाल केकड़ा कहा जाता है, क्योंकि इसका शरीर घोड़े की नाल के समान दिखाई देता है। हॉर्स शू क्रैब पृथ्वी पर लगभग 45 करोड़ वर्षों से मौजूद है। यह जीव डायनासोर के अस्तित्व से भी पहले का है। श्रोताओं, जानने की बात यह है कि अनेक प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तनों के बावजूद भी यह जीव आज तक जीवित है, और यही कारण है कि इसे जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल कहा जाता है। जैव विविधता के संरक्षण, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण यह वैश्विक वातावरण और जैव विविधता के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। एक बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हम बात कर रहे हैं हॉर्स शू क्रैब यानी केकड़ा, लेकिन यह वास्तविक केकड़ा नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका संबंध मकड़ियों और बिच्छुओं से अधिक निकट माना जाता है। इसका शरीर कठोर कवच से ढका होता है और इसकी पूंछ काफी लंबी होती है। साथियों, हमने बात की थी जैव विविधता में हॉर्स शू क्रैब का महत्व क्या है, तो आइए जानते हैं वो कैसी। यह समुद्री खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके अंडे अनेक पक्षियों, मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के लिए भोजन का स्रोत हैं। ये समुद्र तल पर रहने वाले छोटे जीवों, कीड़ों और अन्य अकशेरुकी जीवों को खाता है। इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है। साथियों, आइए जानते हैं कि मानव स्वास्थ्य में हॉर्स शू क्रैब का योगदान किस तरह से है। सबसे महत्वपूर्ण योगदान चिकित्सा विज्ञान में है। इसका रक्त नीले रंग का होता है, जिसमें मौजूद तांबा आधारित हीमोसाइनिन नामक पदार्थ है, और ये तत्व बैक्टीरिया के विषैले तत्वों की पहचान कर सकता है। हॉर्स शू क्रैब केवल जैव विविधता ही नहीं, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हॉर्स शू क्रैब दिवस। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य इस क्रैब यानी केकड़ा के संरक्षण, उसके जैविक महत्व और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करना है। साथियों, इस जानकारी के बाद कार्यक्रम के अंत में एक और गीत सुनते हैं।

0: साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।

अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, एक दिन नहीं हर दिन। योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यही से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आया खुशियों का पैगाम टीम किसान, टीम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित।

0: वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और खो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफी नहार, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: We have been able to achieve that in the first.
5: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
4: They are all designed in India now.
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
6: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट लॉन्च, व्हीकल अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
3: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में SEBI ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के MH चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद विश्वास। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से PM किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और SEBI ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force, FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rai Rangpur.
1: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors, including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rai Rangpur, Akashwani News.
8: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 880 crore rupees to the bank accounts of 9 crore 44 lakh farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal. This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45 lakh farmers of West Bengal. We have more details on the Prime Minister's visit from our correspondent.
9: Prime Minister Narendra Modi is arriving in West Bengal today on a 2 days visit for the first time since the BJP formed the government in the state. During his stay, he will attend the West Bengal Day celebrations in Tarakeshwar in Hooghly, lead the International Yoga Day program in Kolkata's Red Road and dedicate three indigenously built warships, INS Dunagiri, INS Sanshodok and INS Agrai, to the nation. He will also inaugurate and lay foundation stones for several key projects. These include railway initiatives worth nearly rupees 590 crore, a new 300-bed railway hospital in Howrah, and a rail overbridge in East Midnapur. He will also launch 49 rural road projects under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, strengthening connectivity across more than 315 kilometers. In agriculture, Mr. Modi will formally introduce the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in West Bengal, providing insurance coverage to nearly 50 lakh farmers. He will also unveil new initiatives under the Digital Agriculture Mission, including AgriStack and the Dhanodhanya Krishi Yojana. The Prime Minister's program extends to fisheries and animal husbandry with projects such as modern fishing harbour at Fraserganj, a fish market in Birbhum, and Eastern India's first goat semen research laboratory in Nodia.
10: Sandeep Andashgupta, Akashvani News, Kolkata.
8: Prime Minister Modi has extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Paschim Banga Divas. Mr. Modi said this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce and social reform. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal has been appointed as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agrawal, currently serving as secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the Global Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Watchdog. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agrawal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said, "The appointment reinforces India's commitment to combating terrorism financing and illicit financial networks." The National Testing Agency, NTA, will conduct a nationwide mock drill today ahead of the NEET UG re-examination 2026. It is part of the preparations to ensure smooth, secure and transparent conduct of the examination. More from our correspondent.
11: The National Testing Agency has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled tomorrow. In a statement, NTA said that exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification and GPS-enabled vehicles with police escort for movement of examination materials. The re-examination will be conducted from 2 p.m. to 5:15 p.m. in pen and paper mode. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
8: The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting held in Mumbai yesterday, the SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. SEBI Chairman Toheen Kanta Pandey shared the details after the crucial board meeting.
12: The key decisions relate to simplifying and standardizing the framework for easier transmission of securities to legal heirs and claimants of deceased investors. Now we are creating a new category of quick transmission processing for small value claims. Simplified documentation, which already exists. The limit is being increased from 5 lakh to 10 lakh for physical holdings per listed company and from 15 lakhs to 30 lakh for dematerialized holdings per beneficial owner.
8: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke. Today we focus on the government's transformative initiatives driving the vision of an empowered India. A report.
3: Over the last 12 years, the government has driven a structural transformation in India's high-tech landscape. Two of the most significant pillars of empowered India are the development of a semiconductor ecosystem and the explosive growth of space startups. The India Semiconductor Mission was launched in December 2021 with a massive outlay of 76,000 crore rupees, offering fiscal support of up to 50% for silicon fabs, compound semiconductor facilities, assembly and testing units, and chip design. By 2026, the government launched Semiconductor Mission 2.0 with a provision of 1,000 crore rupees, laying emphasis on industry-led research and training centers to drive technology development and create a future-ready skilled workforce. Speaking about the Semiconductor Mission 2.0, Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw highlighted that while Mission 1.0 successfully established the foundational building blocks for this complex industry, Mission 2.0 will focus on deepening the ecosystem.
4: The first mission was to start the industry in our country, and it's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2 nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
3: The Indian Space Policy 2023 enables and permits the private entities to carry out end-to-end space activities, including undertaking launches, satellite realization and operations, data acquisitions and dissemination, and ground station. India's space economy is now valued at about $8.4 billion and is expected to grow 4 to 5 times over the next 8 to 10 years, potentially reaching $40 to $45 billion. Talking to Akashwani News, Anil Prakash, Director General of the Space Industry Association of India, said that the country is currently home to more than 400 space tech startups.
13: In the last 12 years, India's space sector has undergone significant changes. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the reform of the space sector, the establishment of a space base, and the increase in the private participation has started a new revolution. Today, more than 400 space tech startups operate in India, which are innovating in areas such as satellite, launch vehicles, earth observation, and data service. India's first space tech unicorns, Skyroot Aerospace, is a proof of this change.
3: Through the breakthrough of the semiconductor mission and a thriving private space sector, India's journey toward a developed nation is being realized today as an empowered India. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
8: The 12th International Yoga Day 2026 will be celebrated tomorrow globally. The theme for this year is Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. As part of the celebrations, the Ministry of Culture will organize special International Day of Yoga events at 100 iconic locations across the country, bringing together India's rich cultural heritage and yoga traditions. The main national celebration will be held at Kolkata's historic Red Road under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, where he will lead the nation in the common yoga protocol. Moreover, President Draupadi Murmu will be the chief guest at the state-level program in Jabalpur, Madhya Pradesh tomorrow. Moving on to sports, in men's cricket, the third and final ODI match of the series between India and Afghanistan will be played at the M.H.A. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the three-match series. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra.
14: Thank you, Naresh. U.S.-Iran meet put off over Lebanon clashes. Israel-Hezbollah agreed to a truce, but region on edge is a top headline in the Times of India. Yogi vows strict action Ayodhya funds row. Bid to defame says SIT will reveal the truth within 15 days. SP Congress spreading falsehoods is a top headline in the Asian Age. The Supreme Court has declared that every citizen has a fundamental right to walk on a demarcated footpath, holding that this right is primary and takes precedence over the movement of motorized vehicles, as it delivered a far-reaching judgment that could reshape urban planning and road design across the country, reports in the Sun Times. Delhi High Court upholds government order blocking Telegram to secure NEET retest. Government empowered to issue emergency blocking directions under IT Act, writes the Indian Express. In its editorial titled Trump's Versailles and a Chance for Peace, the Tribune writes that there is delicious irony in the fact that President Trump signed the Memorandum of Understanding with Iran at Versailles on June 17. The terms of Trump's surrender at Versailles are a far cry from the conditions that he had unilaterally set for the Iranians. Like the original Treaty of Versailles in June 1919, this one will have a profound psychological impact not just on the U.S., but also on Israel, on the Gulf states, and indeed on Iran itself. And finally, an app, Abhigyan, has been launched that will soon enable police and agencies to carry out instant fingerprint-based verification of criminal records using scanners linked to a database of over 1.3 crore suspects and convicts, reports The Hindu. And with that, it's back to you, Naresh.
8: Thank you, Subhadra. But now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installments of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा।
15: آداب. خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی آج اڈیشہ کے میور بھنج ضلع میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت والے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعظم مودی مغرب بنگال کے شہر ہگلی سے 9 کروڑ سے زیادہ کسانوں کے لیے پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط جاری کریں گے. بھارت کے سینئر افسر شاہ ویویک اگروال کو مالی ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کا نائب صدر مقرر کیا گیا ہے. بھارت نے دہشت گردی کو مالی مدد فراہم کرنے کی لانت سے نمٹنے کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. این ٹی اے نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان سے پہلے آج ملک گیر سطح پر مشق کرے گی. یہ امتحان کل کرایا جائے گا. سیبی نے فوت شدہ سرمایہ کاروں کے قانونی ورثہ کو شیئرز کی آسان منتقلی کے طریقہ کار کی منظوری دے دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج دوپہر چنئی میں سیریز کے تیسرے اور آخری او ڈی آئی میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح اڈیشہ کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ان کے آبائی ضلع میور بھنج میں ملیں گے. جناب مودی کا یہ دورہ صدر جمہوریہ کے 68ویں یوم پیدائش اور اڈیشہ سرکار کے 2 سال پورے ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے. وزیر اعظم مودی آج دیر گئے مغرب بنگال کے شہر ہگلی سے پی ایم کسان اسکیم کے تحت 9,44,00,000 کسانوں کے بینک کھاتوں کے لیے 18,880 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جاری کریں گے. اس میں مغرب بنگال کے 45,00,000 سے زیادہ کسانوں کے کھاتوں میں بھیجے جانے والے 900 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم بھی شامل ہے. پیش ہے وزیر اعظم کے دورے کی خبریں دینے والے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ.
16: وزیر اعظم نریندر مودی آج 2 روزہ دورے پر مغربی بنگال پہنچ رہے ہیں. ریاست میں بی جے پی کے اقتدار کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے. اپنے قیام کے دوران وہ ہگلی میں تارا کیشور میں مغربی بنگال کے دن کی تقریبات میں شرکت کریں گے. کولکتہ کے ریڈ روڈ پر بین الاقوامی یوگ ڈے پروگرام کی قیادت کریں گے اور ملک ہی میں تیار کیے گئے 3 جنگی جہازوں آئی این ایس دوناگری، آئی این ایس سنشودھک اور آئی این ایس ایگرے کو ملک کے نام وقف کریں گے. وہ بہت سے اہم پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. جناب مودی زراعت کے شعبے کے لیے مغربی بنگال میں پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا کا بھی باقاعدہ آغاز کریں گے جس کے تحت تقریباً 50,00,000 کسانوں کو بیمہ فراہم کیا جائے گا. کولکتہ سے سندیپ انداز گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر.
15: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج پچھم بنگا دیوس کے موقع پر مغربی بنگال کے عوام کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ اس روز ایک ایسی ریاست کا جشن منایا جاتا ہے جس نے ادب، موسیقی، آرٹ، روحانیت، سائنس، تجارت اور سماجی اصلاح کی شکل میں ملک کی تاریخ میں زبردست کردار ادا کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ مغربی بنگال کی تاریخ میں اس دن کی خاص اہمیت ہے. بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بہت سی قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے اہم قدم اٹھائے ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم ایک بااختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں. پیش ایک رپورٹ.
17: بااختیار بھارت کے 2 سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہے. اس تازہ ترین پالیسی سے سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی امنگیں مینوفیکچرنگ اور ڈیزائننگ میں بدل گئی ہیں. سیمی کنڈکٹرز قومی سلامتی، اقتصادی استحکام، ڈیجیٹل خود مختاری اور مستقبل کے مقابلہ جاتی رجحان کی بنیاد ہیں. یہ مشن دسمبر 2021 میں شروع کیا گیا تھا. 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹرز مشن 2M کا آغاز کیا جس کے بارے میں الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ پہلا مشن اس پیچیدہ صنعت کے لیے بنیاد کے طور پر قائم کیا گیا تھا اور مشن 2M کے تحت ایکو نظام میں گہرائی لائی جائے گی. بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی جس میں سیٹلائٹ خلا میں بھیجا جانا بھی شامل ہے. اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا. 2014 میں محض 1 اسٹارٹ اپ تھا جبکہ اب ان کی تعداد 400 سے زیادہ ہو گئی ہے. इसकी वजह से मुल्क की प्राइवेट खलाई मईशत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
6: पिछले 12 वर्षों में भारत के स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, इसमें इसकी स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं। भारत का पहला सेफ स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्काई टू एरोस्पेस इस परिवर्तन का प्रमाण है।
17: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी और सारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम।

श्रोताओं, ये मधुर संगीत जिसके बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और धुन तैयार की थी कल्याण जी आनंद जी ने, आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे हमने लिया था फिल्म रखवाला से। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, फिल्म अनजाना से। श्रोताओं, संगीत के माध्यम से हम अपने जीवन को न जाने कितने रंगों से रंग लेते हैं और ख्यालों की ऊंची उड़ान में अपने आप को न जाने कितनी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जब सुर खनकते हैं बेजान साजों से, जब सुर खनकते हैं बेजान साजों से, आवाज के पंखों पर उड़ने लगता है कोई गीत, जब झूम झूम लहराते हैं ये दिल, क्योंकि संगीत दिलों का उत्सव है, संगीत दिलों का उत्सव है। और इसी उत्सव में आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से हम और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। साथियों, संगीत एक ऐसी कला है जिसमें संयमित सुर न केवल आवाज को तराशते हैं बल्कि जीवन को भी संयमित करते हैं। संगीत में वो जादू है जो अपनी झनकृत से निर्जीव चीजों में भी जान डाल देता है। गीतों के रंग न हों, गीतों के रंग न हों तो सूना है ये जीवन। सरगम के सुर न छिड़ें तो सूना है मन का आंगन।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाजों में फिल्म संजोग से। और आइए अब सुनते हैं गंवार फिल्म का एक गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार नौशाद अली।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
5: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: श्रोताओं, गोल्डन हिट्स कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, मेरा गांव मेरा देश फिल्म से। गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने, गीत रचना आनंद बख्शी की है और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनेंगे।
1: है अगला कार्यक्रम जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और कौशाम्बी जिलों की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए कासगंज और कौशाम्बी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का।
3: कासगंज जनपद में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 से 21 जून तक विभिन्न जन जागरूकता एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम जन तक पहुँचाना तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना है। जनपद के सभी विकास खंडों, नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर, जन चौपाल संगोष्ठियां, लाभार्थी संपर्क अभियान तथा विकास प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल इंडिया तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है। विभिन्न स्थानों पर आयोजित जन संवाद कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित कर योजनाओं के प्रभाव और क्रियान्वयन की समीक्षा भी की जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद में व्यापक वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जबकि आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह अभियान केवल सरकारी उपलब्धियों के प्रचार प्रसार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना है। जनपद कासगंज में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। श्री सिंह ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में अपराधियों, भूमाफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं महिलाओं, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जनपद कासगंज में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है, जिसका उद्देश्य योग के माध्यम से स्वस्थ, सक्रिय और संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देना है। योग सप्ताह का शुभारंभ 15 जून को कासगंज के श्री गणेश इंटर कॉलेज के मैदान में सामूहिक योगाभ्यास के साथ किया गया। इस वर्ष की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है, जिसका उद्देश्य हर आयु वर्ग में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस विशेष सप्ताह के दौरान जिले के सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों, तहसील परिसरों, विकास भवन, विकास खंड कार्यालयों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग सप्ताह का भव्य समापन 21 जून को नवीन पुलिस लाइन कासगंज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के रूप में होगा, जिसमें जन प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल होंगे। इस बारे में कासगंज की साहित्यकार और समाज सेवी पारुल बंसल ने बताया।
4: योग हमारे ऋषि मुनियों की वह अमूल्य देन है जिसने आज पूरे विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाया है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और विचारों को सकारात्मक बनाने का काम करता है। मुझे प्रसन्नता है कि

0: सरकार के प्रयासों से योग को आज वैश्विक पहचान मिली है और आज दुनिया के अनेक देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साह के साथ मना रहे। यह हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान भी है और मानवता के कल्याण का संदेश।
1: कासगंज जनपद में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खाद्य एवं रसद विभाग ने खरीद व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिले में कुल 10 क्रय केंद्र स्थापित किए हैं। सरकार द्वारा मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मंडी परिसर में 3 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जबकि सोरों, सहावर, गंज डुंडवारा, अमापुर और सिरपुरा में 1-1 केंद्र तथा पटियाली में 2 खरीद केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार खरीद प्रक्रिया पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर किसान पंजीकरण जारी है। किसानों को उनकी उपज का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। जनपद में आगामी पल्स पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस यानी NID अभियान 2026 के सफल संचालन के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर डीला रानी ने बताया कि आगामी 28 जून को जनपद के 336 पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा की खुराक पिलाई जाएगी।
2: कासगंज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कौशाम्बी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सोने लाल का।
3: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसानों की सुविधा के लिए तहसील सिराथू, चायल और मंजनपुर में उप निबंधक कार्यालयों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जिले में तहसीलों पर उप निबंधक कार्यालय की स्थापना होने से किसानों और व्यापारियों को अपनी जमीनों को बेचने और खरीदने में समय की बचत होगी। लोगों को कार्यालय में बैठने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध होगी। कौशाम्बी जिले में प्रधानमंत्री के 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर उप मुख्यमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू तहसील परिसर में एक पेड़ माँ के नाम रोपित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर किसानों और व्यापारियों के लिए लाभदायक रहा है। विभिन्न योजनाओं को प्रधानमंत्री द्वारा जन जन तक पहुंचाया गया। 213 स्वयं सहायता समूहों को 63,90,000 और 338 स्वयं सहायक समूहों को 5,07,00,000 का ऋण स्वीकृत किया गया। 12 वर्ष पूर्ण होने पर समेकित जन जागरूकता 56 ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें 7 क्विंटल से अधिक प्लास्टिक कचरा संग्रहण किया गया। कौशाम्बी जिले में 12 वर्ष सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकसित भारत संकल्प ऐतिहासिक यात्रा प्रधानमंत्री के अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव और भरोसा दिलाता है। जिले की प्रभारी मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास कृष्णा पासवान ने कहा कि 12 वर्षों की सबसे बड़ी ताकत है जनता का अटूट विश्वास और सरकार का सेवा भाव, जो 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताता है। 2019 से पहले बड़ा बहुमत देकर जनता ने मोहर लगाई और फिर 2024 में तीसरी बार जनता ने चुनकर साफ कर दिया कि देश में सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला काम किसानों के हित में किसान सम्मान निधि जारी किया। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। सरकार ने जनधन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें 32 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। कोरोना काल में 81 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन दिया गया। 60 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड जारी किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 58 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवच मिला। 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान, 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन देकर धुएं से आजादी दी गई। जल जीवन मिशन योजना के तहत 16 करोड़ से अधिक घरों में नल से साफ पानी पहुंचाया गया। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर स्वच्छता की नई क्रांति लाई गई। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से 74 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिया गया। मुद्रा योजना के अंतर्गत 57 करोड़ से अधिक ऋण बांटे गए। पीएम विश्वकर्मा योजना से 30 लाख लोगों को लाभ पहुंचाया गया। धरती आभा ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। किसानों को केसीसी योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक 10 लाख करोड़ का सस्ता ऋण दिया गया। देश में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में बड़ी छूट दी गई। माताएं और बहनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को ऋण दिया गया। बेटियों की सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए। कौशाम्बी जिले में सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का सुलह समझौता के तहत निस्तारण होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का सुलह समझौता के तहत निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 21 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मामलों के निस्तारण के लिए गूगल फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया 22 मई से प्रारंभ कर दी गई है। कौशाम्बी जिले में साइबर सेल द्वारा 23 लाख कीमत के 123 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वितरित किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि ऐप के माध्यम से चोरी और गायब हुए 23 लाख कीमत के 123 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को वापस किया गया। लोगों को जागरूक किया गया। बैंक खातों से गायब धनराशि 20 लाख से अधिक बरामद कर बैंक खातों में वापस किया गया। मिशन शक्ति योजना के तहत स्कूलों में स्टॉल लगाकर छात्राओं को जागरूक किया गया। गांव-गांव बुकलेट पेपर वितरित कर छोटे छोटे अपराधों को रोकने के लिए महिलाओं को जागरूक किया गया। कोई भी घटना घटित होने पर हेल्पलाइन नंबर 112 आपातकालीन, 1076 मुख्यमंत्री और 1090 वुमेन पावर, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 1930 साइबर क्राइम और 181 महिला हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरती गाती है और आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं राम कुमार राठौड़ के स्वर में आल्हा गायन।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना रामकुमार राठौड़ के स्वर में आल्हा गायन।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, धरती गाती है कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं रामकुमार राठौड़ के स्वर में आल्हा गायन।

0: श्रोताओं, अभी आपने रामकुमार राठौर के स्वर में ये आल्हा गायन सुना और इसके साथ ही धरती गाती है कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजे हैं और पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ममता अग्रवाल का नमस्कार। और साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अनुपम मिश्रा जी।
1: तो सभी श्रोताओं को अनुपम का भी स्नेह भरा नमस्कार।
0: साथियों, माहौल हो गीत संगीत का, उसमें साथ हो हमारा और आपका, तो फिर उस सफर की तो बात ही क्या, क्यों अनुपम?
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने ममता जी।
0: तो इस मस्ती भरे सफर की शुरुआत क्यों ना एक मस्ती भरे गीत से करें।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: अनुपम, ये कार्यक्रम का पहला गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया फिल्म परवरिश से
1: जी,
0: और जरा बताओ तो हमारे कौन कौन से श्रोता सुनना चाहते थे ये गीत?
1: हमें व्हाट्सएप मैसेज मिले हैं ममता जी, ये हमारे पहले श्रोता जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, ये हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनका पूरा डागला परिवार। ये हैं रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से
0: जी। और ये अगला मैसेज हमें मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, और इसी गीत को सुनना चाहते थे।
1: ये है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा।
0: इसी गीत की फरमाइश हमें की है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने।
1: इसी गीत को सुनना चाहते थे दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना। ये हैं फजिल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल, शालिनी, टिवानाशी और इनकी परिवार के सभी सदस्य।
0: अनुपम, मैं देख रही हूँ कि इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे कुछ और श्रोताओं ने भी की है।
1: हाँ जी।
0: ये हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, विद्या कुमारी और दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी। हमें उम्मीद है श्रोताओं आपने अपनी पसंद का ये गीत जरूर सुना होगा। और अब कार्यक्रम का अगला गीत, आइए देखते हैं हमारे कौन से श्रोताओं की फरमाइश पर है। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, ये गीत सुनना चाहते हैं। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना और मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी, हिना कौसर, ये हमारे श्रोता हैं।
1: और इसके साथ ही
0: महला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से ये श्रोताओं की फरमाइश थी। और अगली फरमाइश अनुपम,
1: ये अगली फरमाइश है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण।

0: अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। मजनू का टीला से हमें ये मैसेज भेजा है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। इसके साथ ही ये हमारे श्रोता हैं मगनपुर झारखंड से अब्बास आलम, अमजद अली, लाडली बेबी निशा और इनके परिवार के सभी सदस्य। इस गीत को सुनना चाहते हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही श्रीमती सरिता गवाड़कर और प्रिंस एकांश गवाड़कर।
1: तो अनुपम, हम बता दें कि इन सब श्रोताओं की फरमाइश पर हम कार्यक्रम का अगला गीत कौन सी फिल्म से सुनवाने जा रहे हैं।
0: जी,
1: ये गीत है फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे से, और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। तो अनुपम, देर ना करते हुए सुनवा दें अपने श्रोताओं को।
0: बिल्कुल ममता जी।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप सुन रही हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और इस कार्यक्रम में अगर आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं और कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हमें SMS कीजिए। अनुपम नंबर बताएंगे
2: जी हाँ,
1: SMS करने के लिए।
2: जी हाँ ममता जी, तो श्रोताओं हमारा नंबर है 9457078288।
1: जी हाँ श्रोताओं, जल्दी से हमें मैसेज कीजिए और बताइए कि कौन सा गीत आप अपनी पसंद का सुनना चाहते हैं। हम आपको आपके गीत के साथ कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। और अनुपम जी, अब श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम का अगला गीत आप कौन सा सुनवा रही हैं?
2: ममता जी, कार्यक्रम में अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे फिल्म हाले दिल का नगमा, जिसे आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और पमिला जैन ने। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे कुछ ये श्रोता। ये हैं कंवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन MP से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली। गांव फरांसी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। ये फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं नासिर शेख, नाजियान सीर, साजिद शाहिद और गोविंदपुरा अहमदनगर से हैं जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर और मिखाइल जैनब मुजावर।
1: कुछ और श्रोता हमें फरमाइश कर रहे हैं इसी गीत के लिए।
2: जी
1: ये हैं कश्मीर से परजादे मिराज उद्दीन, मेरे ये
2: मिराज उद्दीन और इनके परिवार के सभी सदस्य
1: जी। और ये एक और फरमाइश हमें मिली है
2: जी,
1: गांव गाधरोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी विमला देवी, बलराम गिरी मधु देवी, भारत गिरी सोनिया देवी, सिमरन गोविंद, वंशिका रमन और दिव्या। ये फरमाइश की है अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी शेंडे और सिद्धांत गोंडाने ने। इसके साथ ही ये फरमाइश हमारे पास आई है महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रितेश संघई और पूरा संघई परिवार की। ये फरमाइश है दिलीप कुमार सोनी की मुंदीचक भागलपुर से। और इसी गीत को सुनने के लिए फरमाइश हमें अनुपम जी कुछ और श्रोताओं ने की है।
2: जी हाँ ममता जी, ये हमारे श्रोता हैं शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। इसके साथ ही हैं ये कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। ये तो, है जी एक फरमाइश और शामिल कर लेते हैं जी। ये है नाचगुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर, जिया उल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारे। तो इन सभी श्रोताओं की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हाले दिल का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और पमिला जैन की।
3: ओए, ओए, ओए।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म दबंग 2 से सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाजों में। अनुपम जी, गीत संगीत के इस खूबसूरत से सफर का एहसास भी कितना खूबसूरत सा हो रहा है ना अपने श्रोताओं के साथ।
1: बिल्कुल ममता जी, जब सुबह सुबह हम कनेक्ट करते हैं अपने श्रोताओं के साथ, गीत उन्हें उनके पसंद के गीत सुनवाते हैं, तो एक ये कह लीजिए कि दिन की शुरुआत ना बहुत ही अच्छी हो जाती है।
0: बिल्कुल, और हम अपने जितने ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को शामिल कर पाते हैं हमें उतनी ही खुशी भी होती
1: बिल्कुल।
0: है। तो जरा बताइए तो कि ये जो हमने गीत सुनवाया इसको कौन कौन से श्रोता हमारी सुनना चाहते थे?
1: जी, तो इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद थे कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान। ये थे हमारे श्रोता झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, मयंक भाटिया और रजत भाटिया। यह कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, सचिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, कमल कुमार और मोहम्मद अफजल मलिक।
0: इसी गीत को सुनना चाहती थी मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से रफत साहब, भाई मंसूरी राशिद, भाई मंसूरी असद भाई, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली, साथ में नगमा नाज मंसूरी। एक और फरमाइश हमें मिली है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, बसंतराव भोजने, पी एस वानकर और तुषार करांगले। ये फरमाइश की है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का। ये इसी गीत के लिए हमें एक और फरमाइश मिली है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की। तो अनुपम जी, हम इस सफर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म धर्मवीर का।
1: जी,
0: मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: बिल्कुल,
0: और इस गीत को सुनना चाहते हैं
1: यह है जिला खरगैन सनावत मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार वोडाना और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। यह है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्बी। एकता कॉलोनी रोहतक से श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत और अंकित कांगड़ा।
0: इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास कुछ और फरमाइश भी आई हैं। करूला मुरादाबाद से सुनना चाहते हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी और ये फरमाइश है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। कुछ और श्रोता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत। ये अगली फरमाइश हमें मिली है
1: यह है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा। ये श्रोता है हमारे साथ रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज और भाभी सरिता गौतम।
0: तो अनुपम जी, इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर इस सफर को और खूबसूरत बना दें
1: बिल्कुल
0: प्यारे से गीत के साथ।
1: बिल्कुल ममता जी, एक म्यूजिकल ब्रेक तो बनता ही है।
0: जी,

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म धर्मवीर का गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। और ममता जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
1: बिल्कुल
0: अगला
1: जी,
0: कौन सा गीत हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं?
1: कार्यक्रम का अगला गीत तो अनुपम जी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले अपने श्रोताओं की फरमाइश देख लें कि हमारे कौन कौन से श्रोता चुनना चाहते हैं। ठीक है,
0: ठीक है ममता जी। तो ये हमारे श्रोता हैं जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। इसके साथ ही हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े।
1: ये एक और फरमाइश हमें मिली है पांडरकवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे। और ये फरमाइश है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। बुलडांडा वशिंगी महाराष्ट्र से ये फरमाइश है अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार की। ये एक और फरमाइश है, हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, ये है आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय, शुभम बेंडे, पवन और उनके परिवार के सदस्य। ये फरमाइश हमें मिली है आकोट से। कृष्ण की नगरी मथुरा से भी हमें फरमाइश मिली है अनुपम जी, ये है सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदनी और अंजलि की। एक और फरमाइश हम देख रहे हैं,
0: ये है गांधी रोड गंज डुडवारा से ममता जी, मोहम्मद आसिफ शेख, मोहम्मद अजीम शेख, मोहम्मद जावेद शेख, फातिमा गाजी शेख, मुन्ने सलमानी और एम कलीम शेख। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से श्रोता है रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान।
1: अनुपम जी, आपने ये तो बता दिया कि हमारे कौन कौन से श्रोता कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं। अब हमने आपसे कहा था कि हम फरमाइश के बाद आपको बताएंगे।
0: जी हाँ, आपने सस्पेंस रखा था
1: प्रोग्राम में, तो अब हम उस सस्पेंस को तोड़ते हुए आपको बताते हैं। चलिए श्रोताओं, सुनते हैं यादों की बारात फिल्म से ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। आइए हम और आप सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, आपने सुना फिल्म यादों की बारात से ये गीत, जिसे आवाज दी थी आशा भोंसले और मोहम्मद रफी ने। अनुपम जी, इसी गीत को सुनने की फरमाइश हम देख रहे हैं, अभी अभी मिली है हमें कुछ और श्रोताओं की।
1: जी हाँ, ये है साबिर अली, ग्राम ध्यानपुर, जिला मुरादाबाद से हमारे श्रोता, और इसके साथ ही ये हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। ये भटिंडा पंजाब से हमें मैसेज भेजा है प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत।
0: श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें मैसेज करते रहिए और हम आपको कार्यक्रम में शामिल करते चलें।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म दीवाना से कुमार सानू और साधना सरगम के युगल आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत अनुपम जी हमने लिया है फिल्म इश्क से
1: जी,
0: और इस गीत में आवाजें हैं कुमार सानू, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की।
1: और ममता जी, आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत है,
0: लेकिन गीत सुनवाने से पहले हम अपने श्रोताओं की कुछ मिली जुली फरमाइश बता दें
1: जी।
0: वो इस तरह से है, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडक श्रीमती नंदा बोट के, हनुमान बोट के उत्तम जमदाडे, और ये फरमाइश है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत, और ये फरमाइश है अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली, समर फुलमाली और वेदिका फुलमाली।
1: इसी गीत के लिए ममता जी एक फरमाइश हमें और मिली है, बागपत उत्तर प्रदेश से हैं ममता ढिंगिया और कुणाल ढिंगिया। ये हैं हमारे श्रोता जो हमें कार्यक्रम में मैसेज भी भेज रहे हैं, उत्तम नगर दिल्ली से। मुझे लगता है इनकी फरमाइश को हम शामिल कर चुके हैं। ये हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख। शास्त्री नगर बीड शहर से हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साई राज और विशाल सपकाल। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, सलमा असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी।
0: तो इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे संपन्न करने की ममता अग्रवाल
1: और अनुपम मिश्रा को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं यसुदास की आवाज में। फिल्म का नाम है चित्तचोर। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

श्रोता हूँ, अभी आपने यस्सुदास की आवाज़ में सुना फिल्म चितचोर का ये गीत। गीत और संगीत श्रोताओं रविंद्र जैन का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आपके साथ से। गीत को अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं, और कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म जानी दुश्मन का ये गीत। शब्द रचना वर्मा मलिक की है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जानी दुश्मन। श्रोताओं, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीत के बोल लिखे थे वर्मा मलिक ने और उन्हें संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नया दौर से। आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत है ओपी नैयर का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म में नया दौर का गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की थी और संगीत था ओपी नैयर का। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कभी कभी। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और उन्हें संगीतबद्ध किया है खयाम ने।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
3: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में फिल्म आग ही आग का ये नगमा। शब्द रचना अनजान की है और संगीत है बप्पी लहरी का।

आग ही आग। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शब्बीर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे थे अनजान ने और उन्हें संगीतबद्ध किया था बप्पी लहरी ने। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म में मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत। शब्द रचना अनजान की है और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

मुकद्दर का सिकंदर। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे अनजान ने और उन्हें संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए सुनते हैं फिल्म बेवफा का गीत गुलाम अली के सुर में। शब्द रचना समीर की है और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

श्रोता हूँ, अभी आपने सुना गुलाम अली के सर में फिल्म बेवफा का ये गीत। गीत लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अनुरोध का ये नगमा। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

श्रोताओं, फिल्म अनिरोध का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार के स्वर में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और आइए अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं हेमलता के स्वर में फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाए का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

श्रोताओं, आज रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रात 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, और दिन में 3:55 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। आज रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से बातचीत का प्रसारण।

संध्या 7:32 पर आप सुनेंगे मिर्जा हॉस्पिटल किरतपुर में आयोजित गोल्डन जुबली ऑफ केयर कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे मिर्जा हॉस्पिटल किरतपुर बिजनौर। वाचन स्वर और प्रस्तुति सहयोग जसवंत सिंह का होगा। कार्यक्रम विविधा में शाम 6:45 पर सुनिएगा डॉक्टर शंकर लाल शर्मा की पूर्व प्रसारित वार्ता मानव मन की अभिव्यक्ति का अद्भुत माध्यम कविता। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम महिला जगत में आज आप सुनेंगे महिलाओं के लिए आवश्यक है योग।

लोकगीतों वारागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोक मंजरी। कार्यक्रम इबुवाणी में शाम 5:15 पर आज आप सुनेंगे क्रम स्क्रैप बुक के अंतर्गत अर्श से उज्मा की बातचीत और क्रम कहानी के उस पार में भोली एपिसोड नंबर 5। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज के क्षमा कीजिए दिन में 2:30 पर कार्यक्रम एक ही गीतकार में आज के गीतकार होंगे कुमार। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में दिन में 1:45 पर सुनिएगा भुंगर खान और साथियों के गाए राजस्थानी लोकगीत। शाम 7:47 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवाएंगे रामेश्वर प्रसाद शर्मा के स्वर में भजन। और श्रोताओं, अब से बस थोड़ी ही देर बाद यानी 12:05 पर सुनेगा कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव, जिसमें आज बातचीत का विषय होगा स्वस्थ आयु के लिए योग।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। पेश है कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम जिंदगी लाइव में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आपके व्हाट्सएप संदेशों को हम शामिल करते हैं, यानी पूरे कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ बने रहते हैं। इसलिए हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि कार्यक्रम जिंदगी लाइव में ऐसे विषय को लेकर आएं जो हमारे जीवन से जुड़ा हो और जो जीवन को और ज्यादा बेहतर बनाने वाला हो, और आज भी हमारी ऐसी ही कोशिश है। आज के कार्यक्रम को सुनकर श्रोताओं, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आ सके। तो आज आपसे हमारी बातचीत का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। तो इस विषय पर आप अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए श्रोताओं, नोट करें हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारा नंबर है 9594507078288, 9457078288। श्रोताओं, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि ये तो जीवन जीने का एक वैज्ञानिक और अनुशासित तरीका है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। योग शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाता है, या यूं कहें कि तीनों को जोड़ता है। योग कोई नई क्रिया नहीं है श्रोताओं, ये तो हजारों सालों से हमारी संस्कृति में अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु का आधार बना हुआ है। आप योग के बारे में क्या जानते हैं, अपने संदेशों के जरिए हमें जरूर बताएं। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोताओं, गीत के बाद कार्यक्रम जिंदगी लाइव में आपका फिर से स्वागत है। और आज आपसे बातचीत का हमारा विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इसी के साथ कार्यक्रम में मैसेज आ चुके हैं, तो कार्यक्रम का ये पहला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं मोहल्ला हलवायान कस्बा शेरकोट जिला बिजनौर से, जो हमें मिला है मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया और हिना कौसर ने। ये लिखते हैं कि हमें योग करना चाहिए, योग करने से हम निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इसके लिए हमें व्यायाम करना है और सुबह जल्दी भी उठना है, और सुबह जल्दी उठ के पैदल भी ज़रूर चलें। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सुबह जल्दी उठना तो अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। मैसेज करने के लिए आपका शुक्रिया, हमारे साथ यूं ही बने रहिए। श्रोताओं, आजकल की जो भागदौड़ से भरी जिंदगी है, उसमें तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज़ और हृदय रोग जैसी समस्याएं बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। आज लगभग हर उम्र का व्यक्ति दवाइयां ले रहा है, कारण शरीर में कोई ना कोई रोग जगह बना चुका है। और देखने में तो ये भी आता है श्रोताओं कि दवा के बाद भी कई बार बीमारियों से छुटकारा नहीं मिल पाता है। ऐसे में दवा के साथ अगर हम योग का सहारा लेते हैं तो रोग मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि योग कोई बाहरी चीज़ नहीं है, ये तो हमारे शरीर और आत्मा का भोजन है।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव, और आज आपसे बातचीत का हमारा विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी कि हम जितना भी जीवन जिए वो पूर्णतः स्वस्थ होकर जिए। तो कार्यक्रम में हम एक मैसेज शामिल कर रहे हैं जो कि भेजा है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से। हमारे श्रोता हैं लाल मोहम्मद अंसारी और तमन्ना परवीन। ये लिखते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत ज़रूरी है। अगर हम योग करते हैं तो हम निरोग रहते हैं, और सुबह सुबह जल्दी उठना और टहलना और साथ ही योग करना, ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। जी हाँ, बिल्कुल एकदम ठीक बात कही है आपने कि सुबह जल्दी उठना, टहलना और योग करना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी वाकई है। तो कार्यक्रम में मैसेज करने के लिए आपका शुक्रिया। श्रोताओं, अगर हम रोज़ाना योग करते हैं तो इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। और अगर कोई इन्फेक्शन हमें हो भी जाता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने की ताकत रखता है। इसके साथ ही हमारे दिल की सेहत भी अच्छी रहती है, रक्त संचार बेहतर होता है, तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है, और सबसे बड़ी बात श्रोताओं की मानसिक शांति अनुभव होती है, जो कि आज के समय में बड़ी ही कीमती हो गई है। आज हम जरा जरा सी बातों पर अपने मन की स्थिति को खराब कर लेते हैं, ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि हम प्राणायाम करें। आज हम मेंटली परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमें आप ज़रूर बताएं। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी लाइव, और आज आपसे बातचीत का हमारा विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रोताओं, कल यानी 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस साल हम 12वां योग दिवस मना रहे हैं और जिसकी थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, यानी सभी आयु वर्ग के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने में योग की अहमियत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 से 2030 के दौरान मनाए जा रहे स्वस्थ आयु के लिए दशक के लिए अनेक लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिन्हें हासिल करने में योग से मदद मिलेगी। चलिए बात करते हैं इस दिन की शुरुआत की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर साल 2014 को एक प्रस्ताव पारित करके हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी, और तब से ही हर साल ये दिन हम मनाते आ रहे हैं। और कार्यक्रम में चलिए शामिल करते हैं अब एक और मैसेज जो हमें मिला है गांव गाधरोना पोस्ट लंधौड़ा रुड़की से, और लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मदन गिरी, विमला देवी, बलराम गिरी, मधु देवी, भारत गिरी, सोनिया देवी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी, रमन गिरी और दिव्या गिरी। श्रोताओं, इन्होंने मैसेज हमें लिखकर भेजा है कि बड़े हर्ष का विषय है कि कल 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनवाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अथक प्रयास रहा है। उनके प्रयासों से ही विश्व के अधिकांश देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। योग कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे पूर्वज भी योग किया करते थे, हमारे ग्रंथों में इसके वर्णन मिलते हैं। योग कोई विशेष धर्म का भी नहीं है, सभी धर्मों में योग का वर्णन किया गया है। ये हम सबको मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखने के लिए ज़रूरी है, इसलिए हमें रोज़ाना योग करना चाहिए। कार्यक्रम में आपने मैसेज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपने सही बात कही है कि योग कोई नई चीज़ नहीं है, इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। तो हम सबको कोशिश करनी है कि अपने दिन के समय में से थोड़ा सा समय अपनी हेल्थ के लिए निकालें और सुबह सवेरे योगा ज़रूर करें।

श्रोताओं, कार्यक्रम जिंदगी लाइव में आज हम बात कर रहे हैं योग के विषय में। तो श्रोताओं, योग कोई मुश्किल काम नहीं है, ना तो इसमें पैसे खर्च होते हैं और ना ही हमें किसी और के सहारे या मदद की इसमें ज़रूरत होती है। हमें तो बस अपने दिन के 24 घंटों से कम 20 या 30 मिनट रोज़ाना खुद को देने हैं। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, और काया को स्वस्थ रखने के लिए बेहद ज़रूरी है इसे एक्टिव रखना। योग से हमारे शरीर की हर कोशिका को नई ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा शरीर फिट रहता है और हम लंबा जीवन जी पाते हैं। अगर योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तो हम शरीर और मन से जुड़ी कई समस्याओं को श्रोताओं खुद ही ठीक कर सकते हैं। और एक और श्रोता हमें ये मैसेज भेज रहे हैं, लिखते हैं कि योग करने से बीमारियां पास नहीं आएंगी और योग के बहुत फ़ायदे हैं, तंदुरुस्ती बनी रहती है।

ये संदेश हमें लिखकर भेजा है शाही मार्केट सिहारा ज़िला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफा चौधरी, रिहाना अदीब और कादिर चौधरी ने।

जी हाँ श्रोताओं, जब हम ठान लेते हैं तो कोई भी मैदान हो चाहे हम उसे फतेह कर ही लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन योग क्रियाओं की जो स्वस्थ जीवन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ताड़ासन की, जो कि करने में श्रोताओं एकदम आसान है। बस सीधे

खड़े होना है और दोनों हाथ ऊपर उठाकर पूरे शरीर को खींचना है। ये आसन हमारे पोस्चर को ठीक रखता है। चलिए अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करने वाले आसन भुजंगासन की। पेट के बल लेटकर शरीर के ऊपरी भाग को ऊपर उठाना होता है और इसी अवस्था में कुछ देर रुकना होता है। इसके अलावा श्रोताओं, बेहद आसान होता है वज्रासन। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठना पाचन संबंधी दिक्कतों को दूर कर देता है। साथ ही मलासन भी पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये सब आसन करने में बेहद आसान है श्रोताओं, और हमें पता है हमारे कुछ श्रोता इन्हें करते भी होंगे। तो बारी है कार्यक्रम में संदेश को शामिल करने की। तो ये मैसेज है ज़िला मुरादाबाद, ग्राम धूलापुर, उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का। लिखते हैं कि जीवन में हमें योग अवश्य करना चाहिए। योग से हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। योग स्वास्थ्य के लिए तो है ही, लेकिन मन की शांति के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल एकदम ठीक कहा आपने, मन की शांति के लिए भी योग करना बहुत ज़रूरी होता है।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये मैसेज हमें मिला है गांव राहू नगली जिला बिजनौर से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान और राघव चौहान का। इन्हें ये अपने मैसेज में लिखते हैं कि योग का अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। कुछ लोग एक्सरसाइज को ही योग समझ लेते हैं जबकि दोनों अलग अलग हैं। योग के अष्टांग नियम हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, आहार, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। इसके द्वारा हमें अपने शरीर की सातों चक्रों और कुंडली को जागृत करना होता है। इससे पूरे शरीर में ऊर्जा भर जाती है और हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। योग सुबह के समय या शाम को खुले स्थान में हल्के कपड़े पहनकर करना चाहिए। कार्यक्रम में मैसेज करने के लिए आपका शुक्रिया और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए भी। हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो श्रोताओं, अब चलिए बात करते हैं उन आसनों आसन के बाद प्राणायाम की। श्रोताओं, प्राणायाम सांस को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। भ्रामरी तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। अनुलोम विलोम और कपालभाति श्वसन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और मानसिक शांति का अनुभव कराते हैं। गहरी सांस लेने से फेफड़ों की काम करने की क्षमता बढ़ती है। रोजाना 10 से 15 मिनट का प्राणायाम हमें लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। बात अगर ध्यान की करें श्रोताओं, तो ध्यान करने से मन शांत होता है। नियमित रूप से ध्यान करने से सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है।

श्रोताओं, आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं योग के विषय में। श्रोताओं, योग हर उम्र वर्ग के व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है। वैसे तो सबसे अच्छा समय योग करने के लिए सुबह सवेरे का माना जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें योग नहीं करना है, कम से कम 4 से 5 घंटे का अंतर होना चाहिए। श्रोताओं, योग केवल अभ्यास नहीं है बल्कि ये स्वस्थ जीवन की कुंजी है। अगर हम रोज़ाना थोड़ा समय योग को दें तो हम हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए हम संकल्प लें कि हर दिन हम योग करेंगे, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएंगे। तो इसी के साथ कार्यक्रम में चलते चलते हम आपको सुनवा रहे हैं एक और गीत, और इसी के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न करने की हम चाहेंगे आपसे अनुमति।

0: अभी आप सुन रहे थे कंपेयर्ड और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्षीय थे। श्री

0: Chief INB and a News Services Division of All India Radio. He also served as AIR Special Correspondent in Singapore. He is survived by his wife and daughter. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Brazil had come into the game under pressure after being held to a draw by Morocco in their opening Group C fixture. And that is the end of this news bulletin.
1: खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस स्कीम के तहत मुल्क भर के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक्किद एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की मुराद तकसीम की। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क भर के एक वर्चुअल सामेईन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की नौजवान ताकत पर बहस कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम का मकसद पहली बार मुलाजमत के मुतलाशियों को बाइख्तियार बनाना और नौजवानों और सनत के दरमियान पुल बनाना है। वजीर आजम ने कहा कि इस स्कीम से बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा हुई हैं। जनाब मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के नौजवानों की ख्वाहिशात, हुनर और सलाहियतें तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की राह हमवार करती हैं।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70,00,000 जॉब सृजित हुई है। करीब 20,00,000 युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस पहल के तौर पर लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ और गोरखपुर समेत रियासत के 17 जिला में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 290 करोड़ रुपए से ज्यादा के 245 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। कबल चीफ मिनिस्टर ने गोंडा में देवी पाटन और बस्ती डिवीजनों के महकमा तामीरात आम्मा के साथ मीटिंग की और 13 बड़ी सड़कों की तरक्की को मंजूरी दी। उन्होंने कुल 4,901,65,00,000 रुपए के 1,000 से ज्यादा तरक्याती मंसूबों की तजावीज को भी मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स ममालिक के साथ तिजारत, टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के रवाबत को बढ़ा रहा है। रियासती हुकूमत ने इतला दी है कि माली साल 2025-26 के दौरान ब्रिक्स ममालिक और शराकत दार ममालिक को 5,36,00,000,00,000 डॉलर से ज्यादा की बरामदाद की गई। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के वजीर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्तलिफ ममालिक को मशीनरी, गारमेंट्स, चमड़े के सामान, कालीन और कीमती पत्थर बरामद कर रहा है। रियासती हुकूमत के एक बयान के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक को 3,94,00,000,000,000 डॉलर और पार्टनर ममालिक को तकरीबन 1,43,00,00,000,000 डॉलर की बरामदात की गई। आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम में ब्रिक्स ममालिक और माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के इंटरप्राइजेस सेक्टर के नुमाइंदों ने शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुल्क में गुज़िश्ता 12 सालों में गैर मामूली तब्दीली हुई है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के उसूलों पर कार फरमा है। ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों में अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों को उजागर करने वाले खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। आज हुकूमत की इन तब्दीलियों के इकदाम के बारे में जानें जो एक मजबूत हिंदुस्तान के विजन को पूरा कर रही हैं।
3: सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियाँ कर सकती हैं।
1: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कल के नीट UG के दोबारा इम्तिहान से पहले आज मुल्क गिर मॉक ड्रिल करेगी। ये मश्क इम्तिहान से कबल तैयारी के मेयार का जायजा लेने के लिए की जा रही है। दरियस्ता नीट इम्तिहान 2026 के उम्मीदवारों की सहूलत के लिए शुमाल मशरकी रेलवे लखनऊ डिवीजन इंतजामिया की तरफ से कल 21 जून को गोरखपुर और लखनऊ गोरखपुर के दरमियान दो जोड़े गैर महफूज इम्तिहानी खसूसी ट्रेने चलाई जाएंगी। दरियस्ता शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीजन भी 21 जून को खसूसी गैर महफूज इम्तिहानी खुसूसी ट्रेन चलाएगा। और महकमा मौसमियात ने आज रियासत के मगरबी इलाकों के कुछ अजला में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है, जबकि मशरकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी और रियासत भर में मौसम खुश्क रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
4: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों को आपके साथी गजाला खान का प्यार भरा नमस्कार। और बहनों, कैसी हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और साथ ही साथ आज के महिला जगत कार्यक्रम का आनंद ले रही होंगी। बहनों, कहते हैं आधुनिक जीवन शैली में फिट रहने के लिए व्यायाम और योग को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना जरूरी है। बहनों, फिटनेस के लिए जिम जाना जरूरी नहीं, नियमित रूप से घर पर रहकर भी हम योगा करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। बहनों, योग एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली है जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाती है। योग शरीर को स्वस्थ, लचीला बनाता है। और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो बहनों, आज क्रम आधी आबादी के अंतर्गत हम बात करते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक व्यक्तित्व की जिनका नाम है डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र। बहनों, हंसा जी ने अपने जीवन को योग के माध्यम से सार्थक बनाया है और अपने साथ साथ लाखों महिलाओं को भी स्वस्थ, आत्मविश्वासी और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा दी है।
1: पहले औरतें कुछ अलग से नहीं करती थी, पहले उनके घर के काम ही सब आसन हो ही जाता था। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है चलना। सो के उठते हो तो जरा बॉडी को स्ट्रेच तो करो, जैसे डॉग भी करता है, बच्चा भी करता है, बच्चा भी यूं करके अंगड़ाई लेता है। अब हम लोग फुल मून मेडिटेशन करते हैं, पूरा चांद फुल मून है ऊपर स्काई पे, उसकी रोशनी आप पे आ रही है, आपको लगता है कि बस आप चांदनी में स्नान कर रहे हो। अच्छी भावनाएं लाने के लिए ये सब करना जरूरी।
0: बहनों, जब भी हम किसी सफल महिला या किसी भी सफल व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हमें उनकी उपलब्धियां तो दिखाई देती हैं, मगर उन उपलब्धियों के पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष, अनुशासन और समाज के लिए महिलाओं के लिए कुछ करने की भावना छुपी हुई होती है। बहनों, डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र भी एक ऐसी ही प्रेरणादायक महिला है। बहनों, अक्सर हम देखते हैं अगर हमें कुछ भी करना है उसके लिए हमें अपने आप को पक्के इरादों के साथ तैयार करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है हम अपने लिए कुछ भी करना चाहते हैं मगर अपने आलस के कारण कोई भी बहाना बनाकर कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। बहनों, डॉक्टर हंसा जी अनुशासन के बारे में बताती हैं।
1: योग जो सब्जेक्ट है, इट डील्स विद डिसिप्लिन। पहला सूत्र ही योग का है, अथ योग अनुशासनम। अनुशासन, योग इज अ साइंस ऑफ डिसिप्लिन। अमुक चीजें गलत है वो नहीं करते, किसी को हर्ट नहीं करना मतलब नहीं करना। वो हर्ट हो जाए वो उसका प्रॉब्लम है, उसके स्वभाव से हर्ट होता है, मगर आपका इंटेंशन उसको हर्ट करने का नहीं है, तो दैट्स इट। मगर हर्ट होना भी नहीं, कोई कुछ बोले और आप हर्ट हो गए तो वो कितना गलत है। दोनों एक ही बात है ना, किसी को हर्ट करूं या मैं खुद को हर्ट करूं।
0: मैंने हंसा जी का जन्म 8 अक्टूबर 1947 को इंदौर में हुआ था। हंसा जी ने विज्ञान और

0: कानून की पढ़ाई की। उस समय महिलाओं के लिए करियर के अवसर आज की तरह आसान नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा को अपनी ताकत बनाया और आगे चलकर योग के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। पैनो हंसा जी योग के विषय में बताती हैं।
1: देखिए, योग एक सब्जेक्ट है विच टेल्स यू कि भाई जीवन कैसे जीना। वैसे तो हर व्यक्ति अपना जीवन जीता ही रहता है अपने ढंग से, लेकिन हम किस व्यवस्थित ढंग से जिए जिससे ना तो आपको कोई डिजीजेस हो ना कोई प्रॉब्लम हो, और ये संसार के अप्स एंड डाउन्स को आप मैनेज कर सको इजीली बिना डिस्टर्ब हुए। जैसे क्या होता है ना कि कोई ने कोई रूड बिहेवियर किया आप डिस्टर्ब हो गए, किसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया आप डिस्टर्ब हो गए। अब ऐसे ही डिस्टर्ब किसी से भी होते रहेंगे तो फिर हम आनंद कब लेंगे, कैसे हम खुशी की जिंदगी जी पाएंगे, क्योंकि दुनिया में तो सारे लोग आजू बाजू है और हर एक का अपना स्वभाव है। कोई चिल्ला के ही बोलता है, कोई गोल गोली बोल, सारे स्वभाव के लोग होते हैं और वो हमारे आसपास ही होते। अब अगर ऐसे ही हम डिस्टर्ब होते रहे लोगों से तो फिर हम अपने अंदर डिजीजेस बढ़ा रहे हैं। सारे प्रॉब्लम की रूट कॉज जो है वो हमारा माइंड।
0: विवाह के बाद उनका जुड़ाव योग की दुनिया से गहरा हो गया। उन्होंने महसूस किया कि महिलाएं अपने परिवार, अपने बच्चों और अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल तो रखती हैं, लेकिन अक्सर खुद को भूल जाती हैं। यहीं से उन्होंने महिलाओं को संदेश देना शुरू कर दिया कि अगर महिला स्वस्थ होगी और खुश रहेगी तो परिवार भी खुश और स्वस्थ रहेगा। आज की महिला घर को संभालती है, नौकरी भी करती है और बच्चों की जिम्मेदारी भी निभाती है। ऐसे में तनाव, थकान, मानसिक दबाव होना स्वाभाविक है। बहनों, हंसा जी हमेशा कहती हैं कि महिलाओं को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनका मानना है कि दिन में सिर्फ कुछ मिनट योग, प्राणायाम और ध्यान के लिए निकालना भी जरूरी है। हम अपने लिए सोचेंगे तो और लोग भी हमारे लिए सोचेंगे। अगर हम अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं तो जीवन में एक अच्छा और बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपने आप को पूरे दिन एक्टिव रखना चाहिए। बहनों, उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से यह साबित कर दिया कि उम्र कभी सीखने और आगे बढ़ने के लिए बाधा नहीं बनती। आज भी वह पूरे उत्साह के साथ लोगों को योग और सकारात्मक जीवन की शिक्षा दे रही हैं। योग के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें कई सम्मान भी मिले हैं। उन्हें भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय योग पुरस्कार भी शामिल है। उन्हें भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय योग पुरस्कार भी मिला है। बहनों, हमें अपने लिए यह संकल्प लेना चाहिए कि हमें अपने परिवार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने सपनों को महत्व देना चाहिए और सबसे ज्यादा अपने आप खुद से प्रेम करना चाहिए। हर दिन अपने लिए समय जरूर निकालना चाहिए।
2: तो बहनों, चलते हैं अब संदेशों की ओर और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
5: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
4: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
5: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
4: आप कौन?
6: आरबीआई कहता है,
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
8: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
9: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: चंदन का एहसास।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: संदेशों के बाद आप सभी का दोबारा स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। बहनों, योग हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। योग करने से हमारा पूरा शरीर बहुत लचीला रहता है। जैसे आजकल थायराइड, शुगर, कमर दर्द, पैरों में दर्द की समस्याएं बहुत देखने में आती हैं। तो अगर हम अपने लिए थोड़ा समय निकाल कर योगा करते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बहनों, योग करने से व्यक्तित्व में निखार आता है और बल्कि

0: आत्मविश्वास भी भर जाता है। तो बहनों चलिए फिर सुनते हैं सोनू जोशी अरोड़ा से अर्चना त्यागी की बातचीत। बातचीत का विषय है महिलाओं के लिए आवश्यक है योग।
1: बहनों, मानव ईश्वर की एक अनुपम कृति है, जिसके पास अच्छा सोचने विचारने के लिए जहां बुद्धि विवेक है, वहीं बाहरी भटकाव को नियंत्रित करने वाला मन व आत्मा भी है। वास्तव में योग का महत्व प्राचीन काल से ही हमारे दर्शनों में वर्णित है। कहा जाता है योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो न केवल आत्म साक्षात्कार कराता है, बल्कि सभी प्रकार के नकारात्मक विकारों को मन से दूर कर सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने की कला भी सिखाता है। सही मायनों में हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति का आधार योगी है। बहनों, आज के समय में योग किस प्रकार हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है और क्या इसका महत्व है, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में आमंत्रित हैं हमारी खास मेहमान। हाँ, तो सबसे पहले लेते हैं आपका परिचय। आप हैं?
2: मैं सोनू जोशी अरोड़ा। आप सभी स्वस्थ, निरोगी और प्रसन्न चित रहे।
1: धन्यवाद सोनू जी आपका, और बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। हाँ, तो सोनू जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको कितना समय हो गया योग से जुड़े हुए, क्यों योग को आपने जीवन का अपना अभिन्न हिस्सा बनाया, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में आप हमारी बहनों को बताएं।
2: सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि योग एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा साधन है जो आपके मन और मस्तिष्क पे काम करता है। मैं 2021 में जब ये कोविड की दूसरी लहर आई थी, तब योग से जुड़ी थी, क्योंकि योग कोविड टाइम पर मुझे भी कोविड हो गया था, जिस वजह से कई सारे रोग मेरे शरीर में लग गए थे, जैसे थायराइड, शुगर, अस्थमा, ज्वाइंट एक्स। जब मुझे डॉक्टर ने योग के लिए सजेशन दिया तो मैं योग की तरफ गई। मैंने कुछ ही टाइम में देखा कि योग करने से मेरे शरीर में जितने रोग थे वो धीरे धीरे जा रहे थे। जब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हुई तो मैंने अपने पति के साथ योग करना शुरू किया। मेरे पति भी धीरे धीरे अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल में आने लगे। अब जब आसपास के लोगों ने देखा तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमसे पूछा कि आप क्या हमें भी योग सिखा देंगे। जब मैंने उनके साथ योग उनको सिखाना शुरू किया तो धीरे धीरे उनके शारीरिक जीवन में भी बदलाव आना शुरू हुआ। तो 2021 से मैं इस योग से जुड़ी हूँ और 2021 से ही मैं इस योग की शिक्षिका हूँ।
1: बहुत अच्छी बात बताई सोनू जी कि किस प्रकार आपका ये योग की यात्रा शुरू हुई और आपने एक योग प्रशिक्षिका के रूप में कार्य किया। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि वर्तमान में आप एक योग प्रशिक्षिका हैं, तो इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी योगिक क्रियाएं व योगासन हमें नियमित करने चाहिए, यानी एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए कौन कौन से प्राणायाम हैं, योगासन हैं, हमारे लिए फायदेमंद साबित होंगे।
2: देखिए, स्वस्थ जीवन के लिए योग एक अहम हिस्सा है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब प्रतिदिन जो हमें योग या प्राणायाम करने चाहिए, उसमें सूक्ष्म व्यायाम तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है
1: जी,
2: क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम से आपके ज्वाइंट्स पे, छोटे छोटे मसल्स पे काम होता है
1: जी।
2: दूसरा, सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप प्रतिदिन करें, यदि आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 11 कर लें। सूर्य नमस्कार में बस सांसों का ध्यान रखें कि कहां पर हमें सांस लेनी है और कहां पर छोड़नी है। साथ में प्राणायाम का ध्यान रखें, प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है, प्राणों का आयाम, यानी जो हमारे नस नाड़ियों को शोधित करता है, हमारे मस्तिष्क और हमारे संपूर्ण शरीर में काम करता है। प्राणायाम में जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उद्गीत, ओम की ध्वनि, ये सभी प्राणायाम आपको प्रतिदिन करने चाहिए। यदि इसके अलावा आप और करना चाहते हैं तो हवन के साथ प्राणायाम कर लीजिए। हवन जैसे मेडिकेटेड हवन, जिसमें औषधियों का प्रयोग होता है, तो आप औषधियों के प्रयोग के साथ प्राणायाम भी करें।
1: अच्छा सोनू जी, कौन सा समय और कैसा वातावरण व वस्त्र योगासन के लिए हमारे लिए उपयुक्त रहते हैं, इसके बारे में भी आप हमारी बहनों को बताएं।
2: देखिए, समय, अगर हम योग के लिए समय की बात करें तो सुबह सवेरे का समय सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह, क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन का जो प्रभाव होता है वह ज्यादा होता है
1: जी।
2: तो आप सुबह के समय कर लीजिए, यदि सुबह आपके पास समय नहीं है तो किसी दिन शाम को कर लीजिए
1: जी।
2: सुबह और शाम का समय योग के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरी रही वातावरण वाली बात, तो वातावरण ऐसा हो कि जहां ऑक्सीजन का सर्कुलेशन सबसे ज्यादा हो, यानी आप एसी

0: नहीं कर सकते कि आपने कूलिंग के लिए एसी चला दिया और आप एसी में योग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। फिर आती है वस्त्र वाली बात, तो वस्त्र सिर्फ योग के लिए ही नहीं, संपूर्ण कार्य के लिए आपको वस्त्र ऐसे होने चाहिए जो आपकी कंफर्ट जोन को दिखाता हो। यानी अगर सूती वस्त्रों का प्रयोग करें, बहुत ज्यादा ढीले ना करें, बहुत ज्यादा टाइट ना करें, और जो आपकी कंफर्ट जोन के लिए अच्छा है, जिसमें आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप उन वस्त्रों पर ध्यान दें। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, योग करते हुए आपको खाने का ध्यान रखना है कि आपको योग से कितनी देर पहले खाना खाना है और योग के कितनी देर बाद आपको खाना खाना है। तो योग से कम 3 घंटा पहले आपको खाना खा लेना है। यदि आप कोई भारी भोजन कर रहे हैं, जैसे कि आपने राजमा छोले या पनीर का सेवन आप कर रहे हैं, तो आप 3 घंटा पहले कर लीजिए, और योग के बाद कम से कम 1.5 घंटे बाद आपको कोई हल्का फुल्का लेना है। तो आप समय का भी ध्यान रखें, खाने का भी ध्यान रखें और वातावरण का भी ध्यान रखें।
1: बहुत अच्छी जानकारी सोनू जी आप दे रही हैं, और वर्तमान में जैसा कि हम देख रहे हैं भागदौड़ भरी जिंदगी में योग के लिए हमारी बहुत सी बहनों के पास वक्त ही नहीं है, या ये कहें कि वो वक्त निकाल ही नहीं पाती हैं, और कई प्रकार की ऐसी दवाओं का सेवन करती हैं जिनके साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में चली जाती हैं या मानसिक तनाव से जूझती रहती हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी यौगिक क्रियाएं कर वो अपनी हेल्थ में सुधार ला सकती हैं?
0: देखिए, भागदौड़ वाली जिंदगी की अगर हम बात करें, तो इसी भागदौड़ वाली जिंदगी में यदि आपको डॉक्टर सजेशन देते हैं कि आपको योग करना है, तब भी तो आप समय निकालते हैं, तो क्यों ना ये भागदौड़ वाली जिंदगी से हटकर एक सिंपल लाइफ में आप समय को निकालिए। 1/2 घंटा या 1 घंटा सुबह दीजिए, जिसमें आप ये जितनी एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं जिसमें साइड इफेक्ट होते हैं, एलोपैथिक दवाइयों का तो आपको पता ही है कि एक तरफ आप खाएंगे दूसरी तरफ एक नया साइड इफेक्ट पैदा करेगी, तो आप एलोपैथिक दवाइयों से बचने के लिए सबसे पहले योग पर आएं।
1: अच्छा, इसी क्रम में हम जानना चाहेंगे कि हमारी बहुत सी बहनों को अक्सर घुटने की प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, या फिर साइटिका सर्वाइकल अर्थराइटिस जैसी समस्याएं होती हैं, तो क्या योगासन करना सही रहेगा, या फिर कौन कौन से व्यायाम वो कर सकती हैं, इसके बारे में बताएं इस अवस्था में?
0: ये आपका जो सवाल था, ये सबसे बेहतर सवाल मैं कहूंगी, क्योंकि आज की डेट में चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो जॉब करने वाली नारी हो, हर एक लेडी में ये प्रॉब्लम आती ही है। जिनको सर्वाइकल है, या जिनको कमर में दर्द है, या जिनको शाइटिका है, उन सभी लोगों को सेतु बंद आसन, सूक्ष्म व्यायाम, गौमुख आसन, तितली आसन, बुद्ध कोण आसन, भुजंग आसन, ये सारे आसन उनको करना चाहिए। अभी देखिए, यहाँ पर मैं नाम तो आपको बता रही हूँ, यदि मेरे श्रोतागण इन नाम को सुन रहे हैं, उनको नहीं पता कि नाम तो उन्हें पता है परंतु उन्हें करना कैसे है, तो जैसे भुजंग आसन है, भुजंग आसन आपने करना कैसे है, क्योंकि आपको सर्वाइकल भी है, आपको कमर में दर्द भी है, तो आपको भुजंग आसन करते हुए पेट के बल लेटना है। आप पेट के बल कंप्लीटली लेट जाएंगे, बिल्कुल सहज अवस्था में, दोनों कंधे के बगल में आप अपने दोनों हाथ रखेंगे, दोनों हाथों में उंगलियों को आप खोल लीजिए, पीछे से दोनों पैरों को मिला लीजिए, और सांस भरते हुए आपको ऊपर आना है। आपको ऊपर एक उस पॉइंट तक आना है जहां तक आपके गर्दन से लेकर आपके कमर तक एक अच्छी सी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, मतलब उनके मसल्स, उनके बोन्स पे काम होना चाहिए। तो ये अगर आप आसन कर रहे हैं तो आपको ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। घुटने की समस्या एक ऐसी आम समस्या है आज की डेट में, क्योंकि नीचे उठने बैठने की हम जो एक्सरसाइज पहले के जमाने में हम लोग करते थे,
1: जी,
0: वो आज की डेट में नहीं है।
1: जैसे पहले चक्कियां चलाती थी औरतें,
0: हाँ चक्कियां चलाती थी, नीचे बैठ के आटा गूंद रही हैं,
1: पोछा लगा,
0: झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है,
1: बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी।
0: हाँ जी, तो अब ये एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि महिलाएं भी बिजी हैं। आजकल महिलाएं अपने
1: कामकाजी महिलाएं ज्यादा हैं हमारे,
0: अपने पति से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। अब जो सिटिंग जॉब कर रहा है, यदि कोई टीचर है या कोई डॉक्टर है या फिर अन्य किसी कार्य में कार्यरत है, तो वो सिटिंग जॉब कर रहे हैं, कमर से रिगार्डिंग दिक्कत तो आएगी, सर्वाइकल की भी दिक्कत आएगी। तो इन सभी कार्यों के लिए आपको योग करना पड़ेगा। तितली आसन है, जैसे तितली आसन आपके बटरफ्लाई जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो आपके कंप्लीट जॉइंट्स पे काम करता है, आपके वेरिकोस वेन्स पे काम करता है, आपके यूट्रस पे काम करता है। तो महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम भी होती है, तो इसमें बैठ के आप वही सेम कि दोनों पैरों को आपने फोल्ड कर लेना है, दोनों पैरों के जो घुटने हैं आपको फोल्ड करके पैर के पंजे को अपने हिप से, अपने नितंब से लगा लेना है, और दोनों हाथों को पकड़ते हुए दोनों पैरों को चलाएं, सांस भरते हुए चलाएं, छोड़ते हुए छोड़ दें। तो इस तरीके की क्रिया यदि आप करते रहेंगे तो आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
1: हमारी बहनें यदि इन पर अमल करें तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनको लाभ जरूर होगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी।
0: जी
1: अच्छा सोनू जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो और तेज है, तो क्या इसका राज है, वो भी हमारी बहनों को बताएं।
0: देखिए, ये सवाल अगर मैं कहूँ कि मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्न किसी सवाल ने किया, तो आपका वो सवाल है। ग्लो जिसे कहते हैं, वो यदि आप किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो मुझे लगता है एक तेज उनके चेहरे पर अलग से होता है। और जब हम योग से जुड़ते हैं या हम प्राणायाम से जुड़ते हैं या हम ध्यान से जुड़ते हैं तो ये जो तेज है ये तेज का प्रभाव और ज्यादा हो जाता है। तो ये तेज मेरे चेहरे पे नहीं है, मुझे लगता है जब आप कभी देखेंगे तो हमारी जितनी महिलाएं हैं उन सबके चेहरे पे ये तेज आपको मिलेगा। इस तेज के लिए हमने क्या किया है कि हमने योग को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है, जैसे फेशियल योगा जैसी टेक्निक को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब फेशियल योगा क्या है?
1: फेशियल योगा, इसके बारे में तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। सोनू जी, थोड़ा सा हमारी बहनों को बताएं।
0: जी, फेशियल योगा ये कहूँ कि एक एडवर्टाइजमेंट है आज के डेट में। फेशियल योगा में क्या होता है, जैसे कि आप योग कर रहे हैं, आप आसन कर रहे हैं, तो आप शरीर के मसल्स पे काम कर रहे हैं, हमारे आंतरिक अंगों पे काम कर रहे हैं, लेकिन फेशियल योगा आपके चेहरे के मसल्स पे काम करता है, आपकी एजिंग्स पे काम करता है।
1: जी।
0: तो जब हम जैसे टैपिंग है, जब हम टैप करते हैं फेस पे तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, जब हम स्ट्रेच करते हैं फेस के मसल्स को तो हमारे फेस के मसल्स पे काम करता है
1: जी, जी।
0: जो आपकी एजिंग आने से रोकता है। तो ये ग्लो जिसकी आप बात कर रहे हैं ये फेशियल योगा का ही कमाल है। मैं चाहूंगी कि सारी महिलाएं इस फेशियल योगा से जुड़ें, फेशियल योगा करें, और ये जो फेशियल ये प्राकृतिक प्रसाधन का जो उपयोग कर रही हैं महिलाएं,
1: प्राकृतिक संसाधन जो,
0: हाँ,
1: और उसमें एक तो पैसा बहुत लगता है
0: और साइड इफेक्ट भी उसके होते हैं,
1: स्किन त्वचा के खराब होने का
0: जी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जुड़ें और करें, यकीनन आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा।
1: अच्छा सोनू जी, स्वास्थ्य संबंधी इसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे और लेना चाहेंगे कि कई बार अचानक ब्लीडिंग वाली समस्याएं जैसे कि नक्सीर छूटना या अनियमित माहवारी जैसी समस्याएं होती हैं, तो योग से क्या इन बीमारियों को भी निजात मिल सकती है?
0: जी बिल्कुल, मैं कहूंगी 100% इस टाइप के रोग से महिलाओं को निजात मिल सकती है, क्योंकि महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम जैसे पीसीओडी, पीसीओस, सिस्ट
1: जी,
0: अनियमित, जो आपने बताया कि अनियमित जो हमारे महावारी की जो प्रॉब्लम होती है रेगुलर बेसिस पे, जो उनको पीरियड्स नहीं होते, ये एक आम समस्या है। मुझे लगता है कि हर घर में हर एक महिलाओं को हो।
1: जी।
0: तो हमारे क्लास में जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि 80% महिलाएं इसी रोग से ग्रस्त थी जब आई थी। तो आज की डेट में क्या है कि आज की डेट में आप जब उन महिलाओं से बात करेंगे तो आपको लगेगा कि ये महिला है ही नहीं जिन महिलाओं को ये रोग था। पुराने जमाने की महिलाएं चक्की चलाती थी तो उसमें, क्योंकि हमारा पेल्विक एरिया यानी नीचे का पेट जहां पे हमारा यूट्रस होता है वो वाला पेल्विक एरिया स्ट्रांग होता है। हमें यूट्रस में प्रॉब्लम कब आती है? जब हमारा पेल्विक एरिया कमजोर होता है। हम वो आसन उसमें करते हैं, वही स्ट्रेचिंग वहां पे देते हैं जहां पे हमें पेल्विक एरिया को स्ट्रांग करना पड़ता है। तो जब आप अपने पेल्विक एरिया को स्ट्रांग करेंगे, जैसे चक्की चला रहे हैं आप, जब आप आगे की तरफ अपने हाथों को घुमाते हुए चक्की लेके आते हैं और पीछे की तरफ घुमाते हैं तो जब चक्की घूमती है तो आपका पेल्विक एरिया स्ट्रांग होता है। ऐसी नौका आसन हो गया, बुद्ध कोण आसन हो गया, सेतु बंद आसन हो गया, इन आसन में आपका पेल्विक एरिया स्ट्रांग होता है। जिन आसन से आपका पेल्विक एरिया स्ट्रांग होगा वो आपके इन रोग पे एप्लीकेबल होगा। और साथ में जब प्राणायाम करेंगे, क्योंकि ब्रीदिंग टेक्निक्स, अब देखिए जैसे आपने कहा कि ये जो ब्लीडिंग वाली समस्या होती है, अब ये देखिए जो जलनीति का प्रभाव है, जब हम जलनीति करते हैं, जलनीति एक क्रिया है प्राणायाम के साथ, जब हम जलनीति करते हैं तो जलनीति आप नाक से कर रहे हैं लेकिन इसका प्रभाव आपके यूट्रस तक है। तो जलनीति भी एक ऐसी क्रिया है कि जिसे आप रेगुलर बिहाव पे यदि कर रहे हैं तो आपके यूट्रस पे काम, तो आप जलनीति भी डेली बेसिस पे करें तो आपको इन सारी समस्याओं से निजात मिलेगा।
1: बहुत अच्छी जानकारी सोनू जी आप दे रही हैं हमारी बहनों को। अच्छा, जैसा सुना जाता है कि योगासन व प्राणायाम आदि से हमारा इम्यून सिस्टम भी जो है मजबूत बनता है, इसके लिए कौन कौन से प्राणायाम व यौगिक क्रियाएं हैं, इसके बारे में भी आप हमारी बहनों को बताएं।
0: जी देखिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने खान पान पे ध्यान देना होगा
1: जी,
0: क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली आप योग कर लेंगे या फिर आप अन्य कोई व्यायाम कर लेंगे और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप अपने खाने की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे आपको और कोई कार्य आपके शरीर पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप खाने में जैसे हम मसाले युक्त भोजन ना करें और फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, और साथ में हम लोग जैसे शलभासन, भुजंगासन, हवन के साथ प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, वमन क्रिया, जल नीति आदि करें तो आपको इम्यून सिस्टम में, ये जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम होती है इसको मजबूत बनाने में जरूर आपको मदद मिलेगी।
1: अच्छा सोनू जी, बीमारी की अवस्था में जैसे जुखाम है, शरीर में दर्द है या बुखार है, तब भी योग करना क्या हमारे लिए सही है?
0: देखिए, जुखाम यदि बुखार या शरीर में दर्द, ये देखना होगा कि आपकी किस अवस्था में है। बहुत ज्यादा यदि आपको जुखाम है तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्राणायाम की टेक्निक भी क्या होती है, सांस लेने की, आपका नाक बंद है तो आप सांस नहीं ले सकते। हाँ, इसमें आप जलनीति कर सकते हैं। जलनीति करेंगे तो आपके जो बलगम है वो रिलीज हो जाएंगे और आपकी टेक्निक सांस लेने की वो सही हो जाएगी। अब शरीर और बुखार वाली रही बात, तो शरीर यदि आपके शरीर में दर्द है या फीवर है तो आप क्या करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए और उद्गीत प्रणव की ध्वनि, प्रणव की ध्वनि को आप लंबे गहरी सांसों के साथ उच्चारण कीजिए। आपको मानसिक तनाव नहीं होगा, मानसिक शांति मिलेगी। धीरे धीरे जब आपका सांस की टेक्निक लंबी होती जाएगी तो आपको शारीरिक आराम भी मिलेगा। तो आप जो भी इसमें क्रियाएं करें वो सूक्ष्म व्यायाम के साथ हल्के हल्के व्यायाम करें।
1: अच्छा, अंत में हम आपसे संदेश भी जानना चाहेंगे कि इस मौके पर आप हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी।
0: देखिए, इस मौके पर मैं आपको जो पहला संदेश है वो ये देना चाहूंगी कि आप जो योग करें वो किसी YouTube या किसी TV चैनल के माध्यम से ना करें, क्योंकि जब आप कर रहे हैं आपको ये तो पता है कि आपकी स्थिति क्या है, पर आपको ये नहीं पता कि उस स्थिति में आपको कौन से योगासन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो आप किसी प्रशिक्षित योग टीचर के अंडर में ही करें, सुझाव लें, इसी सुझाव के अंतर्गत आप योगासन करें। दूसरा, प्रतिदिन आपको योग करने का एक निर्णय लेना चाहिए, एक तरीके से शपथ लीजिए आज, क्योंकि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसमें आपको शपथ लेना चाहिए कि मैं प्रतिदिन खुद भी करूंगी, अपने परिवार में सभी जनों को योग करवाऊंगी, स्वस्थ रहूंगी और सबसे बड़ी बात कि समस्त शारीरिक मानसिक समस्याओं का समाधान केवल योग है
1: जी।
0: तो आप इस योग से जुड़िए, क्योंकि जब आप योग से जुड़ेंगे तो समस्त समस्याओं का समाधान अपने आप ही होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपसे कहूं तो मस्त रहिए, खुश रहिए, योग करें, निरोग रहें। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा संदेश आपका इस मौके पर हमारी बहनों को दिया गया, बहुत अच्छी जानकारी इस मौके पर आपने हमसे साझा की, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे सोनू जोशी अरोड़ा से अर्चना त्यागी की बातचीत। बातचीत का विषय था महिलाओं के लिए आवश्यक है योग। बहनों, अब चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, अब धीरे धीरे कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है, तो आपको कार्यक्रम के विषय में क्या सुझाव है आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कीजिए, कार्यक्रम महिला जगत द्वारा के निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। बहनों, कार्यक्रम के विषय में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी बता सकती हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। तो बहनों, आपके पत्रों का और आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज के महिला जगत कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करने की अपनी बहन गजाला खान को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भुंगर खान और साथियों के स्वर में राजस्थानी लोकगीत। तो लीजिए सुनिए आज के कार्यक्रम का ये पहला लोकगीत।

0: to 100.1 Akashvani Gold at 9:15 tonight to listen to this exclusive interview. Various programs will be organized on the International Day of Yoga in Slovakia. The Indian Ambassador to the Slovak Republic, Apurva Shrivastav, told Akashvani that yoga and Ayurveda are very popular in Slovakia. The Indian Embassy and other organizations are organizing various programs in the capital, Bratislava, and other places. More from our Akashvani correspondent, Smithy M. Paluruthi.
1: The Indian Embassy's main event for the International Day of Yoga in Slovak Republic will be held in Bratislava City Center. The embassy will also organize a yoga program at the famous Bratislava Castle. Indian Ambassador Apurva Shrivastava informed that two yoga classes are being organized every day on the embassy premises. Hundreds of yoga studios are now operating across Slovakia. The MOU signed by Ayush during the recent visit of Prime Minister Narendra Modi is expected to pave the way for the further strengthening of yoga in Slovakia. Smithy M. Paluruthi, Akashvani News.
0: India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over some Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. The Met Department said that thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are expected to prevail over Haryana, Chandigarh, Punjab, Delhi, Uttarakhand, East Madhya Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Himachal Pradesh. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, North Interior Karnataka, Telangana, Vidarbha and Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. India will host a two-day BRICS National Security Advisors meeting beginning on Monday. The meeting will be chaired by National Security Advisor Ajit Doval. During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. The National Security Advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS joint working groups on counter-terrorism and on security in the use of information and communication technologies. India and South Korea have reaffirmed their commitment to deepening cooperation in public administration and digital governance. Personnel, Public Grievances and Pensions Minister Dr. Jitendra Singh today held bilateral talks with the Minister of Interior and Safety of South Korea, Yoon Ho Jung, in New Delhi. The discussion focused on cooperation between the two countries in the fields of digital governance, e-government, public administration, capacity building and citizen-centric service delivery. An Israeli airstrike struck the Jabal al-Rafieh area near the southern Lebanese town of Sajd shortly after a Lebanon-Israel ceasefire took effect. The airstrike came hours after Hezbollah lawmaker Ibrahim al-Mousavi said the group would continue to abide by the ceasefire as long as Israel honored its terms. Hezbollah leader Naim Qassem said the group would respond with force if attacked, adding that efforts to eliminate Hezbollah had failed and Israel would eventually withdraw from Lebanese territory. In cricket, Afghanistan were 29 for 3 in 8 overs against India in the third and final ODI at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai when reports last came in. Earlier, visitors won the toss and elected to bat first. Hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the three-match series. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunhac starred for the five-time world champion, scoring twice in the first half. Vinicius Jr. added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi joins President Draupadi Murmu in Odisha to inaugurate projects worth over 47,600 crore rupees. Government prohibits manufacture, sale and distribution of 16 fixed-dose combinations in public interest. NTA conducts nationwide mock drill ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In cricket, third and final ODI between India and Afghanistan underway in Chennai. And in FIFA World Cup, Brazil registered their first win, defeating Haiti 3-0. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the Midday News.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
3: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
2: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: प्रवति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश सिंह खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
2: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
4: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा, दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
2: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन

0: में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
1: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाइब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाइब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
2: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही गीतकार। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक ही गीतकार में। आज अपने इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सफल और लोकप्रिय गीतकार कुमार के बारे में। कुमार का पूरा नाम है राकेश कुमार पाल। साल 2000 में आए सुखबीर के एल्बम से कुमार को पहला ब्रेक मिला। एल्बम का गीत इश्क तेरा तड़पा बे हिट साबित हुआ और कुमार को श्रोताओं का प्यार मिलने लगा। श्रोताओं, यूं ही कोई सफल नहीं हो जाता, उसकी सफलता के पीछे होता है उसका कठिन परिश्रम और संघर्ष, साथ ही उन चंद लोगों का साथ जो उसके संघर्ष के दिनों में उसके मनोबल को ऊंचा बनाए रखने का काम करते हैं। गीतकार कुमार के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे ही पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे, मगर इस गीत के बाद।
6: चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली, चली,

तो श्रोताओं, अभी आपने कुमार का लिखा हुआ ये गीत सुना। फिल्म का नाम था ड्रीम गर्ल। तो चलिए बात करते हैं कुमार से जुड़े हुए अन्य बातों पर। श्रोताओं, कुमार को फिल्म दोस्ताना के गीत माँ का लाडला बिगड़ गया के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में प्रसिद्धि मिली। कुमार के लिखे गीतों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें शामिल हैं बॉलीवुड चार्टबस्टर

बेबी डॉल, चिट्टियाँ कलाइयाँ, सूरज डूबा है, मैं हूँ हीरो तेरा और तुझे भुला दिया। 1 जनवरी सन 1988 को पंजाब के जालंधर में जन्मे गीतकार कुमार, इन्होंने डीएवी कॉलेज जालंधर से बीए किया। झुकाव कलम की ओर था, सो रुक किया मुंबई की ओर। अपने सपनों तक पहुंचना आसान नहीं था, मगर कुमार ने हिम्मत नहीं हारी और वहां पहुंच ही गए जहां वो पहुंचना चाहते थे।

शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट।

0: ಮತ್ತು ರಸಧ.
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है

बारे में। कुमार के लिए संगीतकार जोड़ी विशाल शेखर विशेष रूप से प्रेरणाप्रद रहे हैं। वो बेशरम इश्क और झूमे जो पठान जैसे गीत लिखने में इस संगीतकार जोड़ी ने उन्हें काफ़ी मोटिवेट किया। श्रोताओं, इसके अलावा कुमार ने अपने पिता धर्मपाल और परिवार के बाकी सदस्यों का भी हमेशा उनको सपोर्ट मिला और उन सबके सहयोग से ही बॉलीवुड में अपना करियर बना पाए। सन 2018 में कुमार ने सिम्बा, जीरो, बधाई हो और साल 2019 में केसरी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे। कुमार को गीत सूरज डूबा है के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।

श्रोताओं, कुमार आधुनिक युग के गीतकार हैं और उनके गीतों में अक्सर अंग्रेजी के शब्द भी होते हैं, जैसे रिक्वेस्टा पाइयां, परमिशन पाइयां, हैंग ओवर, देसी बॉय और लेडी गागा, और ये गीत युवाओं को काफ़ी पसंद आते हैं। इसके अलावा मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी भावनाओं को भी कुमार ने बड़े ही शानदार तरीके से अपने गीतों में जगह दी है। फिल्म कबीर सिंह के गीत भी काफ़ी हिट रहे, जिन्हें कुमार ने ही लिखा था। और आइए, हमने बात की है युवाओं के पसंद की, तो चलिए आइए सुनते हैं फिल्म दोस्ताना का ये गीत।

श्रोताओं, बेबी डॉल, काला चश्मा, बेशरम रंग जैसे गीत जश्न को कई गुना बढ़ा देते हैं। अपनी 25 साल लंबे इस पूरे फिल्मी यात्रा में कुमार ने हर तरह के गीत हमें दिए हैं। जहां कुछ गीत दिल को सुकून देते हैं, तो वहीं कुछ गीत मस्ती में डुबो देने का दम भी रखते हैं। कुमार की लेखनी आधुनिक है और युवाओं की पहली पसंद है। कुमार की हुक लाइन तकनीक श्रोताओं को गीत के साथ जोड़े रखती है। आने वाले वक्त में भी कुमार यूं ही हमें मेलोडियस सॉन्ग्स देते रहें, इसी शुभकामना के साथ आज इस कार्यक्रम को हम यहीं संपन्न करते हैं। मगर चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं कुमार का लिखा हुआ एक और बेहतरीन गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही गीतकार, जिसमें आज गीतकार थे कुमार। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराहन के 3 बजे हैं। हमारी सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। संध्याकालीन सभा में शाम 4 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 3:55 होने को हैं। हमारी द्वितीय प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: सभा के आरंभ में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन

0: जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है। इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव जोशना श्रीवास्तव।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan scheme, to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day, because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams. And we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
0: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और यह भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी और उससे ज्यादा हो गई। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री कि किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: Absolutely, Siddharth, to make the incomes of the farmers go double and triple. When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country, we have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj,

0: Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests and Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous training of the next, they are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
1: बिल्कुल वैभव जी साहब ने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुविंदु अधिकारी माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह माननीय रेल सूचना प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं
0: एब्सोल्युटली टू सी दीस मिनिस्टर्स दैट द पीपल आर वेट फॉर And the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow. He had made a promise and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on a mission mode. We as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country develop. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra, the KVKs, ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, Primary Agricultural Cooperative Society and State District Gram Panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, This promise never loses its importance.
1: बिल्कुल तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार

0: Pab Mukherjee. Protest against injustice, resist oppression, and if necessary, retaliate. These were the words of this great man who gave vision to the people of West Bengal that yes, we as part of India have to make India a Soni Ki Chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion, brethren, we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947. Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. Yeah. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास, राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है, और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहां का साहित्य, वहां की कला, वहां की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
0: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, दिस इज द प्रॉमिस विद व्हिच द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्मड इन बंगाल आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ इनजस्टिस। नाउ वी सी दैट द गवर्नमेंट, एंड दिस विल बी अ गवर्नमेंट व्हिच विल बी अ गवर्नमेंट ऑफ डबल इंजन। एंड टुडेस फंक्शन सिद्धार्थ, इट्स नॉट जस्ट समथिंग दैट वी आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज द 23rd इंस्टॉलमेंट। दिस इज अ डायरेक्ट ट्रांसफर। We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now, and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country. Along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi, the following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
1: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है। और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा। 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी। तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट।
0: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी। And I want to say that it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government. And that is exactly what should happen. That is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Viksit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है और एक सरकार की एक जो नई पहल है, देश में जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव, किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है, उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आप आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में, जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो, आज दोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: Absolutely, Siddharth, the word that you've used, and you had used this word earlier as well, which is sashakt banana. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question. And that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village, somewhere completely disconnected, what is going on in the world. But he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap atmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paaye, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
1: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो. और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है. और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं.

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honourable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal Shri Arun Ravi and the Chief Minister of West Bengal Shri Subindu Adhikari, people training their necks now, the national anthem and the national song.

0: Listen to that roar, Siddharth. Listen to those voices coming from Tarkeshwar. Look at those faces, happy faces, craning necks. So excited to see the Honorable Prime Minister. So excited to see their Chief Minister. And so excited for the fact that all the promises that were being made, that have been done, are now coming true, are now being seen, the face of execution. They know that all these things are coming true. And the Honorable Prime Minister getting up from his seat, along with the Governor of West Bengal and the Chief Minister of West Bengal.
1: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री, इस समय उनका स्वागत किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं इस समय और प्रधानमंत्री जी के साथ
2: अभिनंदन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी
1: माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु अधिकारी
2: और सम्मान का प्रतीक है पहले बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति
1: जी हाँ बाबा तारकनाथ जी की प्रतिकृति उनको भेंट करते हुए और बंगाल में माँ दुर्गा का बहुत महत्व है और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट देते हुए और
2: आइकॉनिक मिठाई रसगुल्ला यानी रसगुल्ला
1: और वह बंगाल का जो रसगुल्ला है वो तो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उसको भेंट दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को
2: जल भरा संदेश यानी संदेश के अंदर रस से भरा हुआ एक अनमोल मिठाई
0: Siddharth, you should remember that this is not just a culmination of religion it's not just a culmination of tradition of legacy of heritage of sweetness of all the things that now people are expecting from the government The sweetness of those dreams and aspirations that the people have from the Honorable Prime Minister.
1: और वैभव उसकी मिठास यहाँ जो जन समुदाय है उसमें दिख रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों को संबोधित और इस समय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो संबोधित करने के लिए आए हैं
3: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लौह प्रणाम भारत केसरी लह प्रणाम स्वामी प्रणवानंद लह प्रणाम सम्मानीय देशेर यशस्वी प्रधानमंत्री गोटा पृथ्वीर सबसे जनप्रिय नेता जिनी 140 कोटी भारतवासीर হৃদয়ের অন্তরের আত্মীয় যিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন না প্রধান সেবক বলেন উনাকে বাবা তারকনাথের পুণ্যভূমি তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমি প্রণাম শ্রদ্ধা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন এই রাজ্যের অত্যন্ত লোকপ্রিয় একজন রাষ্ট্রবাদী রাজ্যপাল আমাদের সরকারের প্রধান পরিচালক সম্মানীয় আর এন রবিজি এবং জনতা জনার্দন আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে এই তারকেশ্বরের পুণ্যভূমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ব্যস্ততম শিডিউলের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন তার কারণ আমি অল্প কথায় নিবেদন করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি উড়িষ্যায় মহামহিম রাষ্ট্রপতিজির সঙ্গে প্রোগ্রাম করে এখানে এসেছেন তাকে কলকাতা ফিরতে হবে তিনি আজকে লোকভবনে থাকবেন আগামীকাল বিশ্ব যোগা দিবসে বন্দে যোগম কর্মসূচিতে তিনি লক্ষ লক্ষ যোগা অভ্যাসকারীদের সঙ্গে থাকবেন তাই আমি বিস্তারিত বক্তব্য রাখব না ১৯৪৭ সালে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে এখানে হিন্দু মহাসম্মেলন হয়েছিল ৪ এপ্রিল থেকে ৭ এপ্রিল সেই দিন এখানে রেজুলেশন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আমরা পশ্চিমবঙ্গ কে ভারত ভুক্তি করতে চাই। আমরা কংগ্রেসের বিভীষিকাময় দেশ ভাগ, যার যন্ত্রণা এখনো ভারতবর্ষের মানুষ বয়ে নিয়ে চলেছে। আমরা বাঙালি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এই পশ্চিমবঙ্গ ভারত মাতার

0: आपने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: द रिलीज ऑफ द पीएम किसान निधि, द 23rd इंस्टॉलमेंट बीइंग डन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विद अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड अ कॉन्फिडेंट हैंडशेक। Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
1: इट रिलेट्स टू द गुड प्रोडक्शन, द लेबोरेटरीज दैट आर देयर, इट रिलेट्स टू द पोर्ट्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, इट रिलेट्स टू द फार्मर प्रोड्यूसर्स दैट विल बी गिवन अ फेयर शेयर इन द market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
2: जी हाँ प्रधानमंत्री, अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया, और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
1: And Siddharth, more than 2 crore women beneficiaries are amongst those farmers who will be getting this direct transfer, this installment of PM Kisan Samman Nidhi. Imagine the level at which this scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for. Everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is, on stage, Prime Minister Modi.
3: Mahadev. Manch par virajman, Rajpal R.N. Ravi ji, yahan ke lokpriya aur urjawan mukhyamantri शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक, गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहीं विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की ये तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में

हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा सब अनेक संघर्षों के बाद बच गए, और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल 1 तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया।

उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, इससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से ठीक इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें
अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जन कल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा, सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन, और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा, वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को
जेल भेजा जा रहा है। सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं। टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काठमांडू से काज शुरू हो गए थे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, टिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी। गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं। वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं। देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी
आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं, हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं, हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें, और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है, हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें एक और बात का ध्यान रखना है। विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है, और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने। इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं, तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए, और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे।
बंदे।

0: बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards the future, towards a Viksit Bharat, developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:33 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे शो युववाणी में। मेरा नाम दीपांशु।
1: हेलो, आदाब, नमस्कार, खुशामदीद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, और दीपांशु के साथ मैं रहूंगा आपका जाना माना होस्ट मोहम्मद तौहीद।
0: तौहीद, ये बात तो काफी सही कही तुमने, जाने माने तो तुम हो यार।
1: बिल्कुल। अब जब हम इतने अच्छे सेगमेंट लेकर आते हैं अपने दोस्तों के लिए, तो वो प्यार भी करेंगे और हमें याद भी करेंगे हर रोज।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। जैसे कि आज है हमारे दोस्तों का पसंदीदा सेगमेंट गीत आपके नाम।
1: जी हाँ दोस्तों, तो आइए कार्यक्रम को जल्दी से शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सेगमेंट शुरू करते हैं गीत आपके नाम। गीत, गीत, गीत, गीत, गीत।

0: गीत आपके नाम।
1: तो दोस्तों, सेगमेंट गीत आपके नाम का हम चौक शुरू कर चुके हैं। और इस सेगमेंट में क्या होता है आप सभी को तो पता ही है जी। हाँ, इसमें हमें आपको हमें भेजने हैं अपने मैसेजेस हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर, और हमें भेजिए अपने नाम और हम आपको आप सभी के नाम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे और सुनवाएंगे आपको गीत। तो इसी प्रकार हमें बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू भी हो गए हैं, तो दोस्तों जल्दी से अपना फ़ोन उठाएं और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9457078288 पर जल्दी से अपने नाम दर्ज भेजिए और हम करेंगे उनको अपने कार्यक्रम में शामिल। और हमारे पास दीपांशु एक बहुत पहले एक सबसे पहला मैसेज हमें आया है मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से भेजने वाले हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कौसर। तो दीपांशु, हमने अपना पहला मैसेज तो शामिल कर लिया है, तो आइए इन सभी दोस्तों को सुनवाते हैं अपने कार्यक्रम का पहला खूबसूरत गीत।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
4: चलो बेटा पप्पू, अब एक हमें कहानी सुनाओ। और बेटा, उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी बताना, ठीक है?
5: जी सर, बिल्कुल अभी सुनाता हूँ सर। तो देखिए, मैंने कल रात अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करा और वो सो रही थी, और उसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल करी और तब मैं सो रहा था।
4: नालायक, इससे क्या शिक्षा मिलती है? और क्या क्या बेवकूफी वाली बातें करते जा रहे हो?
5: अरे सर, इसमें शिक्षा है तो जैसी करनी वैसी भरनी।
3: जी हाँ, मजा आ गया।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का। सेगमेंट गीत आपके नाम तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कुछ खास है आज, जिसमें आज का जिसके हम बात करने वाले हैं वो है शरणार्थी दिवस के बारे में।
4: जी हाँ, शरणार्थी दिवस दोस्तों, ये दिन उन लाखों लोगों की हिम्मत को सलाम करने का दिन है जिन्होंने अपना घर, अपनी मिट्टी, अपना सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ जिंदा रहने के लिए।
6: दोस्तों, हम शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाते हैं। इसका कोई आंकड़ा नहीं होता। वो एक माँ है जिसने अपने बच्चे को गोद में लेकर नदी पार की।
4: वो एक पिता भी है जिसने अपनी डिग्री जला दी क्योंकि वहाँ उसकी जान को खतरा था।
6: वो एक बच्चा है जो स्कूल की जगह कैंप में पढ़ रहा है।
4: दोस्तों, इनके पास घर नहीं है पर हौसला पूरा है।
6: दोस्तों, हमें इनसे सीखना चाहिए कि कैसे सब खोकर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
4: सब खोने के बाद भी ये कैसे इंसानियत को अपने अंदर जिंदा रखते हैं और उसे ख़त्म नहीं होने देते हैं।
6: ये हमें सिखाते हैं, दर्द बांटने से कम होता है।
4: दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है कि इन्हें दया नहीं सम्मान दें। ये बेचारे नहीं बहादुर हैं, और अगर देश इन्हें मौका दे तो ये देश को ऊंची ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
6: बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, और कुछ खास है आज के अंतर्गत बस इतना ही। और अब आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
7: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल

0: क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा सेगमेंट कहानी की उस पार, जिसमें आज आप सुनेंगे एपिसोड 5। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी का एपिसोड 5 सेगमेंट कहानी के उस पार में।
4: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके अपने साथी सिमरन लेकर अपनी कहानी भोली। दोस्तों, आपने जाना कि भोली एक शिक्षित लड़की बन चुकी थी। उसने आत्मविश्वास से जीना सीख लिया और विश्वंबर नाथ को करारा जवाब दिया। दहेज का उल्लंघन करते हुए उसने अपने पैरों पर खड़े होकर जीने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस कहानी का निष्कर्ष है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है और हमारा आत्मसम्मान भी रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, बस उन्हें केवल अवसर और शिक्षा की आवश्यकता होती है, जो कि भोली को अपनी अध्यापिका से मिली। अध्यापिका की बातों का असर भोली पर हुआ, जिससे वो एक आत्मसम्मान वाली लड़की बनने में कामयाब हो सकी। दोस्तों, सच्ची शिक्षा व्यक्ति को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सिखाती है। भोली केवल एक लड़की की कहानी नहीं, दोस्तों ये उन सभी लोगों की कहानी है जिन्हें समाज कमजोर समझता है और सोचता है कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती हैं। दोस्तों, शिक्षा और आत्मविश्वास के बल पर एक साधारण डरी हुई भोली जैसी लड़की भी अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है और पूरे समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी भोली। इसी के साथ मिलेंगे आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।
3: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एपिसोड 5 अपने सेगमेंट कहानी के उस पार में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और इसी प्रकार हम फिर लाएंगे आपके लिए एक और बहुत खूबसूरत और दिलचस्प कहानी। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और शुरू करते हैं आपका वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट, जिसका नाम है स्क्रैप बुक, जिसके अंतर्गत हम अपने एक युवा साथी को अपने स्टूडियो में लाते हैं और उनसे करते हैं कुछ फन एक्टिविटीज और बातचीत। जी हाँ, तो आइए सुनते हैं आज सेगमेंट स्क्रैप बुक के अंतर्गत अर्श से उज्मा की बातचीत।
5: दोस्तों, कहते हैं कि कुछ लोगों की यादें इतनी मजेदार होती हैं कि अगर उन पर फिल्म बन जाए ना तो सुपर हिट हो जाए। और आज हमारे स्क्रैप बुक सेगमेंट में हमारे साथ एक ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं अपने प्यारे से मेहमान से उनका प्यारा सा नाम।
6: हेलो, उज्मा, आई एम अर्श।
5: अर्श, बताएं आप क्या करते हैं?
6: I am a student of class 12th in St. Mary's and I am NEET aspirant of 2027.
5: बहुत खूब। तो अर्श, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये सेगमेंट है स्क्रैप बुक, एकदम मजेदार सा फनी स्टोरीज में आने वाला है, बहुत ही मजा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस सेगमेंट में होते हैं 3 राउंड। पहला राउंड जो भी चल रहा है, हम कह सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग हम कर चुके हैं, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी आपकी कुछ बेसिक जानकारी, मतलब कि आपके बारे में, आप क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है, आप क्या बनना चाहते हैं। और हमारा सेकंड राउंड होगा दिस और दैट, जिसमें आपको रैपिडली आंसर देना होगा। और हमारा थर्ड राउंड होगा रिडल्स का।
6: ओके,
5: तो तैयार हैं आप?
6: जी बिल्कुल तैयार।
5: तो चलिए, हमारा पहला जो राउंड है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप जैसे बता रहे थे कि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपको और क्या पसंद है?
6: पढ़ाई के साथ साथ मुझे नेचर एक्सप्लोर करना पसंद है, घूमना पसंद है, एंड जब भी मैं लो फील करता हूँ तब मैं बेकिंग करता हूँ।
5: बेकिंग करते हैं
6: जी?
5: मुझे लगता है मुझे किसी चीज से खुशबू आ रही है। कौन कौन सी चीजें जो आप बेक करते हैं?
6: ऑल टाइप्स ऑफ केक्स, ब्राउनीज एंड ब्रेड्स।
5: मैंने तो अभी आपसे कहा था मुझे किसी न किसी चीज की तो खुशबू आ रही है, तो पक्का आपने स्वादिष्ट सा बड़ा टेस्टी सा ब्राउनी या केक बनाया होगा जिसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। अच्छा, तो आप बना के आए या फिर सिर्फ आपकी इमेजिनेशन से ही मुझे खुशबू आ रही है?
6: आपकी इमेजिनेशन पे आ रही है।
5: ऐसे ये भी सही है, आपने कहा कि आपको नेचर एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो कौन कौन से प्लेसेस है जो आपको बहुत ज्यादा ही पसंद है?
6: कश्मीर।
5: कश्मीर। तो अर्श, ये तो था हमारा फर्स्ट राउंड, अब बढ़ते हैं अपने सेकंड राउंड की ओर, जिसमें हम बात करेंगे दिस और दैट की। तो क्या आप तैयार हैं?
6: जी बिल्कुल तैयार हूं।
5: तो फिर बताइए आपको ज्यादा क्या पसंद है, आलू का पराठा या आलू की टिक्की?
6: आलू पराठा।
5: चॉकलेट आइसक्रीम और चॉकलेट केक?
6: चॉकलेट केक।
5: हाँ, मुझे बताया था क्योंकि आपको बेक करने का ज्यादा शौक है, तो केक ही पसंद करोगे। डार्क चॉकलेट और डेरी मिल्क?
6: डार्क चॉकलेट।
5: इमली की चटनी और इमली का पानी गोलगप्पों के साथ?
6: इमली का पानी।
5: अच्छा, आपको गोलगप्पे भी पसंद है फिर?
6: जी।
5: That's good. Fruit salad और fruit juice?
6: Fruit salad.
5: गर्म चाय और green tea?
6: गर्म चाय।
5: Hot coffee or hot chocolate?
6: Hot chocolate.
5: Jogging या फिर gym workout?
6: Gym workout.
5: किताब पढ़ना और कहानी सुनना?
6: किताब पढ़ना।
5: किताबें पढ़ना, इसका मतलब आप पुराने जमाने के नहीं है कि बच्चों को कहानी सुनना पसंद हो, है ना? Long drive या फिर long walk?
6: Long drive.
5: Long drive. दोस्तों के साथ?
6: जी
5: हाँ। अब मैं पक्का कह सकती हूँ कि आप इसी जनरेशन के हैं। मसाला डोसा और मसाला डोसा पेपर?
6: मसाला डोसा।
5: फ्राइड राइस और फ्राइड नूडल्स?
6: फ्राइड राइस।
5: तो चलिए अर्श, आपकी ये पसंद तो वाकई बहुत अच्छी थी, अब हम अपने थर्ड राउंड की ओर बढ़ते हैं। तैयार हैं आप अपने थर्ड राउंड के लिए?
6: जी।
5: तो अर्श, हमारे थर्ड राउंड में रहेंगे हमारी कुछ रिडल्स, यानी कि हमारी कुछ, मैं आपसे कुछ पहेलियां पूछूंगी, आपको देने होंगे उनके एकदम सही जवाब। अगर आप देते हैं उनके गलत जवाब तो आपके पॉइंट्स घट सकते हैं।
6: ओके।
5: ये रही आपकी पहली पहेली। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी।
6: तवा और रोटी।
5: चलिए नेक्स्ट आपकी जो रिडल है वो तैयार है। तीन अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, अंत कटे तो हवा बन जाऊं, मध्य कटे तो खीरा कहलाऊं।
6: ककड़ी।
5: वेरी गुड। तो आपके दो पॉइंट्स तो हो चुके हैं, अब आगे देखते हैं कि आप अपने पॉइंट्स को ऐसे ही बरकरार रखते हैं या फिर ये घटते हैं। आपकी थर्ड रिडल है, अगर नाक पकड़ो तो कान खुल जाते हैं, बताओ मैं क्या हूं?
6: चश्मा।
5: दैट्स गुड। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी।
6: भुट्टा।
5: सुबह सुबह मैं आता हूँ, रात को वापस चला जाता हूँ, कभी बड़ा कभी छोटा हो जाता हूँ, बताओ मैं क्या हूँ? तो अर्श, मुझे लग रहा है कि आप अर्श तक जा सकते हैं।
6: चांद।
5: और मुझे लग रहा है कि हिंट्स मैंने आपको दे दिया था पहले, चांद हमेशा जी अर्श में ही होता है। आपकी लास्ट रिडल है, बिन पैरों के चलती हूँ, बिना हाथों के लड़ती हूँ, सबके घर में रहती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ?
6: घड़ी।
5: वेरी गुड। यानी कि जैसा अर्श आपने कहा था कि आप अपना एक भी पॉइंट नहीं खोएंगे, एक भी पॉइंट नहीं जाने देंगे, तो आपने सारे ही पॉइंट्स जो है हासिल कर लिए हैं। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। तो कैसे लगे आपको तीनों राउंड्स?
6: बहुत मजेदार।
5: तो अर्श, आप जाते जाते अपने बारे में हमारे दोस्तों को कुछ और बताना चाहेंगे?
6: मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा।
5: अच्छा, अभी कोई इंसिडेंट बचा था बताने से? बिल्कुल, हमारे साथ शेयर कीजिए।
6: जो मेरे घर पे किसी को भी नहीं पता, शायद अब पता चल जाए।
5: बस शुक्र मनाना कि आपके फादर आपको यहाँ पे ना सुने।
6: उनकी इतनी कोई दिक्कत नहीं है।
5: अच्छा, नहीं है?
6: नहीं है।
5: फिर हमारे जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए।
6: तो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, जिनका नाम मैं ऐसे रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन आई कॉल हिम चटपटा बिल्ला। तो उनके साथ एक बार मैं स्कूटी पे जा रहा था, एंड हम उनके फार्म हाउस तक भी गए थे, उनके पुराने फार्म हाउस तक। और सुबह सुबह का टाइम था, 5 बजे के करीब, और वहाँ पे जंगल के पास तो वैसे ही जानवरों का आने का खतरा रहता है,
5: लेकिन जानवरों को डराने मुझे लगता है आप ही लोग पहुँच गए।
6: यही हो सकता है। एंड मैं तो पीछे बैठे हुए डर रहा था कि चलो चलते हैं वहाँ पे, एंड ही वाज लाइक चलो आगे चलते हैं थोड़ा और। तो फिर थोड़ी बहुत देर हम घूम घाम के हम वापस चले गए, और ये बात घर पे किसी को नहीं पता हम कहाँ गए थे।
5: हाँ, तो अब मुझे लगता है आपके दोस्तों को ये बात पता चल जाएगी, आपके घर वालों को ये बात पता चल जाएगी। तो अब मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई डांट ना पड़े। तो अर्श, हमें तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताएं, आपको कैसा लगा हमारे सेगमेंट और हमारे प्रोग्राम में आने के बाद?
6: जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आके।

0: थैंक यू अर्श।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
1: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
4: बंटी बेटा कभी पढ़ भी लिया कर, जब देखो फोन में ही घुसा रहता है। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है?
5: पापा ऐसी बात नहीं है, मैं खोलता तो हूँ अपनी बुक।
4: कौन सी बुक खोलता है? मैं तो तुझे यही करते देखता हूँ।
5: पापा मैं हर रोज अपनी बुक खोलता हूँ।
4: बस बस, अच्छा चल बता कौन सी बुक खोलता है।
5: पापा खोलता हूँ ना फेसबुक।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
6: तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट स्क्रैप बुक के अंतर्गत अर्श से उज़्मा की बातचीत। उम्मीद करते हैं आपको अर्श की चटपटी बातें पसंद आई होंगी, और इसी के साथ हम लाते रहेंगे सेगमेंट स्क्रैप बुक इसी प्रकार आप सभी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे अपने कार्यक्रम में, और चल रहा है हमारा सेगमेंट गीत आपके नाम, और हमें ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये दीपांशु में मैसेज आया है, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित अहूजा का।
7: दोस्तों, अगला मैसेज हमें आया है कबीर नगर लोनी से, भेजने वाले हैं नसीमुल इस्लाम गुनोरी और प्रकाश वीर राजपूत, डोंडी लाहौर बलून से, कमलेश जयपुरिया चंद्रनगर से, रजनी सिंह चौहान पिंकी और दुर्गा कुमारी रोड रायगढ़ से, लालचंद मिश्रा और कुमकुम मिश्रा मोहम्मद रफी का इन्होंने फरमाइश की है।
6: जी हाँ दोस्तों, और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला मैसेज हमें आया है सिंधोली मीरगंज बरेली से, जिशान वारसी, इमरान शेख, रोहन शेख, करुला मुरादाबाद से, अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान। और ये अगला मैसेज हमें आया है देवशंकर तमुरिया जी का, अजय देव तमुरिया, तुषार देव तमुरिया, डॉली बेबी, पूजा तमुरिया, राधा और प्रभा देवी तमुरिया और मास्टर अल कबीर जी का।
7: अगला मैसेज हमें आया है बिहार रेडियो लियोन्स क्लब से, सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सनोली शर्मा और अनामिका शर्मा जी की तरफ से।
6: तो आइए दोस्तों, इन सभी की फरमाया, इन सभी दोस्तों के लिए हम सुनवाते हैं आप सभी को ये अगला खूबसूरत गीत।

0: तो दोस्तों आप सुन रहे थे सेगमेंट गीत आपके नाम, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कह रही है कि आपका वक्त होने को है। जी हाँ दोस्तों, और हम क्षमा चाहेंगे कि वक्त के तकाजी की वजह से हम जिन सभी दोस्तों के नाम शामिल नहीं कर पाए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली बार नेक्स्ट सैटरडे हम ज़रूर आप सभी के नाम शामिल करेंगे। तो हमें ज़रूर भेजिएगा अपने नाम, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी दोस्तों का जिन्होंने हमें मैसेजेस भेजे। और हमारे पास बहुत सारे और भी खूबसूरत गाने थे दोस्तों आप सभी को सुनाने के लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं जो हमने आपको सुनाया और आज के कार्यक्रम में जो भी आपने सुना बहुत आपको पसंद आया होगा। और दीपांशु, तुम कुछ कहना चाहोगे?
1: नहीं तो इत बिकॉज समय का तगादा है, तो चलिए दोस्तों।
0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और आपको कैसा लगा हमें भेजिए अपने खत के जरिए। खत भेजने के लिए नोट करें पता, कार्यक्रम युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 2467063। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9509549457078288, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति अपने दोस्त मोहम्मद तौहीद और दीपांशु को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री

0: पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पास ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषिगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया हिमांशु रंजन
1: और आपके भैया अंकित कुमार की
0: राम
1: राम राम।
0: राम।
1: और हिमांशु भैया, कैसे हाल चाल है थारे?
0: बस भैया, स्वराज्य खुशी। और भैया देखो, गर्मी बहुत पड़ रही
1: हाँ
0: भैया।
1: भैया, देखो गर्मी का तो टाइम है, तो भैया अपने टाइम पर गर्मी ना होने की तो कब होगी।
0: भैया बिल्कुल। और देखो, इस गर्मी के मौसम में भैया हमें खुद का बचाव करना
1: बिल्कुल।
0: और अपनी जो खेती किसानी है उसका भी भैया ध्यान रखना, और साथ ही साथ भैया जो हमने पशुपालक रखे है ना, या भैया कोई अन्य व्यवसाय कर रखा, तो भैया
1: हाँ
0: उसका भी ध्यान रखना
1: बिल्कुल
0: हमें।
1: भैया, जैसे मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है भैया, तो ऐसे व्यवसाय जो हम लोग कर रखे हैं, गर्मी में उनका बेहद ध्यान रखने की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल भैया। और देखो भैया अंकित, ये जो गर्मी पड़े करे ना, तो भैया इसमें हमें खाने पीने का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़े है।
1: बिल्कुल भैया, देखो गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। अब देखो भैया, चाहे हम हो या भैया
1: हाँ
0: हमारे पशु हो,
1: बिल्कुल।
0: अब भैया देखो, हम तो बोल ले मैं कि हमें अब पानी पिला दो,
1: हाँ
0: या भैया
1: हाँ
0: अब खाना चाहिए हमें।

0: आहार व्यवस्था करेंगे अपने पशुओं के लिए,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: भैया इससे हमारा पशु तो स्वस्थ रहेगा,
1: बिल्कुल।
0: साथ ही भैया जो उसकी उत्पादन क्षमता है ना वो बढ़ जाएगी, और भैया रोगों से बचाव में भी भैया ये सहायता करता है।
1: बिल्कुल। देखो भैया, हम हरा चारा भी देना है भैया, इसके साथ साथ भैया हमें सूखा चारा भी देना है, और भैया हमें संतुलित दाना मिश्रण भी अपने पशुओं को देना है, जिससे हमारे पशु का स्वास्थ्य बना रहे। हाँ
0: बिल्कुल भैया बना रहे हैं। और भैया पशु आहार से अगर हम बात करें कि पशु आहार कैसा है या कैसा होना चाहिए, तो भैया इससे आशा यह है कि उन सभी खाद्य पदार्थों से है जिन्हें पशु अपने शरीर की वृद्धि में लगाता है। भैया पशु का रखरखाव हो, प्रजनन हो, उसकी उत्पादन कार्यों के लिए भैया ग्रहणता हो, तो भैया इन सब बातों का हमें ध्यान रखना, और पशु आहार भैया सुपाच्य होना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: ऐसा होना चाहिए कि भैया हमारा पशु से बड़े चाव से खावे,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: इस बात का ध्यान रखें कि भैया उसका पेट खराब ना हो बस।
1: बिल्कुल। और हिमांशु भैया एक बात का और ध्यान रखना
0: वो क्या भैया,
1: भैया, अपने पशुओं को ताजा और स्वच्छ पानी पिलाना।
0: बिल्कुल यो बात तो भैया तुमने बड़े पते की कह दी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है,
1: हाँ
0: और भैया रखा हुआ पानी कई बार ऐसा हो कि भैया धूप में रखी बाल्टी हमारी
1: हाँ
0: और भैया हमने उठाई और पशु को पिला दी, तो भैया उससे क्या होगा, एक तो पशु की प्यास नहीं बुझने की और पशु
1: बिल्कुल
0: ज्यादा पीने का भी नहीं उसे।
1: बिल्कुल भैया, उससे अपच की समस्या हो सकती है। तीन बातों का ध्यान रखना, और
0: बिल्कुल
1: एक बात का और ध्यान
0: वो
1: रखना
0: क्या भैया
1: भैया, अपनी पशुशाला की हमें नियमित साफ सफाई जरूर करनी है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, जिस प्रकार हम अपनी साफ सफाई करते हैं, अपने कमरों की करते हैं, मकान की करते हैं, उसी प्रकार भैया हमें पशुशाला की भी साफ सफाई करनी, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: भैया जो पशु का गोबर है, मूत्र है, भैया उसको समय समय पर साफ करते रहें, मैं और कीटाणु नाशक से भैया अपनी पशुशाला की धुलाई अवश्य करें।
1: बिल्कुल। और भैया जो पशुओं का गोबर है, मूत्र भैया, एक जगह इकट्ठा कर ले म, और भैया उसे अपने खेती के काम में ले म।
0: बिल्कुल खेती के काम में ले मैं, साथ ही भैया देखो यूँ कह रहे हैं कि भैया खेती किसानी और पशु जो है भैया एक दूसरे के पूरक हैं,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि भैया देखो जब हम पशु पाले हैं तो जो पशु से प्राप्त हमें चाहे वो गोबर हो चाहे भैया उसका मूत्र हो, उससे भैया हमारी खेती बढ़िया लहलावे।
1: बिल्कुल। देखो भैया, हम अपने खेतों में डाल लेंगे तो हमारी जो खाद है ना, हम जो रासायनिक खाद हम खेतों में डालते हैं उस पर निर्भरता कम होगी,
0: बिल्कुल
1: और भैया
0: भैया
1: लागत भी हमारी कम होगी, और मिट्टी जो हमारी भुरभुरी बनेगी भैया, मिट्टी का स्वास्थ्य सही होगा भैया, पर्यावरण भी हमारा स्वस्थ रहेगा। तो ये इतने सारे काम हम पशुपालन के कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और भैया जब जैविक तरीके से हम खेती करेंगे तो जो भैया उससे प्राप्त हमें जो पशु के लिए आहार बना रहे हैं
1: हाँ
0: तो भैया हमारा पशु भी स्वस्थ रहेगा, बड़े चाव
1: बिल्कुल
0: से पशु से खावेगा।
1: बिल्कुल भैया। और भैया देखो, जब हम खेती बाड़ी करें यहाँ, तो उसमें एक चीज़ का हम ध्यान दें
0: वो क्या भैया
1: भैया, अगर हम खेती अच्छी करनी है तो भैया बीज हमारा अच्छा होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो तुम अंकित भैया, जहां तक भैया बीज की तुम बात कर रहे हो तो अगर भैया हमारा बीज उन्नत प्रजातियों का हो
1: हाँ
0: तो अंकित भैया कैसा रहेगा यो बताओ तुम।
1: बिल्कुल भैया। देखो, उन्नत अगर प्रजाति हमारे किसान भाई लगाते हैं, एक तो उसमें जो क्या होता है, एक जो उनकी रोगों की क्षमता होती है ना लड़ने की, एक तो वो बहुत अच्छी होती है, और भैया कुछ ऐसे होते हैं हमारे जो जिनका उत्पादन बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल, और भैया कई उन्नत प्रजातियां तो ऐसी हैं जो बहुत सारे रोगों और कीटों के प्रति सहनशील होती हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना, और भैया इससे फसलों को होने वाली क्षति कम हो जाती है और किसानों को कीटनाशकों पर भैया कम खर्च करना पड़ता है।
1: बिल्कुल भैया। और भैया देखो, आज तुम एक चीज और भूल रहे हैं,
0: क्या अंकित भैया,
1: आज बताइए दिन कौन सा।
0: अरे भैया अंकित भैया आज तो दिन शनिवार का, हम तो भूल ही गए थे भैया,
1: हाँ
0: और भैया वो भी किसान भाई हमारा इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि भैया आज मनोरंजन का दिन है,
1: हाँ
0: किसान भाई सुनते हैं लोकगीतों वैरागियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी,
1: बिल्कुल
0: और भैया देखो हमारे किसान भाई हमें फोन करेंगे तो उन्हें जल्दी से नंबर बता दो भैया।
1: बिल्कुल भैया, हमारा जो मोबाइल नंबर है 9457-07-82-88,
0: अच्छा भैया
1: और भैया हमारा एक लैंडलाइन नंबर है जिसका एसटीडी कोड है 01341, और लैंडलाइन नंबर है 230-105।
0: बिल्कुल भैया, अब अंकित भैया देखो हमारे किसान भाई ने नंबर लिख लिए होंगे,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: भैया जब तक हमारे किसान भाई फोन करें
1: हाँ
0: तो भैया एक जरूरी काम हम भी कर ले, मैं
1: बिल्कुल भैया।
0: तो भैया सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
3: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
2: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
3: खुशहाली का नया प्रयोग।
4: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जन

0: तो अंकित भैया, अभी हमारे किसान भाइयों ने सुने कुछ है जरूरी संदेश।
1: बिल्कुल भैया,
0: और भैया अभी हम बात कर रहे थे कि हम अपने किसान भाइयों को सुनवाएंगे कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम
1: हेलो लोकमंजरी।

0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के हेलो लोक मंजरी कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम के साथ मैं हूँ आपका भैया हिमांशु रंजन।
1: और मैं हूँ आपका भैया अंकित कुमार।
0: तो भैया, हम दोनों की किसान भाइयों को फिर से राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो अंकित भैया, देखो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं लोकगीतों व रागनियों का सजीव फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम। और भैया, अब से लेके
1: छह
0: छह
1: बज
0: बज के 45 मिनट तक भैया हमारे किसान भाई हमारे सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं और अपनी पसंद की कोई भी रागनी या लोकगीत सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया, नंबर बता देते हैं एक बार फिर।
0: बिल्कुल भैया।
1: भैया हमारा मोबाइल नंबर है 94-57-07-82-88।
0: अच्छा भैया,
1: एक हमारा लैंडलाइन नंबर है जिसका एसटीडी कोड है 0-13-41 और लैंडलाइन नंबर है 230-105। हमारे किसान भाई जल्दी से उठाएं अपना फोन और कॉल करें हमें और सुने अपनी पसंद की रागनी।
0: बिल्कुल। और अंकित भैया देखो, इधर आपने हमें नंबर बताया किसान भाइयों को, और
1: हाँ
0: भैया उधर देखो फोन आ गए।
1: हाँ बिल्कुल भैया, उठाओ जल्दी से कॉल लियो।
0: तो भैया देख लेते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर।
1: हेलो लोक मंजरी
2: हेलो लोक मंजरी,
1: जी।
2: हिमांशु रंजन जी और अंकित कुमार को मेरी राम राम।
1: जी राम राम।
0: राम राम जी, आपको भी राम राम।
2: हाँ जी,
1: आप अपना परिचय बता दीजिए।
2: मैं ग्राम जाधारोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ।
1: जी मदन गिरी जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, और आप सुनाइए आप कैसे हैं। और आपका प्रोग्राम जो है रोज सुनता हूँ, सबसे
1: बिल्कुल
2: जगह कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल
2: और
1: जी, आप
2: इसको
1: हमारे
2: बहुत ही
1: नियमित
2: जी
1: श्रोता हैं। और आपके यहाँ
2: जी
1: का मौसम कैसा है अब?
2: मौसम तो बहुत गर्म है जी,
1: अच्छा,
2: बहुत ही गर्म है। खेती
1: तो आज खेती बाड़ी में क्या चल रहा है आपका इस समय?
2: बाड़ी में तो गन्ना बो रखा है जी, और कुछ समस्या थी थोड़ी सी हल कर रहे हैं।
1: जी
2: और थोड़ा गन्ना जो है वो बाद में 14 बजे को लगाया था, वो कुछ छिद्दा जमा है तो
1: अच्छा,
2: उसकी वो कर रहे हैं, उसमें टांगी डाल लिया है बीच बीच में। और एक दो बीघे उतना तो बात भी थी, वो
1: ठीक,
2: 10 बीघा खेत है जी पूरा।
1: अच्छा
2: हाँ जी
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मदन गिरी जी, देखिए ये समस्याएं तो खेती किसानी की लगी रहती हैं,
2: लगी रहती है जी,
0: और
2: आता
0: हमें
2: जी
0: इससे निबटना और हमारे किसान भाइयों को बड़े अच्छे ढंग से आता है।
2: आता है जी आता है।
0: बिल्कुल। तो आज आप हमारे इस कार्यक्रम में कौन सी रागनी या लोकगीत सुनना चाह रहे हैं आप?
2: हाँ जी, वो रागनी है कि 20 आदमी एक कुटुंब में 8 बीघे कुल धरती।
1: बिल्कुल जी, मदन गिरी जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद की ये प्यारी सी रागनी।
2: एक दो चार नाम देना चाहता
1: जी
2: हूँ जी
1: बिल्कुल, ले
2: मैं,
1: लीजिए।
2: ये जो ये रागनी है मैं डेडिकेट करना चाहूँ आचार्य सत्यवीर सिंह जी चौहान को,
1: जी
2: और आसिफ चौधरी जी हैं, राशिद अंसारी जी हैं, प्रकाश चंद जी हैं और सत्यपाल सिंह चौहान जी हैं।
1: जी
2: यही गरज इतना है।
0: बिल्कुल।
2: बिल्कुल
0: तो मदन गिरी जी, आपने हमें कॉल किया, आपके इस कॉल के लिए धन्यवाद। और सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारी सी रागनी।

0: हेलो लोकमंजरी
1: नमस्कार सर,
0: जी, नमस्कार। कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: मैं मास्टर हुकम सिंह बोल रहा हूँ जी, जिला बुलंदशहर से, तहसील
0: जी मास्टर
1: स्याना।
0: जी, हुकम सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है जी, गर्मी लग रही है बहुत।
0: अच्छा, गर्मी हो रही है तो गर्मी तो लगेगी।
1: हाँ जी, परेशानी ज्यादा है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वातावरण बहुत गर्म है।
2: जी मास्टर साहब, हम जैसे गर्मी हो रही है तो गर्मी में अपना बचाव रखिएगा और अपने पशुओं का भी बचाव रखिएगा।
1: हाँ, पशुओं का 3 बार नहलाते हैं जी ठंडे पानी से,
2: जी
0: बिल्कुल। अब देख
1: और पानी पिलाते हैं 3-4 बार।
0: जी जी मास्टर साहब, एक काम और करना है आपको।
1: हाँ जी,
0: अब बरसात आ रही है, आपको पेड़ लगाने हैं कम से कम 10-15।
1: पेड़ मेरे पास एक छोटी बगिया है, उसमें हर तरह का पेड़ मिलेगा, फल फूल
0: बिल्कुल
1: फुलवाड़ी भी मिलेगी सर।
0: बिल्कुल।

0: और अपने खेतों में भी लगाने हैं जिससे वातावरण सही रहे।
1: हाँ जी, मैं प्रकृति प्रेमी आदमी हूँ
0: बिल्कुल होने भी चाहिए।
2: बहुत
1: और
2: बढ़िया जी, बहुत बढ़िया
1: शिक्षित हूँ
0: जी।
2: जी
1: जी हाँ, रिटायर हूँ इस समय
0: जी
2: जी
0: जी तो
2: जी
0: क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: अजी उपदेश मैं ज्यादा विश्वास करता हूँ, मैं जनता को कुछ तो भला हो।
0: जी जी जी बिल्कुल
1: ये चोरी का धन हो उसका पानी।
0: बिल्कुल तो
1: हाँ जी
2: बिल्कुल मास्टर हुकम सिंह जी, हम आपकी पसंद की ये प्यारी सी जो रागनी है सुनाएंगे, लेकिन कल योग दिवस है तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: संदेश यह है जी, देखो व्यायाम और ये योग, हर आदमी, मेरी 72 साल उम्र है जी,
0: जी
1: मैं व्यायाम करता हूँ, रोज 2 किलोमीटर घूमने जाता हूँ
0: बिल्कुल
1: और दंड बैठक, सीटी और सब तरह का व्यायाम करता हूँ जो भी मुझसे बन सकता है इस उम्र में।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बिल्कुल
2: देखिए अगर हमें
1: 72 साल उम्र है मेरी।
2: बिल्कुल बिल्कुल मास्टर साहब, देखिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो योग को अपने जीवन में जरूर हमें शामिल करना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे
1: हाँ
2: हैं?
1: जी, मैं सर पूर्णतः स्वस्थ हूँ, सात्विक
2: जी
1: भोजन खाता हूँ
2: जी
1: और कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है,
2: जी
1: आप लोगों की कृपा से मौज है धन्यवाद,
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल, और स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंतित हूँ।
2: बिल्कुल रहना भी चाहिए।
1: पहला
2: तो
1: धन निरोगी काया है।
2: बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात
1: हाँ जी
2: से हम सहमत हैं बिल्कुल। तो मास्टर साहब हम आपकी पसंद पर सुनते हैं प्यारी सी रागनी। आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बिल्कुल जी।

0: तो अंकित भैया हमारे किसान भाई अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो लोकमंजरी सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल भैया, एक बार नंबर और फिर से बता देते हैं, जो हमारे किसान भाई अपनी मनपसंद की रागनी सुनना चाहते हैं तो वो भैया हम 6:45 तक कॉल कर सकते हैं
0: बिल्कुल, तो हमारे
1: भैया।
0: नंबर हैं 94-57-07-82-88।
1: और भैया हमारा एक लैंडलाइन नंबर है जिसका एसटीडी कोड है 0-43 और नंबर है 230-105।
0: ठीक है भैया, तो देख लेते हैं हम हमारे अगले कॉलर कौन है।
1: बिल्कुल भैया, हेलो लोकमंजरी
2: हेलो लोकमंत्री सर।
1: जी
2: सर नमस्ते, मैं अमित
1: नमस्कार,
2: धीमान
1: थोड़ा सा
2: बोल रहा
1: तेज
2: हूँ।
1: बोलिए, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है।
2: मैं अमित धीमान बोल रहा हूँ सर, जेतपुर के पास कसौर गांव सर।
1: जी, अमित जी कैसे हैं आप?
2: सर बढ़िया है सर, गर्मी बहुत है इस समय तो
1: बिल्कुल,
2: सब।
1: देखो गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो होगी। तो और कैसी चल रही है आपकी खेती बाड़ी?
2: सर बढ़िया है सर, मुंजी के लिए वो
1: अच्छा,
2: है।
1: तो कौन सी मुंजी आप लगा रहे हैं सेम?
2: शरबती है सर।
1: अच्छा, सरबती का पनीर किया हुआ है।
2: जी,
1: और क्या करते हैं इसके साथ?
2: सर मैं वैसा काम भी कर लेता हूँ जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर के पास
1: अच्छा,
2: एक इस तरह से,
1: जी,
2: और थोड़ी सी
1: तो
2: जमीन है मेरे पास
1: बिल्कुल
2: तीन
1: अच्छा,
2: बीघे
1: बिल्कुल।
2: जी।
0: तो अमित धीमान जी, जैसे कल हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो आपका क्या कहना है कि योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को?
2: सर योग करें सभी और स्वस्थ रहें
0: जी
2: जी, मेरा तो यही कहना है, योग बिना तो स्वस्थ नहीं रह सकता ना आदमी। अब जा
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल
0: बिल्कुल, तो योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। चलिए,
2: है
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और आज के कार्यक्रम में क्या सुनना चाह रहे हैं आप, ये बताइए।
2: सर, शिक्षा प्रद रागनी सुना देना महनपाल सिंह की आवाज में। और
1: जी
2: सर
1: बिल्कुल
2: मेरे कुछ नाम है जो मैं लेना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, लीजिए नाम लीजिए।
2: जी, राहु नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह,
1: जी
2: और ये हरपाल शास्त्री जी किड़ियापुर
1: जी
2: जी, और एक है जी ये गांव घरौना जी, इनका नाम से तो मैं परिचित नहीं हूँ शायद
1: जी जी
2: अभी एक दो बार लिया पहले तो उन्हें उनके लिए भी समर्पित, सभी के लिए समर्पित रागनी
0: चलिए
2: जी।
0: चलिए,
2: बिल्कुल,
0: बहुत बढ़िया बात है
1: तो
0: जी।
1: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद की ये रागनी
2: जी।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: हेलो लोक मंजरी।
5: हेलो लोक मंजरी राजा, नमस्ते।
4: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन सा बोल रहे हैं?
5: मैं उत्तराखंड सेनेखाल सेनगांव फाइट से प्रकाश चंद बोल रहा हूँ।
4: जी प्रकाश चंद जी, कैसे हैं आप?
5: राजा मैं तो बढ़िया हूँ, आप लोग सब बढ़िया?
4: बिल्कुल बहुत बढ़िया है जी हम। और आपकी खेती किसानी कैसी चल रही है?
5: राजा खेती किसानी तो ठीक ही चल रही है, बढ़िया चल रही है।
4: मौसम कैसा हो रहा है आपके यहाँ का?
5: ऐसा मौसम बारिश नहीं हो रही, अब बारिश कम हो गई।
4: जी जी, तो इस बदलते मौसम में, यानी कि जो अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी और अभी मौसम जो है शुष्क है, तो अपना और अपनी खेती किसानी का बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रबंधन करना है आपको।
5: हाँ जी, हाँ जी
4: जी। और कौन सी रागनी या लोकगीत सुनना चाह रहे हैं आज आप कार्यक्रम में?
5: भाई साहब वो मेरे पाछे पाछे सुरेश वाडकर का गाना है
4: जी जी,
5: और ये रागनी है, और भाई साहब एक दो नाम ले लूं मैं?
4: बिल्कुल नाम
5: कनु प्रिया, मंजू देवी, प्रकाश चंद्र और उज्जवल कुमार
4: जी जी।
5: और भाई साहब ये कल योग दिवस भी है, सभी लोग योगा करें
4: जी बिल्कुल,
5: और इसी से स्वस्थ रहता है आदमी। हो और जो भी श्रोता सुन रहे हो या सभी जो ये श्रोता सुन रहे हो योगा करें, कल योगा दिवस है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, आप भी योगा कर रही है और अपने परिवार को भी योगा कराइए और स्वस्थ रहिए।
5: हम कराते हैं योगा, उनको कराते हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रकाशन जी आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये लोकगीत।
5: ठीक है, नमस्ते।
4: नमस्कार।

0: मेरे पाछे पाछे। तो किसान भाइयों ने सुरेश वाडेकर की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत सुना,
1: बिल्कुल भैया।
0: और अंकित भैया देखो लोकगीत तुम्हें भी पसंद आया होगा।
1: हाँ भैया बिल्कुल।
0: और भैया देखो, अब जिन किसान बहन भाइयों के भैया फोन कॉल्स नहीं लगी हैं, तो भैया वो अगले शनिवार को हमारे सीधे स्टूडियो में फोन करके अपनी पसंद की कोई भी लोकगीत या रागनी सुन सकते हैं। उसके लिए
1: बिल्कुल
0: भैया हमारे फोन नंबर्स हैं, तो
1: 94-57-07-82-88।
0: और भैया एक हमारा लैंडलाइन नंबर है, वो है 0-43-230-105।
1: बिल्कुल भैया। और देखो भैया, अब समय आ गया है मौसम की चिट्ठी का।
0: बिल्कुल भैया, तो भैया जल्दी से बता दो ये मौसम की चिट्ठी कहाँ से प्राप्त हुई है।
1: ये मौसम की चिट्ठी में प्राप्त हुई ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोतीपुरम मेरठ से।
0: बिल्कुल
1: और भैया इस चिट्ठी के अनुसार आने वाले 2-3 दिन भैया अभी मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
0: बिल्कुल, तो भैया इस मौसम में हमारे किसान भाई अपनी जो भी खेती किसानी से संबंधित भैया उनकी चाहे फसलें हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, तो भैया उसमें वो उचित नमी बना के रखें।
1: बिल्कुल भैया। अब देखो घड़ी भी ज्यादा बातचीत की इजाजत नहीं दे रही है, तो भैया दोनों भैया कर लेते हैं
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज वार्ताकार डॉक्टर शंकर लाल शर्मा प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी वार्ता, मानव मन की अभिव्यक्ति का अद्भुत माध्यम कविता।
1: मानव मन है क्या? वैदिक संदर्भ से प्राप्त सामान्य ज्ञान के आधार पर धात्वर्थ के अनुसार मन है अवबोधन। अव्यक्तावस्था से व्यक्तावस्था को बोधन में लेना, यही तो मन है, मन का काम है। और मस्तिष्क है स्थूल, मन सूक्ष्म है। आज की भाषा में कहें तो मन सॉफ्टवेयर है और मस्तिष्क तथा हृदय हैं हार्डवेयर। मन मानव की प्रज्ञा, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार है। आज की भाषा में वेयरहाउस है। मन के चेतन, अवचेतन और अतिचेतन के समन्वय से आत्मा की कर्मेंद्रिय में सृजन भाव का जागृत होना, ये उसकी एक प्रक्रिया है। यही मानव मन में कविता का जन्म होता है। मन की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम है भाषा। कविता भी शरीर है। भाषा शिल्प शैली और तकनीक उसके आभूषण है। इसमें तत्व होते हैं भाव सौंदर्य, पर सौंदर्य और ध्वनि सौंदर्य। भाव सौंदर्य का ही आनंद स्वरूप है रसानुभूति, जो अभिव्यक्ति को अद्भुतता प्रदान करती है। हमें इसी पर केंद्रित रहना है। संवेद को कविता का उत्स माना गया है। यह ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। यहीं से गीत, संगीत, स्वर, लय, ताल, छंद आदि का शुभारंभ है। छंद तो शरीर है, अलंकार उसके श्रृंगार हैं और रस उसकी आत्मा है। सामवेद विश्व में गीत, संगीत, छंद, नृत्य आदि का एक सशक्त प्रथम संवाहक है। कविता को संस्कृत के आदि कवि

ताल छंद आदि का शुभारंभ है। छंद तो शरीर है, अलंकार उसके श्रृंगार हैं और रस उसकी आत्मा है। सामवेद विश्व में गीत

सभी भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों के साहित्य में हिमालय, गंगा, सीता, राम, राधा, कृष्ण आदि के वर्णन और रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का अपने अपने रूप में उपलब्ध होना, सभी भाषाओं की लिपियों की बारहखड़ी का लगभग समान होना, रसों और उनके स्थायी भावों आदि की अवधारणा सर्वत्र होना, कविता का सृजन होना, सभी बोलियों उपभाषाओं में लोक साहित्य की उपलब्धता अभिव्यक्ति की अद्भुतता का ही तो परिचायक है। जम्मू कश्मीर के हिंदी कवि रहमान राही, चंपा शर्मा, पश्चिम बंगाल के हिंदी साहित्यकार विष्णुकांत शास्त्री, उड़िया के सीमाकांत महापात्रा, पंजाब के सरदार सुरजीत पात्र, तेजी ग्रोवर, गुजरात की मीराबाई, दादू दयाल, महाराष्ट्र के मनोहर शंकर ओक, तुकाराम, केरल के अय्यरप पणिक्कर, गोपी कृष्ण कट्टूर, मीरा नायर, कन्नड़ के कवि सिद्धलिंगय्या, लवली गोस्वामी, अंबिका तनय दत्त, तेलंगाना के कालोजी नारायण राव, तेलुगु के श्रीरंगम श्रीनिवास राव, चिन्नैया सूरी, तमिल के महाकवि सुब्रमण्यम भारती आदि कवियों की रचनाएं हमें विधि प्रदत्त नैसर्गिक प्रज्ञा और सतत अभ्यास से संप्राप्त प्रतिभा तथा समन्वित समय स्रोतों का उपलब्ध उदाहरण है। इसका प्रमाण है हिंदी में 11 रामायण, मराठी में 8, बंगला में 25, तमिल में 12, उड़िया में 6 राम काव्यों का मिलना। इंडोनेशिया ताल छंद आदि का शुभारंभ है। छंद तो शरीर है, अलंकार उसके श्रृंगार हैं और रस उसकी आत्मा है। सामवेद विश्व में गीत संगीत के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि भारत के अतिरिक्त 9 और देशों में हैं जहां राम कथा किसी न किसी रूप में सुनी सुनाई जाती है। 300 से अधिक राम कथाएं विश्व भर में इसी तरह प्रचलित हैं। इसको भी अभिव्यक्ति का अनुपम उदाहरण ही तो माना जा सकता है। यह अवचेतन में गहरे बैठे ज्ञान का सहज प्रस्फुटन ही तो है। अब हिंदी साहित्य के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से कविता विधा की अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता का आकलन करने का हम प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य की आदिकालीन प्रतिनिधि प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक कल्पनाओं को उड़ान देते हुए अद्भुत रचना का सृजन है। इस कृति के कवि चंद्रवरदाई अपने राजा पृथ्वीराज चौहान के राजकवि होने के साथ साथ उनके सेनापति भी थे। वे राजा के साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाया करते थे। युद्ध के मैदान में उपस्थित रहना और अपने राजा के उत्साहवर्धन में कविता लिखना आधुनिक गद्य विधा के रिपोर्टाज अर्थात सूचनिका का उद्भव बिंदु भी कहा जा सकता है। यद्यपि रिपोर्टाज में कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है, पृथ्वीराज रासो में रचनाकार अपने राजा के प्रशस्त गायन में कल्पना की ऊंची उड़ान भरता है। भाषा की शब्द शक्तियों अभिधा लक्षणा और व्यंजना में से अभिधा को ही यहाँ महत्व मिला। शब्द चयन में युद्धोचित शब्दों का विशेष स्थान है। ओज गुण के पदादि के प्रयोग ने रचनाकार की अभिव्यक्ति में संप्रेषणीयता के हमें दर्शन कराए हैं। सतगुर की मेहमानत अनत किया उपकार, लोचन अनत उघाड़िया अनत दिखावन हार, जैसी गुरु महिमा के अनेकाएक साखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। यहाँ तक कि गुरु को गोविंद से भी बड़ा दर्शाया गया है। मानते हैं वे ऐसा कि गुरु के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है। गुरुओं के गुण अवगुणों के आधार पर वर्गीकरण से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। और वे कहते हैं ना, जाका गुरु भी आंधड़ा, चेला निरा निरन, अंधे अंधा थेलियां, दोनों को पढ़न। हिंदी के भक्तिकालीन महाकवि सूर और तुलसी की कृतियों में भी इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। बिहारी ससई के एक दोहे के माध्यम से भी हम अभिव्यक्ति के अनुपम और अद्वितीय माध्यम को स्पष्ट करना चाहेंगे। एक दोहा उदाहरण के लिए, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत हैं।

0: मैं नहीं सो बात। संदर्भ क्या है? नायिका से मिलने के लिए नायक उसके भुवन अर्थात भवन पहुंचता है। वह अभिसार के लिए कहता है यानी निवेदन करता है। नायिका नट जाती है अर्थात मना करती है। नायक रिझता है। नायिका बनावटी तौर पर खींचती है, परंतु जब दोनों के नैन फिर चार होते हैं और खिल उठते हैं तो अंत में खिल जाती है अर्थात मुस्करा देती है। तात्पर्य है स्वीकृति दे देती है। भरे घर में नायक नायिका की सारी बातें हो जाती हैं। कायिक चेष्टाओं अर्थात नैनन के माध्यम से संवाद की पूर्णता इस संक्षिप्तता के अतिरिक्त संभव ही नहीं थी। इसीलिए ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर कहा जाता है। यह कविता के अद्भुत अभिव्यक्ति माध्यम के अतिरिक्त संभव ही नहीं था। छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता आदि ने हिंदी कविता को विविध रूपों से समृद्ध किया। मनोविज्ञान के विविध अंग, नारी मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान आदि का हमारी अभिव्यक्ति में दखल आ गया।
1: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वार्ताकार डॉक्टर शंकरलाल शर्मा की वार्ता मानव मन की अभिव्यक्ति का अद्भुत माध्यम कविता। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म शक्ति से। संगीत आर डी बर्मन का है और इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म शक्ति से ये खूबसूरत सा गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन तैयार की थी आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म अनमोल मोती से। इस गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्णन ने और धुन तैयार की है रवि ने।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म अनमोल मोती का ये गीत। रवि का संगीत था और शब्द रचना थी राजेंद्र कृष्ण की। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म श्री 420 से। आवाज़ें हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की, शंकर जयकिशन का संगीत है और शब्द रचना है शैलेंद्र की।

मन्ना डे और लता मंगेशकर के गाए फिल्म श्री 420 के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:15 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल की दोनों सभाओं के प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज रात 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का समय रहेगा रात 10:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु से बातचीत का प्रसारण सुनिएगा आज रात 8:00। ये कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से रिले होगा। शाम 7:32 पर आप सुनेंगे मिर्जा हॉस्पिटल किरतपुर में आयोजित गोल्डन जुबली ऑफ केयर कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मिर्जा हॉस्पिटल किरतपुर बिजनौर। वाचन स्वर और प्रस्तुति सहयोग रहेगा जसवंत सिंह का। ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:30 पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित योग समारोह की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कार्यक्रम धरती गाती है आप सुनिएगा कल सुबह 9:20 पर। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे कलाकार रूबी रस्तोगी और अंजू अग्रवाल के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। श्रोताओं, ये था विवरण हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल की दोनों सभाओं के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:18 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: TLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार।

पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किरायों में मिलेगी 50% की छूट और प्रदेश में जन

0: 52 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशभर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी से इस कार्यक्रम में सहभागिता की। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
2: किसानों को बहुत फायदा मिलता है, बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है, शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
3: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वह भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
0: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
3: आज ललितपुर बदल चुका है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
0: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकल विहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में भी योग के दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश में सभी जनपदों में योग दिवस के अवसर पर कल योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और बिजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पे होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं लखनऊ स्थित राजन भवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाएं योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगी। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

0: किए जाएंगे, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी जाएगी। समाचार कक्ष से सुषमा कुकरेती।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता को लेकर कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता के लिए गुलामी की मानसिकता को दूर कर अपनी विरासत के प्रति गौरवान्वित होना चाहिए। मेरठ की ग्राम पंचायत फफुंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि आज प्रदेश विकास, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।
2: सरकार आपके द्वारा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा हमेशा प्रयास यही है कि सरकार अपने जो सम्मानित नागरिक है उनसे संवाद करके उन सुझावों के साथ हम लोग प्रदेश और देश के विकास में उनकी सहभागिता हो। आज भी हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टॉल्स के माध्यम से जो जिले के अलग अलग विभाग है उनकी सबकी स्टॉल्स लगी और यहाँ पर जो उनके सुझाव है, यदि कोई पेंशन के लिए था तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन हमारी स्वयं सहायता समूह 32 स्वयं सहायता समूह इस गांव के अंदर है, उसकी जो मातृशक्ति का योगदान हमारे इस गांव के लिए, इस मेरठ के लिए हो रहा है, उसका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम 100% पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों, 350 तहसीलों और 1,00,000 से अधिक गांवों में मकान सूचीकरण के लिए 5,00,000 से अधिक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना की भी की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। मुख्यमंत्री ने ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बुंदेलखंड में बनेगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों में होगी आयोजित। प्रदेश भर में अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में मिलेगी 50% की छूट। और प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य पूरा। दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:32 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मिर्ज़ा हॉस्पिटल किरतपुर में आयोजित गोल्डन जुबली ऑफ केयर कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मिर्ज़ा हॉस्पिटल किरतपुर बिजनौर। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग है जसवंत सिंह का।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मिर्ज़ा हॉस्पिटल किरतपुर। श्रोताओं नमस्कार। दिनांक 18 जून 2026 गुरुवार को मिर्ज़ा हॉस्पिटल किरतपुर जिला बिजनौर में एक हेल्थ शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप के विषय में पहले से ही नगर के निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया गया था। निश्चित तिथि अर्थात 18 जून 2026 को कैंप सुबह 8 बजे से ही आरंभ हुआ। कैंप के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन भी कराए गए थे। कैंप में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के विषय में हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहतशम मिर्जा ने हमें बताया।
2: मैं डॉक्टर मोहतशम मिर्जा, मैं MBBS हूँ, जनरल फिजिशियन हूँ और सोनोलॉजिस्ट भी हूँ। इस कैंप में हम जो OPD और IPD भर्ती भी सिर्फ 75 रुपए में दे रहे हैं और 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए सीधे हम हर चीज पे बिना कोई वो करे 75% की छूट दे रहे हैं और बाकी सभी चीजों पे जितनी भी सुविधाएं हमारे अस्पताल में हैं सभी के लिए आम जनता के लिए 50% की छूट है। चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, एक्सरे हो, जांचे हो, कुछ भी हो, सब पे 50% की छूट दी जाएगी। आज के दिन ही हमने एक ऑर्थोपेडिक कैंप भी रखा है जिसमें ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर मनु अग्रवाल जी आ रहे हैं। 3 घंटे का कैंप है क्योंकि उनका ऑर्थोपेडिक का काम है तो उनको एक्सरे ज्यादा वो होते हैं, एक्सरे हम आधे रेट्स में कर रहे हैं उनके भी। तो हमने भी यही सोचा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके और बहुत कम दरों पर। हमारी प्लानिंग्स तो यही हैं, जैसे कि पापा ने जिस तरीके से डेवलप उस टाइम पे किया, सारी फैसिलिटीज लाई, तो हमारी भी यही अपेक्षा है कि हम आगे चल के वो जो आज फैसिलिटीज हैं जो बाहर शहरों में मिल रही हैं वो यहीं पर दे पाए। और हम लगातार उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, हम लगातार कैंप्स भी रख रहे हैं, हम लगातार लोगों को ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग सही जगह पर जाएं, सही डॉक्टर से मिलें, सही इलाज पाएं और सही जानकारी पाएं।
1: तो आप किस तरह से अपने वालिद साहब के पद चिन्हों पर चलना चाहेंगे ताकि लोगों की खिदमत और अच्छे से की जा सके?
2: उन्होंने जो करके दिखाया है इस बस्ती में, उस मुकाम तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश अपनी पूरी करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके लोगों के फायदे के लिए चीजें कर सकें और बेहतर से बेहतर इलाज, बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज लोगों को दे सकें। अगर हम यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर सके तो कम से कम इतना तो हो कि लोगों को सही सलाह, सही उपचार मिल सके।
1: बिल्कुल, कई बार ऐसा वक्त आ जाता है कि कुछ बहुत ज्यादा निर्धन लोग आ जाते हैं और चूंकि आज कैंप है, आप दोनों हाथ खोलकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। सुबह से अब तक हम देख रहे हैं कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसके पास पैसे ना हो और आपने फिर भी उसका इलाज किया हो।
2: ये चीजें कहने की और बोलने की नहीं होती है, लेकिन फिर भी मतलब हम आमतौर पर भी, आज तो कैंप था, आज तो वैसे ही बहुत कम रेट से हर चीज के, लेकिन वैसे भी अगर कोई ऐसा मरीज या ऐसा कोई आता है हमारे पास, जैसे विकलांग हो या फिर कोई मजबूर हो या ऐसे लोग आते हैं, तो हम उनके लिए जो भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कर देते हैं। मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि किरतपुर वालों के लिए और किरतपुर के आसपास के लोगों के लिए कि आपके पास एक फैसिलिटी है, जेन्युइन ईमानदार तरीके से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं, ये आपके लिए ही है।
1: वैसे तो कैंप के पहले ही दिनों में रजिस्ट्रेशन कराए गए थे ताकि कोई अव्यवस्था ना हो, मरीजों की ज्यादा भीड़ आने पर उन्हें व्यवस्थित तरीके से देखा जा सके, उनका उपचार किया जा सके। फिर भी मिर्ज़ा हॉस्पिटल में कार्यरत कर्मचारियों ने कैंप में आए मरीजों को सांत्वना दी, उनकी व्यवस्था बनाए रखी और क्रमशः सभी को बाहर से आए डॉक्टर्स से मिलवाया। मिर्ज़ा हॉस्पिटल में मरीजों के लिए व्यवस्था के विषय में जानकारी देते हुए आप हैं हॉस्पिटल के कर्मचारी।
3: मेरा नाम पूनम रानी है और मैं मिर्जा हॉस्पिटल में ही जॉब करती हूँ। जैसे हमने लोगों के हित में कैंप लगा रखा है, तो इसमें इनफर्टिलिटी के पेशेंट भी हैं, हमने सभी का लगाया और जिसमें हमने लोगों के लिए बहुत सारी सुविधा भी दी है। ब्लड के टेस्ट पे 50% की छूट दी है, जो कि डॉक्टर की फीस वगैरह में भी बहुत सारी छूटें दी गई हैं, और अल्ट्रासाउंड में और एक्सरे में भी बहुत सारी छूट दी गई है। और हमने इतना सोचा भी नहीं था कि जितने पेशेंट आएंगे हमारा बहुत सहयोग हुआ और बहुत अच्छे पेशेंट भी आए और पेशेंटों के लिए हमने बहुत कुछ किया भी है।
1: आपका नाम?
4: टीना रानी।
1: आज के कैंप में सुबह से क्या बदलाव आपने देखे और दिनों की अपेक्षा?
4: आज के कैंप में डेली से ज्यादा पेशेंट आए हैं और उनको काफी हद तक डिस्काउंट दिया गया है। जिनकी एज 75 ईयर से ज्यादा थी उनको 75% का डिस्काउंट दिया गया है, और जिन जो नॉर्मल पेशेंट थे उनको 50% का डिस्काउंट दिया गया है। और जितने भी पेशेंट थे आज 75 पेशेंट के लिए फैमिली कार्ड बना के दिया गया है, जो वो कार्ड कभी भी लेके आए उनको 25 से ज्यादा परसेंट दिया जाएगा डिस्काउंट।
1: मिर्जा हॉस्पिटल में लगाए गए हेल्थ कैंप में किरतपुर के ही नहीं बल्कि किरतपुर के निकटवर्ती गांवों से भी अनेक मरीज आए और उन मरीजों ने उपचार कराने के बाद हमें बताया। ये आपका नाम?
5: राजेंद्र।
1: कहाँ से आए हैं आप?
5: शाहपुरे।
1: अच्छा, क्या तकलीफ है आपको?
5: पैर में चोट लगी।
1: कब लगी?
5: होगा 4-5 दिन।
1: आज इस कैंप में आए हैं तो क्या क्या सुविधा आपको मिली?
5: बहुत बढ़िया सुविधा मिली, जो देखने के लिए भी छोटी मिली, कोई फ्री नहीं देगी, जाँच भी फ्री में हुई। डॉक्टर साहब का बहुत बढ़िया व्यवहार है, कोई बहुत उनका बहुत धन्यवाद है, अच्छी तरह मरीज को देखते हैं।
1: भाई साहब, आपका नाम?
6: मोहम्मद नाजिम।
1: अच्छा, आपको तकलीफ क्या है?
6: मैं पेट में पथरी आई।
1: अच्छा
6: जी,
1: तो यह क्या उपचार हुआ आपका?
6: तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे बिल्कुल ना के बराबर
1: हिम्मत
6: ली गई।
1: तो इस कैंप के बारे में कब आपको पता चला?
6: मुझे कल पता चला, मैं आ जाके कराने।
1: आपको डॉक्टर साहब ने देख लिया?
6: जी।
1: तो क्या बताया इलाज?
6: बोले नहीं, ये छोटी सी पतली पथरी है, निकल जाएगी।
1: ठीक है, औरों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
6: औरों के लिए भी सबको बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही, हम तो आए दिन आते रहे
1: जी,
6: जब भी आए डॉक्टर साहब तो हमसे ऐसे तो लेते नहीं, आज कैंप में आए तो बस ना की बराबरी।
7: मेरा नाम मुमताज अहमद है, मैं ग्राम पाटली से आया हूँ।
1: अच्छा, तो इस हॉस्पिटल में चूंकि आज कैंप लगा हुआ है, इस कैंप का लाभ आपने लिया?
7: जी हाँ, मैंने लिया है, मैंने अपना भी और अपने बीवी का भी अल्ट्रासाउंड कराया है, 75% की छूट है, और मेरी बीवी कई दिन से यहाँ पे हम आ जा रहे हैं, सारा स्टाफ बहुत बढ़िया से देख देख कर है, मेरी बीवी के पीछे कुछ इंजरी हुई है, देखभाल बहुत बढ़िया है, डॉक्टर लोग भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये मिर्जा हॉस्पिटल है, इससे बहुत बड़ी सुविधा है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से देखभाल हो रही है। इन इस काम के लिए ना हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देख देख की है, और जितने भी मरीज यहाँ आ रहे हैं हमारी उनसे भी बातचीत होती रहती है, तो वे भी अच्छा ही बताते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड होता है, और आज छूट भी है 75% की, और मैंने भी और मेरी बीवी ने भी अल्ट्रासाउंड कराया है, और जो बड़े डॉक्टर हैं उनसे भी मुलाकात हमारी हुई है, देख देख में कोई कमी नहीं है, सारी सुविधा उपलब्ध है, और बहुत बढ़िया है, ये गरीब लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है।
8: मोहम्मद सरवर।
1: कहाँ से आए हैं?
8: गाँव पास है, चिड़िया चांडत किरतपुर के पास।
1: जी, तो क्या तकलीफ है आपको?
8: यहाँ ये नसूस तभी भी है, MRI है मेरे पास, मैंने करा रखी बहुत जगह।
1: अच्छा,
8: तो मैं दिखाना चाहता हूँ MRI में, दवाई बड़े बड़े सर्जनों को दिखा दिया मैंने
1: जी,
8: मैंने कह रहा आज फीस बिना लग रही, दवाई में भी छूट मिलेगी, ये बताया।
9: मैं इनामद है मेरा नाम, चिड़िया चाणकपुर से आया हूँ, और मैं तीसरी बार आया हूँ, मैंने फोन पर सुबह बात की थी इनसे, जो नंबर लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है कि मुझे उन्होंने 300 रुपए की छूट दी है। वैसे तो हम आते ही रहते हैं, लेकिन खास करके मैं आज आया हूँ, आज और भी बहुत अच्छी सुविधा मिली है मेरे को, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, इनके जो जितने कर्मचारी लोग हैं सारे लोग अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी सुविधा भी देते हैं, कोई परेशानी दिक्कत होती है उनसे पूछताछ करते हैं।
1: कैंप के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए आप हैं?
10: मैं मोहम्मद बाबर, मिर्जा हॉस्पिटल मैं कार्यरत हूँ। आज ये हमारे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर साहब ने एक ऑफर चलाया था, उसके लिए काफी भीड़ है, और मरीजों की सहूलियत के लिए किया था, हम बीच बीच में ये ऑफर डालते रहते हैं ताकि मरीजों को हमारी सहूलियत मिल सके और उसका लाभ मिल सके। हम अपने डॉक्टर साहब के भी इस बात के लिए आभारी हैं कि वो हमारे हॉस्पिटल में मरीजों के लिए और पब्लिक के लिए जो

0: का ध्यान रखते हैं और लगातार इस ऑफर को हम चलाते आ रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे और मरीजों को जो भी सहूलियत होगी बेहतर से बेहतर सुविधा देने की हम कोशिश करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। जो लोग हमारे यहाँ दिखा रहे हैं उनके लिए भी हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के हमारे अस्पताल के अंदर आए और हमारी सेवा का उन्होंने पूरा पूरा लाभ लिया।
1: मिर्जा हॉस्पिटल किरतपुर में स्वास्थ्य कैंप दो शिफ्टों में आयोजित हुआ। पहली शिफ्ट प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट जो 2 बजे के बाद शुरू हुई। कैंप की दूसरी शिफ्ट में मरीजों की देखभाल के लिए पहुंचे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनु अग्रवाल ने हमें बताया।
2: अब आपको बिजनौर की सुविधाएं किरतपुर पे स्थित मिर्जा अस्पताल में भी मिला करेंगी। मैं यहाँ हर बृहस्पतिवार को समय 3 बजे दोपहर से शाम के 5 बजे तक उपस्थित रहा करूंगा। यहाँ पर हड्डी टूटने का इलाज भी होगा, जोड़ बदलने का भी होगा, अगर घुटने के लिगामेंट्स टूट जाते हैं उनका इलाज भी होता है, कंधा बार बार उतरता है तो उसका इलाज भी, परमानेंट सॉल्यूशन उसको आपको मिलेगा। आज जो कैंप रखा गया है जिसमें उन्होंने स्पेशल छूट कुछ चीजों पर दी है, जैसे सभी एक्सरे 250 रुपए में होंगे, आज दवाइयों पर विशेष छूट दी गई है, तीसरी पैथोलॉजी जो टेस्ट है वो भी आधे रेटों पर करे जाएंगे। अब आपको अपने हड्डी से संबंधित बीमारियों के कारण के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कुछ भी टूटता है या लिगामेंट टूटते हैं, कंधे की हड्डी बार बार उतरती है, उसका इलाज आपके किरतपुर में भी संभव है और 100% श्योर अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा।
1: कैंप के उद्देश्य और महत्व के विषय में विस्तार से बताते हुए आप हैं मिर्जा हॉस्पिटल के संस्थापक निदेशक डॉक्टर एनएच मिर्जा।
3: मैं डॉक्टर नजाकत हुसैन मिर्जा किरतपुर बिजनौर का रहने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं 5 मई 1977 को जब किरतपुर में आया और मैंने शुरू किया तो यहाँ बहुत बहुत बहुत बेसिक सुविधाएं थी। केवल यहाँ उस समय किरतपुर में डिस्पोजेबल सिरिंज भी नहीं मिलती थी, न ड्रिप सेट मिलते थे, न कैथेटर थे, न ऑटोक्लेव था, हम तो सिरिंज वगैरह उबाल कर ही काम चलाया करते थे
4: जी।
3: लेकिन आज हम यहाँ पे इस पोजीशन में हैं कि हमने यहाँ पे एक अपना नर्सिंग होम बनाया, फिर हमने इसको अस्पताल में मिर्जा हॉस्पिटल का डेवलप किया। यहाँ मेरे बच्चे डॉक्टर मोतेशम हुसैन मिर्जा और डॉक्टर तोहा नईम मिर्जा, ये दोनों सबको एडवांस सर्जरी कर रहे हैं। आज हमारे पास यहाँ डिजिटल एक्सरे है हाई लेवल का, जिसमें हम मरीजों को बहुत कम रेट्स पर पूरी सुविधाएं दे रहे हैं और हाई लेवल की डिजिटल एक्सरे की सर्विसेज दे रहे हैं। और आज हम 3D, 4D और एडवांस अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हैं, जिसमें हम मरीजों को बहुत ही कम दाम में और बहुत ही सहूलत के साथ में, और जो हम कैंप लगाते रहते हैं उन कैंप में तो हम आधे पैसों से भी कम में इनकी सब जांचें कर देते हैं, कहीं कहीं तो इससे भी कम कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आज जो लोग दिखाने आ रहे हैं, अगर कोई देता है फीस तो हमने मात्र 75 रुपए या 70 रुपए में भी इसको मरीज को देख रहे हैं। जहां हमको एक्सरे कराने आ रहे हैं हम 400 रुपए न लेके 200 रुपए में कर रहे हैं। अल्ट्रासाउंड भी जहां लोग 1500 ले रहे हैं हम केवल आधे पैसों में कर रहे हैं, पैथोलॉजी जांच भी आधे पैसों में की, और हमने मरीजों को जो हमें दिखाने आए हैं उन सब मरीजों को हमने दवाएं भी बहुत ही मुनासिब रेट्स पर जितना भी हम कर सकते हैं हमने की। और ये प्रोग्राम हम अपने अस्पताल में नहीं करते, इनको हम फील्ड में जाकर भी करते हैं, इनको हम पब्लिक के बीच में स्कूलों पे जाकर, खास तौर से स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हम हर महीने में 1-2 दिन हमारा ज़रूर ऐसा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होता है। और जो समाज सेवी लोग हैं जो समाज को थोड़ा सा भी हित का कार्य काम करते हैं हम उनको फैमिली कार्ड देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री कॉस्ट देते हैं। उसमें क्या करते हैं, हमने बहुत सारे डिस्काउंट कर रखे हैं, हमने अपने हर चीज़ के रेट्स पर डिस्काउंट है। और ख़ास बात यह है जब कोई फैमिली कार्ड लेकर आता है हमारे पास तो यही नहीं कि जो कार्ड लेके आता है उसी का इलाज करते हैं, हमने इतनी छूट अपने स्टाफ को दे रखी है कि जो भी आदमी फैमिली कार्ड लेकर आएगा फीस में डिस्काउंट होगा, अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट होगा, एक्सरे में डिस्काउंट होगा, इंडोर में डिस्काउंट होगा, पैथोलॉजी में डिस्काउंट होगा, फिजियोथेरेपी में डिस्काउंट होगा। हद यह कि हम छोटे मोटे ऑपरेशन जो भी हम इस लेवल पर कर सकते हैं उन सब के अंदर उनको डिस्काउंट दिया जाएगा।
1: मिर्जा हॉस्पिटल किरतपुर में आयोजित ये हेल्थ कैंप शाम 5 बजे तक चला, जिसमें सैकड़ों मरीजों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लिया। शाम लगभग 5:30 बजे

0: इस स्वास्थ्य शिविर का समापन हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मिर्जा हॉस्पिटल किरतपुर।
1: अभी आप सुन रहे थे मिर्जा हॉस्पिटल किरतपुर में आयोजित गोल्डन जुबली ऑफ केयर कार्यक्रम पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। वाचन स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग था जसवंत सिंह का। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कलाकार रामेश्वर प्रसाद शर्मा के गाए भजन।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुने कलाकार रामेश्वर प्रसाद शर्मा के गाए भजन। ये आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से बातचीत का प्रसारण।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत सुनिए।
2: हमारी भारतीय तो यही कहता आयुष्मान भव। यह आयुष्मान भव की परंपरा हमारी पुरातन परंपरा में से एक है जो आज तक चली आ रही है। गुरुओं द्वारा देवी देवताओं की जब हम स्तुति करते हैं तब भी यही अपेक्षा करते हैं आयुष्मान भव का हमें आशीर्वाद मिले। और इसी आयुष शब्द से जो हमारे ऋषि महर्षि प्रतिपादित किए हैं एक स्वस्थ रहने की कला और स्वस्थ रहने की उपायों को जड़ी बूटियों के माध्यम से या उनके निकले हुए अर्क से हमें प्राप्त होते रहे हैं और हम दीर्घायु होने के लिए जो कुछ प्रयत्न हो सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। लेकिन आयुष मंत्रालय भी अब भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। सौभाग्य की बात यह है कि आज हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं। और दयालु जी के बारे में आप लोग जितना जानते होंगे मंत्री के रूप में, उससे पीछे की थोड़ी सी बात हम करना चाहेंगे कि आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से PhD डिग्री धारक हैं बॉटनी में। इस PhD बॉटनी करते समय भी आपने आयुष के क्षेत्र में

0: यानी आयुर्वेद के रूप में कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें काफी कुछ कार्य किया है, काफी उपलब्धियां रहते हैं। शिक्षाविद के रूप में आपकी जो पहचान है उसे भी हम लोग बखूबी जानते समझते हैं। इसी बीच स्वागत करते हैं मंत्री साहब आपका, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमारे श्रोताओं के लिए कि आज हमारे बीच हैं, आपके शब्दों आपकी वाणी से हम दो चार होने की कोशिश के क्रम में आपसे जानना समझना चाहेंगे कि क्या स्थिति है आयुष की अपने प्रदेश में।
1: सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनका नारा है विरासत भी विकास भी।
0: जी,
1: आयुर्वेद हमारी विरासत है। आयुर्वेद ही नहीं बल्कि आयुष की जितनी भी विधाएं हैं ये सब बिखरे हुए थे, बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर उन्होंने आयुष के रूप में एक माला पिरोने का काम किया। 9 नवंबर 2014 को जब इस देश में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आयुष के सारी विधाओं को, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, इन सारी विधाओं को उन्होंने आयुष से जोड़ते हुए एक मंत्रालय का गठन किया। तो आपको पता है कि इस देश में पहली बार, चूंकि हृदय स्थल प्रदेश माना जाता है इस देश की, कहीं ना कहीं से आत्मा उत्तर प्रदेश में बसती है, भगवान राम, भगवान कृष्ण और शिव की नगरी उत्तर प्रदेश में ही है, जन्मस्थली है भगवान लोगों की। सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 2017 से उसकी पारी आयुष की उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, और तब से लेके ये पिछले 9 वर्षों की यात्रा है आयुष की उत्तर प्रदेश में, और 12 वर्षों की यात्रा है केंद्र में मंत्रालय बनने के बाद से।

0: में 4 बेट के, 15 बेट के, 25 बेट के, 30 बेट के, और मंत्रालय बनने के बाद प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश के अब तक 16 जिला मुख्यालयों पर 50 बेड के इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बन चुके हैं, नए जो बन रहे। पुराना मैंने कहा कि 2111 अस्पताल पुराने आयुर्वेद के हैं, 1585 हॉस्पिटल पुराने होम्योपैथ के हैं, 258 हॉस्पिटल हमारे पास यूनानी के, जो पुराने अस्पताल हैं। जब से मंत्रालय बना तो फिर हमने उसको नए को, क्योंकि हमको अपनी जमीन पे ले जाना था, अपने कैंपस में उसको शिफ्ट करना था, चाहे वो पीएससी में हो, सीएससी में हो, ग्राम समाज की जमीनों पर हो, किराए के भवन में हो, दान की जमीनों पर हो, तो वह जो परिवर्तन, देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम वेलनेस की बात करें, हम रोग और इलाज की तरफ न जाके हम व्यक्ति को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए उसके वेलनेस की बात करते हैं, तब फिर सारी विधाएं मिल के काम कर रही हैं। अब इंटीग्रेशन पे काम हो रहा है। हमारे जितने मेडिकल कॉलेज थे, उत्तर प्रदेश में 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 8 मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद के हैं, 9 मेडिकल कॉलेज होम्योपैथ के हैं, 2 मेडिकल कॉलेज यूनानी के हैं, और 2 नए मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में नए मिले हमको, बल्कि आप कहिए 3 मिले। एक आयुर्वेद का नया मेडिकल कॉलेज अयोध्या में बन के तैयार है, और एक बरेली में यूनानी का मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शिलान्यास की हम लोग समय मांग रहे हैं, जिस दिन मिलेगा वो ओपन हो जाएंगे। काशी में चूंकि पहले से आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज था, तो वहाँ एक होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज बन रहा, तो 21 मेडिकल कॉलेज मैंने आपसे बताया कि वो इंटीग्रेटेड अस्पताल 16 जिले के मुख्यालयों पर बन चुके हैं। 8 हमारे अस्पताल, जिसमें 4 इनॉग्रेट होने जा रहे हैं, शिलान्यास जिनका होने जा रहा है, 4 भी बहुत जल्दी वो भी मिल जाएंगे। तो हर वर्ष अब तक करीब 1000 से ज्यादा हम अपने पुराने अस्पतालों में, जैसे 4 बेड के जो हमारे अस्पताल हुआ करते थे, उनको आयुष वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। 225 योग वेलनेस सेंटर अब तक हम नए भवन, नए परिसर में बना चुके हैं, और जगह की आपने मैंने कहा कि वो समस्या थी, तो अब बहुत सारी जमीनें जैसे जैसे मिलती जा रही हैं,
1: वैसे
0: हम अपने नए सेंटर्स बनाते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा का कोई अस्पताल नहीं था, तो काशी में प्राकृतिक चिकित्सा का एक सेंटर, वो भी मात्र 2 महीने बाद, मुझको लगता है कि वो भी शिलान्यास के लिए तैयार है। आयुष का विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय न होने से हमारे पढ़ाई प्रभावित होती थी।
1: इस विश्वविद्यालय से क्या, जितने कॉलेजेस का आपने नाम लिया आयुष से जुड़े हुए हैं, इनकी संबद्धता भी उसी से हो गई है या फिर अलग अलग?
0: 19 राजकीय मेडिकल कॉलेज और 86 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 105 मेडिकल कॉलेजों का एफिलिएशन वो हमारे विश्वविद्यालय से हो गया। अब उनकी परीक्षाएं, उनकी कापियों का जांचना, उनका रिजल्ट का बनना, सब कुछ विश्वविद्यालय के तहत हो गया, आयुष विश्वविद्यालय के साथ हो गया,
1: इंटीग्रेटेड हो गया एक जगह से,
0: सब एक जगह हो गया। और बहुत सारे डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज भी विश्वविद्यालय ने शुरू कर दिया, पीजी शुरू कर दिया, यूजी की मान्यता मिल गई, अब यूजी भी शुरू हो जाएगा, तो एक फुल फ्लेज्ड काम करने वाला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आयुष का मिल चुका।
1: जब आपने विश्वविद्यालय की बात कर ही दी और उस पर हम आना चाह रहे थे, लेकिन आपने पहले बता दिया, और अच्छी बात है कि एक विश्वविद्यालय अब हो चुका है, तो फिर रिसर्च की भी संभावनाएं ज्यादा जगेंगी, और इस दिशा में कार्य करने के लिए अपना उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से सटा होने के कारण काफी कुछ संसाधन ऐसे हैं, औषधीय पौधों के आधार पर वहाँ रिसर्च भी हो सकता है, नई नई जो दवाएं हो सकती हैं विकसित करने के, कहने को तो सीमैप भी है, सीडीआरआई भी है, लेकिन राज्य स्तर पर कुछ इसका प्रयास?
0: देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष भी बजट में अपने 3 नए अय्या बोल दिए, इसके पहले अय्या दिल्ली में और अय्या जयपुर में, उन्होंने इसके पहले 2 अय्या और

0: आपने जो पहली सर्जरी किया उसके पीछे आधार क्या था, उसके पीछे किस इंस्टीट्यूट का, तो उनको भी आज भी मॉडर्न मेडिसिन भी उनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहती है, महर्षि सुश्रुत को, वो भी उत्तर प्रदेश में काशी में जन्मे थे। चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, और जितने भी, चाहे वो महर्षि नागार्जुन का काम हो, चाहे वो जितने भी लोगों ने इस विधा में काम किया है, उनके लिए उनकी शरीर ही प्रयोगशाला थी। समाज पे काम किया, वर्षों वर्षों की साधना के बाद, तपस्या के बाद, सिद्ध हमारा एक विषय है जिसके महर्षि अगस्त, उनकी भी जन्मस्थली उत्तर प्रदेश और काशी है, तो उस महर्षि अगस्त की एक विधा है सिद्ध
1: जी।
0: उस सिद्ध के बारे में यह है कि सिद्ध किसने इंट्रोड्यूस किया, तो सिद्ध सिद्धों ने, जो सिद्ध पुरुष थे, साधकों ने, वर्षों की तपस्या का ये परिणाम है। ये हमारे ऋषि मुनियों के जीवन की, वर्षों की साधना। योग क्या है? योग हमारे योगियों के अपने को स्वस्थ और निरोग रखने के, जो योग और आसन, ध्यान, इन सब का वो सहारा लेते थे, प्राणायाम, उसी योग को प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मान्यता मिली,
1: मान्यता मिली है, और जन जन तक ये उसको पहुंचाने में आप लोगों का जो योगदान रहा है उसको भी भुलाया नहीं जा सकता है। अभी अब 21 जून की तारीख बिल्कुल सामने है हमारे, इसमें अगर योग की बात हम आगे बढ़ाना चाहें तो ये पूछना चाहेंगे आपसे कि इस बार ये कहा जा रहा है कि जो सरोवर हैं गांव-गांव में बने हुए, उस पर भी योग शिविर लगाए जाएंगे। जैसे वेलनेस सेंटर की बात आपने कही कि गांव-गांव तक पहुंच चुके हैं, तो ये अमृत सरोवरों पर ये है कि 21 तारीख को सब लोग योग करेंगे, इसकी क्या तैयारी शासन प्रशासन की तरफ से भी अलग से है क्या?
0: तो पूरा देश इसमें जुड़ जाता है, संसार जुड़ जाता है, दुनिया के 177 देश योग करते हैं। विश्व योग दिवस के दिन की भी विशेषता है कि वो 365 दिनों का सबसे लंबा दिन होता है, योग दिवस का 21 जून, और 21 जून को सारा संसार आपको योग करता दिखाई देता है। तो क्या नदी, क्या तालाब, क्या पोखर, क्या सरोवर, क्या नदियों का किनारा, क्या पौराणिक स्थल, क्या धार्मिक स्थल, जितने भी ऐतिहासिक, काशी में अगर वो होता है तो भगवान गौतम बुद्ध की उपदेश स्थली, भगवान गौतम बुद्ध को स्वारिप्पा का जनक माना जाता है, जो देश के पर्वतीय अंचलों में कश्मीर से लेकर लाहौल स्पीति घाटी से होते हुए हिमाचल होते हुए पूर्वोत्तर राज्यों तक एक विधा प्रचलित है, इसको स्वारिप्पा कहते हैं। उत्तर प्रदेश को एक और सम्मान अभी हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने काशी में तिब्बती विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में स्वारिप्पा का बहुत ही एडवांस हॉस्पिटल उन्होंने अभी देश को, उत्तर प्रदेश को दिया है। तो हर विधाएं अब मिलके समाज को स्वस्थ और निरोग बनाए रखने के लिए, मन को, शरीर को, आत्मा को खुश बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत योगा है, और योग कहीं भी किया जा सकता है। और ये जो नदियों का आह्वान है, पौराणिक स्थलों का आह्वान है, ऐतिहासिक स्थलों का आह्वान है, शहर के पार्कों में है, गांव के मंदिरों पर है, तो जहां व्यक्ति एकत्र हो सके, जहां उसको बैठना, जहां नेचर हो, जहां प्रकृति हो, शुद्ध सुबह की हवा मिले उसको, तब उसकी प्राणवायु जब उसको मिलेगी तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी और वो स्वस्थ मन से, अच्छे मन से योग करेगा। और एक दिन का योग नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, अब जैसे सप्ताह व्यापी, इसके पहले हम लोग एक महीने का शेड्यूल बनाते थे, 15 दिन का शेड्यूल बनाते थे, तो योग को अपने जीवन शैली में शामिल करना है, योग को अपनाना है। योग सिर्फ एक दिन करने से कोई व्यक्ति स्वस्थ निरोग नहीं होगा, लेकिन जब आपने उसको अपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित ही आपका मन, आपका शरीर, आपका तन, और कहते हैं ना कि आत्मा तक आपकी खुश होगी, पवित्र होगी, शुद्ध होगी, और एक अच्छे मन से, एक अच्छे स्वस्थ नागरिक के रूप में आप इस देश के हित में काम कर सकेंगे।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है कि जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया है, इन शब्दों को सुनते हुए या प्रस्तुत करने की जो कला आपके पास है, इसी से मंत्रमुग्ध होकर के आदमी योग तो करेगा ही करेगा, आयुष्य भी जुड़ेगा, क्योंकि बॉटनी से पढ़ा हुआ छात्र अगर साहित्य और संस्कृति की भी बात बेहतर ढंग से रख सके, बेहतर ही नहीं, बहुत अच्छे ढंग से, उसके लिए तो फिर सुनने को जी चाहता ही है, और सुनते रहने की बाध्यता हमारी यही समाप्त हो जाती है क्योंकि समय की सीमा में हम लोग बंधे रहते हैं। अब आकाशवाणी से तो आप जानते ही हैं, छोटेपन से ही सुनते रहे होंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपसे अपेक्षा होगी कि आप हमारे स्टूडियो इसी तरह से पधारेंगे और आयुष के तमाम जो इसके बिंदु हैं,
0: ये हजारों साल की विरासत है,
1: इसीलिए तो
0: प्रधानमंत्री जी ने उसको विकास में उपयोग किया।
1: अब काशी का जन हमारे बीच है तो बार बार तो अपेक्षा होगी ना कि हाँ हमारे साथ साथ जुड़ते रहें। बहुत अच्छा लगा वास्तव में, और आपकी वाणी के जो भी ये शब्द हमें प्रेरित कर सकते हैं वो बहुत प्रेरित कर रहे हैं, और लोगों से भी अपेक्षा अपने श्रोताओं से कि आप आयुष को अपनाएं, अपनी जीवन शैली को बेहतर से बेहतर
0: करें, योग रहे निरोग का नारा देते
1: हैं। बिल्कुल, आपका ये नारा पहले से भी चल रहा है, आप द्वारा दिया जा रहा है तो और प्रभावी होगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि आपसे पुनः मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत। ये विशेष कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:15 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत हम आप को सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कयामत से कयामत तक से। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की, संगीत आनंद मिलिन का है और इस गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म कयामत से कयामत तक से ये गीत।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम गीत संध्या में आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं कुमार सानू को। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत नदीम श्रवण का है। फिल्म का नाम है तड़ी पार।

कुमार सानू को अभी आप सुन रहे थे फिल्म तड़ी पार के इस गीत में। संगीत नदीम श्रवण का था और शब्द रचना थी समीर की। समीर का लिखा ही एक और गीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे संगीत दिया है जतिन ललित ने। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रद्धा पंडित की। फिल्म का नाम है संघर्ष।

संघर्ष फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का ही एक और कार्यक्रम, एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अमृत के गीत। श्रोताओं, ये फिल्म 27 जून 1986 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल। इस फिल्म के सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। तो लीजिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं इस फिल्म के पहले गीत से, जिसे आवाज़ दी है मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल ने।

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

श्रोताओं, फिल्म अमृत बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और इसमें राजेश खन्ना के अभिनय को काफ़ी सराहा भी गया था। इस फिल्म का एक गीत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रहा था और वह आज तक काफ़ी सुना जाता है, तो वो गीत हम आपको अब सुनवाने वाले हैं। लीजिए, पेश खिदमत है मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

0: अमृत फिल्म के इसी गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में समाचार सुनवाए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
4: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
1: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
4: पिछले
5: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
6: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
5: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
7: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
5: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल। परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
8: The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep three-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
9: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
8: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
10: Odisha mein aarthik gatividhiyan, nivesh aur udyogon ko aakarshit karne ka samarthya aaj nazar aa raha hai. Kendra sarkar ka vision hai purvi Bharat ke vikas se भारत का विकास इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है.
8: The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He also extended birthday greetings to President Draupadi Murmu and said it was a privilege to visit her native village, Paharpur. Later, Prime Minister Narendra Modi took part in Pashchim Bango Divas celebrations at Tarkeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. Mr. Modi also participated in a grand function to celebrate the state day, along with Chief Minister Shubhendu Adhikari. He also launched dedicated and laid foundation stones for various development projects across railways, agriculture, rural development, fisheries and animal husbandry sectors. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the BJP government has started working at a superfast pace for Bengal's development.
10: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है. रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी. इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ.
8: The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is scheduled for tomorrow. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Ahead of the examination, the National Testing Agency, NTA, has conducted nationwide mock drills as part of preparations for the re-examination. The NTA said it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. More from our correspondent.
4: Over 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed for the secure, transparent and smooth conduct of the examination. A multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification, GPS-enabled vehicles with police escort for the movement of the examination material, and end-to-end secure handling of confidential materials to designated locations under sealed protocols. The NTA is also actively monitoring social media platforms to curb misinformation and prevent malpractice. The examination will be held from 2 p.m. to 5 p.m. tomorrow. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
8: Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other dignitaries were present on the occasion. Addressing a public gathering, Mr. Shah said the Sri Ambabai Temple, located in the historic city of Karbir, is a major center of faith for devotees from across the country. He said the development project will transform the temple precinct into a modern pilgrimage destination while preserving its historical, cultural and spiritual heritage. He added that the project will enhance facilities for devotees and strengthen Kolhapur's position as a prominent religious tourism center. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the government's transformative initiatives driving the vision of an empowered India.
5: Over the last 12 years, the government has driven a structural transformation in India's high-tech landscape. Two of the most significant pillars of empowered India are the development of a semiconductor ecosystem and the explosive growth of space startups. The India Semiconductor Mission was launched in December 2021 with a massive outlay of 76,000 crore rupees. By 2026, the government launched Semiconductor Mission 2.0 with a provision of 1,000 crore rupees. Speaking about the Semiconductor Mission 2.0, Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnaw highlighted that while Mission 1.0 successfully established the foundational building blocks for this complex industry, Mission 2.0 will focus on deepening the ecosystem.
11: The first mission was to start the

0: की तश्कील पर जोर देना है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के बारे में बात करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि मिशन 1.0 ने इस अहम सनत के लिए बुनियाद फराहम की और मिशन 2.0 इको निजाम को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा।
1: The first mission was to start the industry in our country. It's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2-nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
0: भारत की खलाई पॉलिसी 2023 के तहत प्राइवेट कंपनियों को खलाई सरगर्मियां अंजाम देने की इजाजत दी गई, जिससे सैटेलाइट को खला में भेजा जाना भी आसान हुआ। इसके बाद खला से मुतालिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की तादाद में इजाफा हुआ। आकाशवाणी से बात करते हुए भारत की खलाई सनत की एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल अनिल प्रकाश ने कहा कि ये कंपनियां इख्तराई तौर पर सरगर्म हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन और प्राइवेट खलाई शोबे की पेशरफ्त की शक्ल में एक तरक्की याफ्ता मुल्क की जानिब भारत का सफर जारी उसारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
3: अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट यूजी 2026 का कल दोबारा इम्तिहान होगा। कल होने वाले इस दोबारा इम्तिहान में मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 उम्मीदवार शामिल होंगे। ये इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में होगा। इम्तिहान से कबल इम्तिहानात के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने आज मुल्क भर में मॉक ड्रिल्स अंजाम दी, जिनके तहत सभी सिस्टम जैमर्स, CCTV, अमले की तलाशी और बायोमेट्रिक की जांच की गई। NTA ने कहा है कि वो बिला रुकावट मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: मुशाहिदीन, राब्ता करो, पुलिस दस्तों और मुंतजमीन समेत 2,00,000 से ज्यादा अहलकारों को महफूज, शफाफ और बिला रुकावट इम्तिहान के इनाकाद के लिए तैनात किया गया है। मुनसिफाना और शफाफ इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही सिक्योरिटी तरीक़ेकार को बरवे कार लाया जा रहा है। इसमें CCTV से निगरानी, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक और इम्तिहानात से मुतालिक सामान की नकलो हमल के लिए पुलिस हिफाजत के साथ GPS वाली मोटर गाड़ियां शामिल है। NTA भी सरगर्मी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी कर रही है, ताकि किसी भी तरह की गलत मालूमात और तौर तरीकों की रोकथाम की जा सके। ये इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। दस्तावेजी अमल को मुकम्मल करने, उसकी तस्दीक और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जरूरतों को पूरा करने के लिए इजाफी 15 मिनट फराहम किए जाएंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
3: ईरान की मुश्तरका मिलिट्री कमान ने ऐलान किया है कि आबनाई हुरमुज को फिर से बंद कर दिया गया है। उसने लबनान में इसराइल की फौजी कार्रवाई जारी रहने और लड़ाई के खात्मे के लिए अपने वादों को बरकरार रखने में अमेरिका की नाकामी को इसकी वजह बताया है। सरकारी टेलीविजन पर नशर किए गए एक बयान में ईरान की मिलिट्री कमान ने यह तंबीह की कि अगर बकौल उसके जारहियत का सिलसिला जारी रहा तो मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। आज चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में 3 एक रोजा बैन अल्कामी क्रिकेट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी बनाई और वो नॉट आउट रहे। भारत को जीत के लिए 219 रन का निशाना मिला था, जिसे उसने 28 ओवर और 4 गेंदों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। जायसवाल ने 86 गेंदों में शानदार 110 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। रोहित शर्मा ने 69 गेंदों में 79 रन स्कोर किए। इससे कबल भारतीय गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान के शुरुआती बल्लेबाजों को आउट करके शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 4 विकेट हासिल किए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत लगातार अमन, मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है, क्योंकि उसका ये मानना है कि मामलात को जंग से नहीं बल्कि बाहमी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جناب مودی نے اوڈیشا میں 47,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا. وزیر اعظم نے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کی 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی 23rd قسط جاری کی. وزیر اعظم کل کولکتہ کے تاریخی ریڈ روڈ پر 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات کی قیادت کریں گے. اور کرکٹ میں بھارت نے چنئی میں تیسرے ایک روزہ میچ میں افغانستان کو 9 وکٹ سے کراری شکست دے کر سیریز کے 3 میچ جیت لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
0: یہ آکاشوانی ہے, آئیے سنیں راشٹریہ فلم پترکا چتر بھارتی.
5: سائنس لائٹ ساؤنڈ کیمرہ ایکشن.

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। इतना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बना
0: और दूसरा गाना था

1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।

उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती।

सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।

1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मी का

जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी

जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

0: आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रोड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं। और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है, लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मन मुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
2: फिर कोई

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदीप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Shrimati Kumudini Mundukur. An A-grade artist of All India Radio, when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates, Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
0: Dr. Vivek Karmahe apni gayan ki shuruaat raag shri se kar rahe hain. Vilambit rachna tilwada taal mein nibaddh hai जिसकी बोल है वारी जाऊं रे तुम पे। द्रुत रचना तीन ताल में है जिसकी बोल है चलो रे माई राम सिया दर्शन। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे

0: रागश्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा।

0: किजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करवा दिन
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।